ये रहा सबसे बेस्ट आंसर. मैंने आंसर नहीं एक्चुअली, होम सिक रेमेडीज का जो मैसेज है वो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है. एक हिडन बैक होम 5 PM एट वर्क मेंट हेडिंग आउट फॉर अ ग्रुप टी ब्रेक चैटिंग अबाउट द डे एंड कैजुअली हैंगिंग आउट विद कलीग्स आफ्टर ऑफिस आवर्स. बट हियर इन माय ऑकलैंड ऑफिस एट 4:49 PM sharp, everyone shuts their laptop, grabs their coat, and by 5:02 PM, the entire floor is dead. Silent ghost town. Yesterday, I stayed back until 5:15 PM to finish up some emails, and the motion sensor light literally turned off, leaving me sitting in the dark, walking out into a deserted building and quiet car park. Every single evening feels so depressing and lonely. इसका सुझाव तो यार, मैं देखो मेरा तो बिजनेस है यार, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है. ऑब्वियसली लास्ट में जॉब करता था बट इतना नहीं था यार. आई मीन वी यूज टू लीव एट लास्ट. हमारी ये जिम्मेदारी थी कि अगर हम लास्ट में जा रहे तो वही है कि हमें सब बंद करना पड़ता, लॉक करना पड़ता था, मेक श्योर करना पड़ता था कि भाई ताला लग गया है. बट यस, उसके अलावा कोशिश करता हूँ. आप एक्चुअली जो मेरे लिसनर हैं वो मुझे मैसेज भेज के देखिए अगर आपको क्या लगता है, लाइक यू नो हाउ वी कैन सॉर्ट दिस थिंग आउट. मे बी हो सकता है कि 59 की जगह अगर सब 59 बजे जा रहे हैं तो आप 58 पे निकल लाओ. एक मैसेज आया, वो कहते हैं ऑकलैंड कॉरपोरेट लाइफ का सबसे बड़ा शॉकर पॉइंट टच कर दिया है आकाश भाई ने. ये जो न्यूजीलैंड में 4:59 PM वाली वैनिशिंग एक्ट होती है ना, ये हमारे देसी दिमाग का पहले 2 महीने समझ ही नहीं आती. चाहे व्हाटएवर कंट्री यू आर फ्रॉम, बट स्टिल इट साउंड सो मोस्ट प्रोबेबली, ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड डजंट हैव दैट मच पॉपुलेशन, बट यस, लुकिंग एट अवर कंट्री लाइक स्पेशली मी एज आई एम फ्रॉम इंडिया, सो इवन एट नाइट ऑल्सो इफ आई लीव आउट अराउंड 11 PM or 12 AM, स्टिल आई वुड सी मोर पीपल देन लिविंग इन द इवनिंग ओवर हियर इन न्यूजीलैंड. ये आया है प्रगति का मैसेज आया. वेल, ग्लैड टू नो आपने जो रिस्पॉन्स भेजा उस पर. एक और मैसेज आया है, 5 PM गोस्ट टाउन इज अ बिग सैडनेस, but instead of that, what you need to do is take an advantage. If you have any, Kiwi colleagues, 5 baje ghar bhaag rahe hain, to aap kyun khali office mein andhere mein baithkar extra kaam kar rahe ho? Ye kisi ka response hai. Baat to sahi hai yaar. Matlab, honestly, ye bhi point hai ki aap bhi koshish karo, ya to aap early morning jaldi aa jao thoda. जितना लेट आप यहाँ रुकते हो, मान लो कि अगर आपकी 9 बजे शिफ्ट होती है तो 8:45 आ जाओ, तब से काम शुरू कर दो ताकि आप उनके जाने से पहले ही फ्री हो जाए. ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है मुझे लगता है. बट अगर और भी है यहाँ पे कोई जो अलग तरह का हटके रिस्पांस देना चाहता है, आई वुड लव टू हियर. प्लीज 5:55. एंड यस, ऑफकोर्स होम सिक रेमेडीज के बाद आप मुझे भेज दीजिए ऑफिस शाउट आउट के मैसेजेस 5:59 पे. कौन सा खाना आज, कौन सी डिश आपने ट्राई की है आज या फिर करने वाले हो, और साथ में ऑफकोर्स किसने बनाई है, वेदर इट इज योर पर्सनल शेफ आउटसाइड और इट इज फ्रॉम योर होम. अगर बाहर से भी लिया तो कहाँ से लिया, और सबसे फेवरेट कुजीन कौन सी आपकी, बताइए मुझे. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का. 80s के रेट्रो गाने.

0: अभिषेक और के सेगमेंट में आपका स्वागत है। ये रहे मैसेजेस। एक्चुअली मैंने ना एक शॉर्टलिस्ट किया है आउट ऑफ ओनली वन। अभी एक ही मैसेज आया एक्चुअली, तो ऑब्वियसली मेरे पास ऑप्शन नहीं था, बट स्टिल दे हैव रिस्पॉन्डेड, सो थैंक यू सो मच। प्रिया ने मैसेज किया है, वर्किंग फ्रॉम होम टुडे, I made myself some chicken biryani for lunch. Oh ho ho ho, chicken biryani, भाई मेरे को तो बरस हो गया यार खाए। Favorite cuisine जो है वो है इनकी Indian. Well, क्या बात है। वैसे आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि any country you are from, सबसे best biryani कहाँ मिलती है? आप country का नाम भी लिखिएगा और जगह का भी, और अगर हो सके तो shop का नाम भी। अगर आप New Zealand के हो तो यहाँ का बताइए, I mean New Zealand में कहीं पे भी हो, Auckland, Hamilton, Wellington, अगर ऑस्ट्रेलिया से हो तो आप मुझे बताइए कहाँ मिलती है, फीजी से है या फिर इंडिया से है या पाकिस्तान से, डू लेट मी नो, 555 इज द नंबर। बट यस, दूसरा मैसेज मैं अपना ही डाल देता हूँ। मैं बेसिकली आज मैंने कहा है साबूदाने की खिचड़ी। वाओ, दैट्स सो कूल यार, दैट्स सो कूल। वैसे काफ़ी टाइम हो गया था मुझे खाए हुए, तो इस बार तो ऑफकोर्स खुशबू तो यू नो ऑलवेज बेस्ट बनाती है, बट अभी ऑब्वियसली मम्मी है तो मैं वो जो सारी ख्वाहिश जो बेस्ट बेस्ट चीज़ें थी ना मेरी फेवरेट, तो सारे मैं मम्मी को बोल दिया, मम्मी ये रही मेरी लिस्ट, आप जब जब मौका मिले बनाओ और मुझे खिलाओ। सो यस, दैट इज़ व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। बट कूल, थैंक यू सो मच यार मैसेज के लिए प्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड पे थोड़ी नजर डाल देते हैं. 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक रॉक कैंटरबरी 2010. आज के दिन यानी कि 4 सितंबर 2010 की बात है जब न्यूजीलैंड के कैंटरबरी रीजन में एक बहुत ही पावरफुल 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया. ये अर्थक्वेक सुबह करीबन 4:35 पे आया था जब मोस्ट पीपल अपने घरों में सो रहे थे. अर्थक्वेक के एपिक सेंटर डेयरफील्ड के पास क्राइस्टचर्च से अराउंड 37 किलोमीटर वेस्ट में था और ये क्विक रिलेटिवली शैलो था, अराउंड 10 किलोमीटर बिलो द सरफेस. इसलिए शेकिंग बहुत स्ट्रांग थी और इनफैक्ट इसने न्यूजीलैंड में स्ट्रांगेस्ट शेकिंग रिकॉर्ड की थी. क्राइस्टचर्च और सेंट्रल कैंटरबरी में बिल्डिंग्स, रोड्स और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी डैमेज हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली किसी की डेथ नहीं हुई और सिर्फ कुछ लोग सीरियसली इंजर्ड हुए. इसका एक मेजर रीज़न था अर्थक्वेक अर्ली मॉर्निंग में आया था. ज़्यादातर लोग बेड पे थे और स्ट्रीट ऑलमोस्ट एम्प्टी था. स्ट्रीट एम्प्टी था तो इज दैट कंसिडर एज, मुझे लगा शायद जो घर के अंदर वो भी यू नो फंस सकते हैं बिल्डिंग वाली गिरने से. वैसे अर्थक्वेक न्यूजीलैंड के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट था बिकॉज इट वॉज द लार्जेस्ट अर्थक्वेक टू अफेक्ट अ मेजर अर्बन एरियाज, द 1931 हॉक्स बे अर्थक्वेक. लेकिन कैंटरबरी की प्रॉब्लम्स यहीं ख़त्म नहीं हुई. कुछ मंथ बाद में 22 फरवरी 2011 को एक 6.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया क्राइस्टचर्च के पास और इस बार अर्थक्वेक वर्किंग आवर्स में था जिसकी वजह से 185 पीपल जो है वो डेड हुए थे एंड थाउजेंड्स इंजर्ड हुए थे. ओह ओके. क्राइस्टचर्च सिटी सेंटर को भी काफ़ी डैमेज हुआ है, डैमेज हुआ था. बट यस, इन कंक्लूजन 2010 में कैंटरबरी अर्थक्वेक ने न्यूजीलैंड को अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस और बिल्डिंग सेफ्टी की इंपॉर्टेंस स्ट्रांगली रिमाइंड करी. इट वॉज अ पावरफुल नेचुरल डिजास्टर बट फॉर्चुनेटली अर्ली टाइमिंग की वजह से 2010 में लॉस ऑफ लाइफ अवॉइड हो सकी.

0: मेरी आवाज गूंजेगी।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: The all-new Mazda CX-5 is big. Big on room for growing families. Big on smart features for busy lives. Big on five-star peace of mind. It's big on everything that makes it New Zealand's favorite Mazda. Mazda.
3: When India comes to town, Ayodhya Rova ka feel hi kuch alag ho jata hai. Cricket Nation ke pre-sale mein shamil ho. NZC.nz pe aur apne tickets sabse pehle book karo. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps vs India.
4: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
5: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
4: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
6: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
7: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Kuka Smart QLED TVs from $249. Eurotech soundbars just $129. Cordless stick vacuums only $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. Trade.

0: चटनी शॉट्स।
1: अभी लेटेस्ट न्यूज लेके आया हूँ चटनी शॉट्स में। आज कैंटबरी के ओहाका एरिया में प्रपोज एक लार्ज हाउसिंग डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा मैं। कार्टर ग्रुप ओहाका में अराउंड 900 नए घर बनाना चाहते हैं और इस डेवलपमेंट में सिर्फ हाउस नहीं बल्कि रिटायरमेंट लिविंग शॉप्स पार्क्स और अदर कम्युनिटी फैसिलिटीज भी प्लान्ड है। द एम इज टू प्रोवाइड मोर हाउसिंग फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। हाउएवर लोकल रेसिडेंट्स इस प्लान के अगेंस्ट हैं। उनका मेन कंसर्न है कि इतना बड़ा डेवलपमेंट ओहाका के रूरल कैरेक्टर को चेंज कर देगा। रेसिडेंट्स को फ्लडिंग, वेस्ट वाटर, ट्रैफिक और प्रेशर ऑन लोकल स्कूल्स एंड सर्विसेज को लेकर भी कंसर्न काफी कुछ है। वैसे यस, वायमा कीरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने भी कहा है कि एरियाज में इतना लार्ज डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी सभी सफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, वेस्ट वाटर सिस्टम और ट्रांसपोर्ट कनेक्शन को इम्प्रूव करना होगा। ऑन द अदर हैंड, कार्टर ग्रुप का कहना है कि डेवलपमेंट से कैनबरी में मच नीडेड हाउसिंग प्रोवाइड होगी और डेवलपर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स, रोड्स, पार्क्स, वॉकिंग एंड साइकिल एरियाज और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही बढ़िया प्लान है। वैसे यस, गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग द प्रोजेक्ट दो द फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रोसेस बिकॉज न्यूजीलैंड में हाउसिंग की डिमांड जो है वो काफी हाई है। सो ओवरऑल ये डेवलपमेंट एक बैलेंस का इश्यू बन चुका है। एक साइड पर न्यूजीलैंड को मोर हाउसेस की जरूरत है वाइल द अदर साइड लोकल पीपल वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल लाइफस्टाइल।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
0: हम
2: दिल से दिल तक। अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: गाना यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ. उस गाने को आपको गेस करना है कि गाना कौन सा, उसका टाइटल क्या है. एक्चुअली गाना तो ऑब्वियसली आपको पता पड़ जाएगा, बट उस गाने का टाइटल कौन सा है और इसमें इन किरदार, ये जो गायक गा रहा है, जो सिंगर गा रहा है, उसके अपोजिट कौन सी फीमेल लीड है, आप मुझे बताइएगा 5599 पे. लेकिन ये इससे पहले गाने का टाइटल मुझे भेजना. इसको हम डाउन करते हैं एंड There you go.

That's it. इससे ज़्यादा मैं नहीं चलाने वाला, but yes, आपका काम यहाँ पे ये है कि जल्दी से मुझे गाने का टाइटल जो है वो भेज दीजिए. गाने का टाइटल क्या है, किस नाम से आप सर्च करेंगे, और ये साथ में आप ये भी मुझे बताना कि इसमें इनके जो ये जो गा रहे हैं, ऑब्वियसली हिमेश रेशमिया गा रहे हैं, आपको पता ही, अब तो आवाज से पता ही पड़ गया होगा, बट उनके अपोजिट कौन है, लाइक कौन सी एक्ट्रेस ने इसमें किया है. एक नहीं, एक्चुअली दो एक्ट्रेस है इसमें. सो यस, 5599 इज द नंबर जहां पे आप मुझे भेज सकते हैं.

0: क्या नमस्ते, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। जो मुझे सुन रहे हैं 12 बजे से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने मुझे अभी भी ज्वाइन किया था, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। बने रहिए, बहुत सारी बातें करनी है इस आर में भी, बहुत सारी, एक्चुअली बहुत सारी। सो यस, इतनी सारी कि आप जितना आपको बताऊं मैं उतना कम है। वैसे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लॉन्च होने वाली बहुत ही जल्द, मेरा पर्सनल चीज़, तो मैं उसके बारे में बहुत जल्द बताऊंगा। अभी इसलिए नहीं बता सकता बिकॉज इट इज़ नॉट राइट टाइम देयर येट, बट आई कैन से दैट दिस इज समथिंग टू केटर एवरीवन। चाहे आप जेन जी हो, जेन अल्फा, नहीं वो तो नहीं, वो आई डोंट थिंक सो, आई वुड प्रेफर दैट। बट यस, उससे पहले वाली जनरेशन मिलेनियल हो गया, या फिर उनसे पहले वाली जनरेशन हो, या फिर सीनियर सिटीजन कोई भी हो, ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड। तो बस आपका काम क्या है, आप बस बने रहिए। वैसे अभी थोड़ी देर में आपके लिए इस आर में बहुत सारी चीज़ें लेके आना। इस आर में आपके लिए बोर्डिंग कॉल का क्यू भी चलने वाला है, तो मेक श्योर कि आप एकदम कान खोल के सुने वो कॉल। वो क्यू जो है वो कभी भी प्ले हो सकता है, और जैसे प्ले होता है आपको फट से एक घंटे के अंदर अंदर वो डालनी है इन्फॉर्मेशन। बोले तो बोर्ड नाउ इज द कोड, रो ऐप पे ही डलेगा ये। अगर रो ऐप नहीं है तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड कर लिया है फिर भी लिंक नहीं मिल रही है तो आप मुझे बस सिंपल शब्दों में भेज दीजिए बीसी। बीसी बोले तो बोर्डिंग कॉल का इनिशियल है बीसी, और उसे लिख के मुझे भेज दीजिए ताकि आप इस ड्रॉ में शामिल हो सकें। और विनर के तौर पर पता है आपको क्या है, दो लकी विनर जीतेंगे, एक रिटर्न, दो रिटर्न एयर टिकट मिल रहा है वनुआतू के लिए। जी हाँ, सोलोमन एयरलाइंस की तरफ से आ रहा है, जो कि फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआतू। सो यस, थैंक यू सो मच टू देम। और साथ में आपको $1,000 की स्पेंडिंग मनी भी मिलने वाली है, यानी कि आपके आपके पास फ्री में फ्लाई करके वापस आना बहुत ही बढ़िया मिलेगा। सो यस, स्टे ट्यून और सुनते रहिए आज का मेरा शो।
1: बचाओ क्या,

अरे एक चीज तो विश करना भूल ही गया, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी के इस महा उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। वैसे ये आप आज अगर सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ कैसे दर्शन करें, कृष्ण जन्माष्टमी है आज, तो यस ये रही सारी इंफॉर्मेशन। सबसे पहला दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर आप मनुकाव की तरफ रहते हैं या फिर मनुकाव की तरफ जाना चाहते हैं तो आज आखिरी दिन है, द केव पहुंच जाइए, 557 कैवेंडिश ड्राइव मनुकाव, जो कि वेव हाउस के अपोजिट है। 7:30 बजे के बाद ये प्रारंभ हो जाएगा यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी। उसके बाद राम कृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाव, यहाँ पे आप पहुंच जाइए आज 7:30 बजे के बाद। साथ में अगर आप डेकोर ऑफ एलिगेंस मनुकाव अगेन 16 लेम्बी ड्राइव, यहाँ पे भी मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी, यहाँ पे भी आप पहुँच सकते हैं। मेरे ख्याल से 7:30 बजे के बाद शुरू हो जाएगा, 9 बजे तक चलेगा ये। एंड इफ यू वांट टू गो टू हेंडरसन साइड तो 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन, यहाँ पे भी सेलिब्रेट हो रहा है, तो आप पहुँच जाइए। वैसे तो मैं थोड़ा जूम कर दूँ, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, इतना दिख नहीं रहा है, चश्मा पहन रखा है मैंने। वैसे 5 बजे से पूजा शुरू हुई है, हवन 6 बजे से शुरू होगा और 7 बजे आरती होगी, 7:30 बजे कथा भी होगा, भजन एंड अभिषेक विल बी हैपनिंग आफ्टर 9। कृष्ण जन्म महोत्सव जो है वो 10:30 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। एंड ओंटारियो सनातन संगम संस्था, जो कि आज मनाया जा रहा है आखिरी दिन है, यहाँ पे भी 2 सटन क्रिसेंट पपेटोटो, ये यहाँ पे आप पहुंच जाइए अपने परिवार के साथ। श्री कृष्ण हनुमान मंदिर नॉर्थ शोर की तरफ अगर आप रहते हैं तो यहां पहुंच जाइए, कृष्ण जन्म उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है यहां पे भी। 4 सितंबर को 12 बजे से 12:30 बजे तक ये होने वाला है रात को, कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव, ये एक मां दुर्गा टेंपल में भी मनाया जा रहा है, 4/3 ऑनस्लो एवेन्यू पापा टोए टोए। एंड यस, लंच टाइम रेंट लाइन के लिए मैसेज भेजना ना भूलेगा। जी हाँ, आई विल बी वेटिंग फॉर योर लंच टाइम रेंट लाइन। कोई भी ऐसी चीज है जो सचमुच आपको बहुत परेशान किया हो इन कुछ दिनों में, कुछ भी छोटी मोटी चीजें शेयर करना चाहते हैं तो 5599 इज द नंबर जहाँ पे आप मुझे भेज सकते हैं। लंच बॉक्स विद केतन। हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे। Keep calm because Punjabi swag is on. ਮੰਗੀ

0: रोहन रोहन ब्रो का मैसेज आया है मुनिकाओ से. वो कहते हैं माय रेंट इज अबाउट पीपल हु टेक फॉरएवर टू रिप्लाई टू अ सिंपल मैसेज बट समहाउ हैव टाइम टू पोस्ट स्टोरीज ऑल डे. इफ यू आर बिजी जस्ट से इट, डोंट लीव मी ऑन सीन फॉर 8 आवर्स. ब्रो ऑनेस्टली बताऊं हार्ड बट दैट्स ट्रू. ये लोग रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिजी है, वो इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज मे बी यू आर नॉट द प्रायोरिटी. सॉरी आई एम बीइंग सो हार्श हियर बट ये चीज़ मैं सीखी है लाइफ में दैट टाइम सबके पास होता है, बात करना सबको आता है, करना कोई नहीं चाहता. यानी कि जब आप किसी को टाइम देते हैं सबसे पहले बात तो है कि ऑफकोर्स आप खुद भी पॉइंट आउट कर सकते हैं अपने आप पे या फिर कोई और जहां पे आपको शिकायत होती है कि भाई यार जितना समय वो मुझे पहले देता था आजकल नहीं देता है. द सिंपल आंसर इज इंटरेस्ट खत्म हो चुका है. राइट, आई नो मैं बहुत ही ज़्यादा हार्श हो रहा हूँ. बोल रहे होगे कि भाई इतना आपका जो हार्डशिप जो थोड़ा कैजुअल है. बट यस दैट इज सो ट्रू यार, दैट इज सो ट्रू. आपका जब इंटरेस्ट किसी इंसान से ख़त्म होता है तो आप उसे अवॉइड करना शुरू करते हैं और ये हर एक इंसान करता है. ये एक इंसानियत, इंसान की फितरत है. आई मीन यू सी, बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी से मिलना कम करते हैं, बात करना कम करते हैं दैट डजंट मीन दैट यू आर लूजिंग द लव टूअर्ड्स दैट पर्सन. इट्स जस्ट दैट थोड़ा इंटरेस्ट जो है मिलने का वो अब सेम नहीं रहा है. इट्स जस्ट थोड़ा गैप आ गया है ये सारी चीज़ें. सो यस, जब आप मिलेंगे तो फिर से वही बरकरार होगा बट इट कैन नॉट बी द सेम एज हाउ इट यूज टू बी. इट कैन नॉट बी द सेम ऑलवेज. थिंग्स चेंज एंड हर एक इंसान बदलता है, नॉट बिकॉज ऑफ कोई बदलवा देता है ऐसा कुछ, बट येस इट इज़ ऑल अबाउट सर्कमस्टांसेस भी होते हैं कहीं ना कहीं, छोटा मोटा जो भी होगा, बट येस इंसान की फितरत है. मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है बोर बहुत हो जाता है जल्दी. आई मीन जल्दी एज एन कुछ लोग तो यू जस्ट सी नाउ इतना ज़्यादा रील का एडिक्शन हो गया लोगों को कि दे लिटरली वॉन्ट टू दे एक बार अगर फ़ोन पर घुस जाते ना बट वो कीप स्क्रोलिंग आफ्टर 3-5 सेकेंड नेक्स्ट. बट आई एम ग्लैड कि अभी तक तो रिलेशनशिप में ऐसी बातें ना हो रही हो, बट यू नेवर नो यार, यू नेवर नो ऑनेस्टली.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
3: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: चलिए बात करते हैं अभी की लेटेस्ट खबर पे। आज ऑकलैंड के कुछ सेकेंडरी स्कूल में वूपिंग कफ के केसेस सामने आए हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। फांगा पारारोआ कॉलेज और ओरेवा कॉलेज में वूपिंग कफ के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद हेल्थ अथॉरिटीज ने स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स को अलर्ट कर दिया है। वूपिंग कफ, जिससे पर्टुसिस भी कहा जाता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका मेन सिम्टम है एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग कफ। स्टार्टिंग में ये नॉर्मल कोल्ड जैसा लग सकता है, जैसे रनिंग नोज, फीवर और हल्की कफ, लेकिन कुछ टाइम बाद कफ ज्यादा सीरियस हो सकता है और सेवरल वीक्स तक रह सकता है। हेल्थ अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग पब्लिक रिस्क करंटली लो है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स या स्टाफ का इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्लोज कनेक्शन रहा है, उन्हें अपनी हेल्थ केयरफुली मॉनिटर करनी पड़ेगी। वैसे वूपिंग कफ यंग बेबीज के लिए स्पेशली डेंजरस हो सकता है, इसीलिए अगर किसी फैमिली में स्मॉल बेबी है तो एक्स्ट्रा केयर लेना इम्पॉर्टेंट है। इस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन वन ऑफ द बेस्ट प्रोटेक्शंस है। पेरेंट्स को मेक श्योर करना चाहिए कि उन्हें उनके चिल्ड्रन की वैक्सीनेशन अप टू डेट रहे। अगर किसी को वूपिंग कफ के सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उन्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए और मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। गुड हाइजीन भी इम्पॉर्टेंट है, हैंड वॉश करना, कफ करते टाइम माउथ कवर करना और सिक होने पर घर पर रहना इन्फेक्शंस को स्प्रेड होने से रोक सकता है। सो यस, आप अपने लोकल जीपी पे भी जाके पता कर सकते हैं। कुछ वैक्सीनेशन फ्री डोज भी हो रही है तो आप वहां पे पता कर सकते हैं। इफ दैट इज द केस देन यस व्हाई नॉट, आप जाइए और अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं।
1: लंच के मंच पे लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इस

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
2: अच्छा,
1: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं
2: मिसेस सिंह।
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
7: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
8: अब हमारा क्या होगा?
9: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
10: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
12: 2 PM call out, we're on your way. Heading back to the office, we're on your way there too. Commute to site, yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
13: Samoa is on sale now at Flight Centre. Book a 5-night fly and stay holiday from $1,169 per person. Book in store today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम
2: Well, एक बढ़िया सी रिव्यू की कहानी लेके आया हूँ. एक नई फिल्म गंधारी रिलीज हुई है. स्टोरी एक मदर बानी के अराउंड है. बानी की यंग डॉटर मिस्टी किडनैप हो जाती है. अपनी डॉटर को बचाने की कोशिश में बानी का एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी आई साइट लूज कर देती है. पुलिस से ज्यादा हेल्प ना मिलने के बाद बानी खुद अपनी डॉक्टर को सर्च करने का डिसीजन लेती है. ड्यूरिंग अ सर्च उसे पता चलता है कि सिर्फ उसकी डॉटर ही नहीं बल्कि और भी गर्ल्स मिसिंग थे. बानी स्लोली स्ट्रांग होती जाती है और उन लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेती है जो इस किडनैपिंग की रिस्पॉन्सिबल है. यहीं से मूवी का रिवेंज पार्ट स्टार्ट होता है. मूवी का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, स्पेशली बिकॉज मेन कैरेक्टर एक मदर है जो ब्लाइंड होने के बाद भी गिव अप नहीं करती. तापसी पन्नू की परफॉर्मेंस मूवी में काफ़ी स्ट्रांग है. उन्होंने इमोशनल सीन्स के साथ साथ एक्शन सीन्स भी स्ट्रांगली परफॉर्म किए हैं. हाउएवर मूवी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं. स्टोरी के कुछ पार्ट्स काफ़ी कन्फ्यूजिंग और अनरियलिस्टिक लगते हैं. कुछ कैरेक्टर्स और इवेंट्स properly explain नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोरी का इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है. क्लाइमेक्स भी कम्प्लीटली कन्विंसिंग नहीं लगता. बॉलीवुड हंगामा ने गंधारी को 2 out of 5 stars दिए, यानी कि बिलो 40% दिया है और इसे बिलो एवरेज रिवेंज भी ड्रामा कहा है. वैसे ये ओवरऑल गंधारी का कंसेप्ट जो है वो तापसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन वीक राइटिंग और कंफ्यूजिंग स्टोरी की वजह से मूवी उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं डाल सकी. कलेक्शन के तौर पर अगर देखें तो लेट्स क्विकली फाइंड आउट क्या रहा है मूवी का कलेक्शन. वैसे और भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है. वैसे तो आया नहीं, रिवील हुआ नहीं अभी तक. टॉक्सिक का बताया है 129, यानी कि 150 के आसपास होगा अभी इन टोटल. उसके बाद हार्ड डिस्क भी 0.013 फ्लॉप हो चुकी है. बंटवारा 1947 का अभी भी पेंडिंग बता रहा है. 36.6 का कलेक्शन कर चुकी है इंडिया से, तो आई वुड से 40 crore तो हो चुका होगा. आवर अपन टू 145.11 crore, यानी कि ऑलमोस्ट 150 से ऊपर तो हो चुका है. सो कलेक्शंस बहुत ही बड़े. मेरे ख्याल से ये इमरान हाशमी की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही है अब तक, जबकि वो इंडस्ट्री में इतने सालों से है.
0: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: दुबई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: वाले गाना चलाया था मैंने और आपसे सवाल किया था कि वो गाना कौन सा है मतलब गाने का टाइटल कौन सा गाना कौन सा ये तो पता ही होगा आपको लेकिन टाइटल कौन सा है वेल टाइटल है नाम है तेरा तेरा नाम है तेरा तेरा आपका सुरूर एल्बम्स है जिसमें और भी गाने हैं समझाना तेरा तेरा तेरा सुरूर आशिक बनाया ये तो खैर आपका आशिक बनाया तो मूवी का है आशिक बनाई गई एंड आई लव यू सयोनी झलक दिखला जा ये क्या एक से बढ़कर गाने थे यार तब के मतलब ऑनेस्टली मजा तो था लाइक यू नो टाइम था हिमेश रेशमिया का टाइम अभी भी है इट्स जस्ट दैट दे आर अदर टेस्ट एज वेल इन द मार्केट इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री तो उस वजह से इतने नहीं चल रहे गाने उनके लेकिन यस बैक टू बैक आई थिंक व्हाट 27 और 37 गाने इन्होंने हिट किए थे बैक टू बैक जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है आई गेस बट इसमें मेरा ये भी सवाल था कि एक्ट्रेस कौन है दीपिका पादुकोण इज द एक्ट्रेस जिन्होंने रोल किया बट एक नाम मैं ढूंढ नहीं पाया और यहां पे और किसने जवाब भी नहीं दिया वो है मतलब मुझे भी नहीं पता एक्चुअली अगर आप किसी कोई जानता है तो मुझे बताइए 5599 पे इस इन एक्ट्रेस का नाम जो बेसिकली हिमेश के एक्स लवर की का रोल कर रही है दीपिका गोइंग टू बी द न्यू वन उस वीडियो के हिसाब से जो नाम है तेरा तेरा बट जो पुराने ख्याल में आते हैं उनके ड्रीम्स में जो आती है लुक्स लाइक कि शायद उनकी एक्स होगी या जो भी होगा उनका नाम मैं पता नहीं कर पाया इनफैक्ट वीडियो में भी कोई क्रेडिट नहीं है सो दैट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज एक्चुअली बताइए अगर आपको पता है तो

0: गूंजेगी। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। किरण नमस्ते। वैसे यस, बने रहिए बिकॉज मैं हूं 3 मिनट तक, उसके बाद सैंडी जुड़ जाएगी फॉर द कॉफी ब्रेक और रुजबे उनका साथ देंगे द ड्राइव शो। पर यस, एंजॉय करते रहिए मेरा शो, एंजॉय करते रहिए, यही मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। आप बस बने रहिए बिकॉज इस आर में आपके लिए स्पोर्ट्स की खबर भी लेके आऊंगा और बहुत अलग अलग तरह की खबरें भी, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाने से, जोर का झटका जोरों से लगा।
1: बचाओ क्या

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल, एक बहुत ही बढ़िया खबर लेके आया हूँ, खबर अपडेट लेके आया हूँ फॉर द पीपल हु ट्राई द लक इन द लकी ड्रॉ। वेडनेसडे नाइट को लॉटो ड्रॉ में पावरबॉल जैकपॉट किसी ने विन नहीं किया, इसीलिए जैकपॉट अब रोल ओवर होकर 28 मिलियन हो चुका है। ये अमाउंट अब सैटरडे के नेक्स्ट ड्रॉ में जीता जा सकता है। पावरबॉल नहीं जीता गया, लेकिन 3 लॉटो प्लेयर्स ने फर्स्ट डिविजन विन किया। टोटल प्राइज $1 मिलियन था जो 3 विनर्स के बीच डिवाइड हुआ। इसका मतलब है कि हर विनर्स को अराउंड $333,000 मिले। एक विनिंग टिकट टे अवामुतु के फ्रेश चॉइस ने से खरीदा गया था, बाकी 2 टिकट्स माय लोटो से भी किए गए थे, एक रोटोरुआ से और एक वेलिंगटन से। स्ट्राइक 4 का प्राइस भी किसी ने विन नहीं किया, इसीलिए इसका जैकपॉट भी इंक्रीज होकर 400,000 हो चुका है, जो सैटरडे के ड्रॉ में अवेलेबल रहेगा। लोटो में कुछ न्यू चेंजेस भी आने वाले हैं। पावरबॉल नंबर्स की रेंज 10 नंबर से बढ़कर 14 नंबर होने वाली है, और इसके साथ जैकपॉट प्राइजेस भी इंक्रीज होंगे और एक न्यू प्राइस डिवीजन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इन चेंजेस का मेन पर्पस प्लेयर्स को बिगर प्राइज और मोर चांसेस टू विन देना है। ओवरऑल वेडनेसडे नाइट को 28 मिलियन पावरबॉल जैकपॉट किसी को नहीं मिला, लेकिन 3 लकी प्लेयर्स ने अराउंड 333,000 ईच जीता है, यानी कि 999। अब सैटरडे के ड्रॉ में 28 मिलियन जैकपॉट के लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा है। क्या आप भी इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्ट तो क्या आप भी लक ट्राई करते हैं यहाँ पे?
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हाँ।
3: We gotta go.
4: Are you ready?
5: Come and take a trip with me.
6: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
7: Vacation.
8: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
9: Let's go.
8: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
10: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
11: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
12: Samoa is on sale now at Flight Centre. Book a 5-night fly and stay holiday from $1,169 per person. Book in store today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
13: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
14: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर। मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार।
15: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है।
14: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज।
16: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते।
14: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग DBC।
17: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
18: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
17: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और 2 और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
18: पर डेवलपमेंट के पैसे
17: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
19: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz. Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
2: Their masalas are gram fresh, in-house every single day.
19: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
2: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
19: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.

0: या रिप्ले।
1: वेलकम बैक। एक बहुत ही खास बात, वुमेन्स क्रिकेट के अगर लवर है तो एक नया कंपटीशन शुरू होने वाला है 2027 में वुमेन्स के, इंट्रोड्यूस होने वाला है। वुमेन्स क्रिकेट में पहली बार होने वाला है आईसीसी वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी 2027 टूर्नामेंट इंडिया में 14 फेब से 28 फेब 2027 के बीच होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो ये फेब आने वाला है उसमें मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा, यानी कि दो सिटीज का नाम आ चुका है अभी। और नेक्स्ट ईयर तो वर्ल्ड कप भी है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 2023 वाला तो वर्ल्ड कप याद करके अभी भी दुखता है, लेकिन उसके बाद तो यार इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है, दो बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, तो घाव बहुत बढ़िया तरीके से भरा है मुझे ऐसा लगता है। एंड ऑफकोर्स एक मेन वर्ल्ड कप भी जीती है इंडिया, फीमेल राइट वुमेन्स वर्ल्ड कप भी जीती है इंडिया, तो चार चार कप, मतलब एक हारा है लेकिन चार घर पे भी आया है। वाओ, वैसे ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इस टूर्नामेंट में करीबन 6 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। पाकिस्तान नहीं है इसमें, दैट्स स्ट्रेंज, मे बी हो सकता है रैंकिंग के हिसाब से होता होगा ये। वैसे टूर्नामेंट का फॉर्मेट सिंपल है, सभी टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट एक मैच खेलेगी, इसके बाद पॉइंट्स टेबल में जो टॉप टू टीम्स होंगी वो फाइनल में जाएंगी। फाइनल 28 फेब को होने वाला है, यानी कि क्वाइट सिंपल है ये, तो जो टॉप टू टीम है जैसे आईपीएल में होता है वैसे ही, अगर आपने देखा है तो। ओरिजिनली टूर्नामेंट श्रीलंका में होना था बट कुछ रीजंस की वजह से होस्टिंग इंडिया को दे दी गई है। इंडिया में टूर्नामेंट होने से लोकल क्रिकेट फैंस के लिए भी लाइव मैचेस देखने का ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडिया के लिए ये टूर्नामेंट और भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया इज द करंट वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया भी एक स्ट्रांग टीम है क्योंकि वो करंट वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है। मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट वुमेन्स क्रिकेट के लिए एक बिग स्टेप फॉरवर्ड है, इससे फीमेल क्रिकेटर्स को और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा और यंग गर्ल्स को क्रिकेट में करियर बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। डेफिनेटली।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला

भाई साहब, क्या आपने अपनी लाइफ में सबसे महंगी कॉफी पी है? अगर हाँ तो कितने की पी है? मुझे आप भेजिए 5599 पे, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ की सबसे महंगी कॉफी पता है मुंबई में पी थी, आई थिंक समवेयर अराउंड 800 रुपीस, जब मैं ताज होटल है, पता नहीं कहाँ गया मेरे को, ताज होटल ही होगा शायद ना नाम, क्योंकि नया नया हो चुका था तो इसलिए भी एग्जैक्टली बट मेरे ख्याल ताज होटल ही है, वहाँ पे 800 या 850 रुपए मैंने दिए थे, जो कि समवेयर अराउंड आज के टाइम पे ऑब्वियसली रेट्स बढ़ चुके हैं, कन्वर्जन रेट बढ़ चुके हैं, तो उस वजह से इट वुड बी समवेयर अराउंड 16 or 17 डॉलर न्यूजीलैंड के हिसाब से, जस्ट इमेजिन, और यहाँ पे हम 6-7 डॉलर में ले लेते हैं। सो यस, वो कॉफ़ी इतनी महंगी थी मेरे लिए, उससे महंगी तो मैंने कभी पी नहीं है, मुझे पता भी नहीं था कि मिलती है कि नहीं मिलती है उससे महंगी, बट अगर आपने किया तो आप मुझे बताइए सबसे महंगी कॉफ़ी आपने कितने की पी है। बट अभी की जो खबर है वो ये है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, नॉर्मली न्यूजीलैंड में एक कॉफ़ी करीबन 5 से 6 या मैक्स 7 की होती है, बट क्राइस्टचर्च के रूख कैफे ने एक वेरी स्पेशल कॉफ़ी इंट्रोड्यूस की है जो कि $100 पर कप है। अब क्वेश्चन ये है कि इतना एक्सपेंसिव कॉफी में है, स्पेशल क्या है, लाइक इतनी महंगी है भाई, है क्या? वैसे ये कॉफी जो है वो पनामा के माउंट टोटुमस फार्म से आती है और ये कॉफी बहुत रेयर है और इसकी क्वालिटी भी एक्सट्रीमली हाई है। सो यस, कॉफी एक्सपर्ट्स ने इसे 96.2 out of 100 स्कोर दिया है, जो एक वेरी हाई रेटिंग है, तो इसकी रेटिंग जो है रेटिंग के हिसाब से तो फिर यार प्राइस भी 96.2 ही होनी चाहिए। एनीवेज, पुअर जोक्स अपार्ट, इस कॉफ़ी का टेस्ट जो है वो नॉर्मल कॉफ़ी से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें फ्लोरल और फ्रूटी फ्लेवर्स जो है वो भी शामिल है और टेस्ट काफ़ी क्लीन रहता है इसमें, लेकिन कैफ़े के ओनर्स के अकॉर्डिंग अगर आप कॉफ़ी एक्सपर्ट नहीं है तो शायद आपको ये नॉर्मल फ्रूट ड्रिंक जैसी लगे। यार पकड़े गए यहाँ पे। कैफ़े ने ये कॉफ़ी एक स्पेशल ऑक्शन से परचेज की थी, इसीलिए सप्लाई भी बहुत लिमिटेड है, कैफे के पास सिर्फ अराउंड 14 टू 15 कप्स बनाने जितना कॉफ़ी अवेलेबल है। इंटरेस्टिंगली, कॉफ़ी सेल होने से पहले ही 2 लोगों ने प्री ऑर्डर कर दी है, इससे पता चलता है कि कुछ कॉफ़ी लवर्स रेयर और प्रीमियम कॉफ़ी एक्सपीरियंस के लिए हाई प्राइस पे करने को रेडी हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि $100 एक कप कॉफ़ी के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है यार, ऑनेस्टली मैं प्रोबेबली इतने पैसे कॉफ़ी पर स्पेंड नहीं करूंगा, बट सीरियसली कॉफ़ी लवर्स के लिए दिस कुड बी द यूनिक एक्सपीरियंस, अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि एक बार तो ट्राई करना बनता है, अगर आप $100 बचा सकते हैं तो, मतलब मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ कि $100 में और क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है यार, बहुत कुछ, मतलब मैं अगर कॉफ़ी भी पीऊँ अगर $100 की तो भी मैं कितने दिन की कॉफ़ी, जैसे मान लो एक दिन की अगर एक कॉफ़ी पीऊँ तो भी मैं करीबन 15 से 20 तो पी सकता हूँ, और यहाँ पे से भी एक कॉफ़ी आ रही $100 की, वाह, जाना तो बनता है यार, पियो नहीं पियो एक बार देख के तो आए कि भाई है क्या उस कॉफ़ी में ऐसा।

0: चलिए पॉडकास्ट की बात कर लेते हैं। एक से बढ़कर एक पॉडकास्ट हम लेके आते हैं और अभी तीन चीजें हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी, व्हाट कुड चेंज, इसके बारे में बात करने आए थे यहाँ पे डॉक्टर परमजीत परमार, जो कि इमिग्रेशन स्पोक्स पर्सन फॉर द ACT एक्ट पार्टी, जिन्होंने विजय एंड पूजा से डिस्कस की है इस बारे में, पार्टी का प्रपोज चेंजेस टू न्यूजीलैंड इमिग्रेशन पॉलिसी। अगर आप यहाँ के रेसिडेंट नहीं हैं और या फिर अगर आपको इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन से काफ़ी नॉलेज मिले और अपडेट रहना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए, बिकॉज उन्होंने एक्सप्लेन किया है द पर्पज्ड फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायरमेंट फॉर परमानेंट रेसिडेंसी, जिसमें प्लान टू रिक्वायर 2 साल ऑफ रेसिडेंसी इन न्यूजीलैंड ड्यूरिंग एवरी रोलिंग 5-year पीरियड। और उनके साथ उन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि वॉट दिस कुड मीन टू हैव योर PR होल्डर्स, मतलब ये बेसिकली जो अभी के परमानेंट रेसिडेंट होल्डर हैं उनको क्या इम्पैक्ट दे सकती है, एंड साथ में ऑफकोर्स पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस एज वेल, एंड हाउ द पॉलिसी एम्स टू कीप न्यूजीलैंड इमिग्रेशन सिस्टम फेयर एंड बैलेंस्ड। ये सारी पॉडकास्ट में आपको मिल जाएगा। आप BF लिखिए, ब्रेकफास्ट का इनिशियल है BF, और 5599 पे भेज दीजिए। साथ में बिल्डिंग ए कम्युनिटी थ्रू कंटेंट, ये अनफिल्टर्ड की तरफ से आया है, जिसमें अभी ने ज्वाइन किया था सैंडी एंड रुजबे को और शेयर की है अपनी जर्नी, वन ऑफ न्यूजीलैंड रिकग्नाइजेबल वॉइस ऑफ साउथ एशियन कम्युनिटी, और एक स्पेशल कनेक्शन टू फीजी इंडियन कम्युनिटी एज वेल। उन्होंने बात की है अबाउट द रियलिटी ऑफ मूविंग टू अ न्यू कंट्री, और कैसे अभी ने एक कॉमेडी एंड प्रैक्टिकल एडवाइस के साथ एक दूसरे को हेल्प की थी, एंड ऑफकोर्स वाई कॉन्टेंट क्रिएशन इज बिकमिंग अ पावरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्यूचर। ये पॉडकास्ट के लिए आप मुझे ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए, या फिर आप अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुजबे रोआ पे या फिर स्पॉटिफाई पे सर्च कर सकते हैं। एंड दिस वन मोर, ट्रेंड मेकर्स इज अ पावर पैक्ड म्यूजिकल जर्नी वेयर एवरी एपिसोड इज बिल्ट अराउंड अ यूनिक थीम and bringing together memorable songs and stories from Bollywood. इस एपिसोड में एक परफेक्ट फॉर anyone planning a road trip or a long drive. अगर कोई प्लानिंग करने वाला है तो ये डेफिनेटली स्पेशल हो सकता है। स्पेशल क्यूरेटेड प्लेलिस्ट डिज़ाइन, जहाँ पे आप हाई एनर्जी के साथ साथ काफ़ी लंबे रास्ते एकदम मजे से निकाल सकते हैं। सो यस, आप TM लिखिए, ट्रेंड मेकर्स को का जो इनिशियल है TM, उसे 5599 पे भेज दीजिए, या फिर आप रोआ पे सर्च कर सकते हैं ट्रेंड मेकर्स।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
3: तो फिर देर किस बात की, बुला रहा है
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
5: हेलो एवरीबॉडी,
3: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
2: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
3: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: So, you've been thinking about adding a modular home to your property.
7: Yes, and Zillo sounds great, but I'd really like to see one in person.
6: Now you can. Come and walk through 2 fully finished Zillo homes at the Auckland Home Show 10 to 13 September. Explore the layouts, see the premium inclusions for yourself, and talk to the team about what could work on your property.
7: Now that I like the sound of.
6: Discover Zillo by Ashcroft Homes at Tiny Living Lane or visit zillo.co.nz.
8: New Zealand's number one home show is back. With inspiration from the front gate to the back fence, visit the Auckland Home Show 10 to 13 September, Auckland Showgrounds. Explore hundreds of exhibitors and the all-new garden showcase. Buy tickets now at aucklandhomeshow.co.nz.
9: No matter what you're working on, Mitre 10 Mega Westgate or Henderson aapke liye sab kuch aasan banata hai. Zabardast range, expert advice, everything you need under one roof. Plus earn air points every time you shop. T's and C's apply. Mitre 10 Mega Westgate and Henderson, helping you get it done right.
10: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
11: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
12: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
13: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Kuka Smart QLED TVs from $249. Eurotech soundbars just $129. Cordless stick vacuums only $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. Trade

0: विद केतन.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम टेक टॉक.
2: टेक्नोलॉजी फील्ड से खबर लेके आया हूँ. थोड़ी कंसर्निंग तो है ही, जरूर है. और मैं हमेशा वो बात करता हूँ कि टेक्नोलॉजी इज गुड, बट ऑन अदर साइड उसके थोड़े ड्रॉबैक्स भी आते ही हैं. वेल यस, आज मैं बात करने वाला हूँ स्मार्ट ग्लासेस और उनके प्राइवेसी के बारे में. आजकल स्मार्ट ग्लासेस काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और ये नॉर्मल ग्लासेस जैसे बिल्कुल भी नहीं है. अगर दिखते तो वैसे ही हैं बट बहुत ही ज़्यादा एडवांस है. इनमें कैमरे होते हैं, माइक्रोफोन होता है और AI भी होता है. इन ग्लासेस से फोटोज और वीडियोस ईजिली रिकॉर्ड किया जा सकता है और अगर आप ध्यान ना दें तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपकी इमेज जो है कब किसने क्लिक कर दी, रिकॉर्ड कर ली. एंड यू नेवर नो इफ दे आर शेयरिंग और नॉट. और प्रॉब्लम यहीं पर शुरू होती है. प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई पर्सन स्मार्ट ग्लासेस पहनकर रिकॉर्डिंग कर रहा है तो सामने वाला पर्सन को हमेशा पता नहीं होता कि उनका वीडियो बन रहा है. न्यूजीलैंड में भी कैमरा वाले स्मार्ट ग्लासेस इजीली अवेलेबल है. ये टेक्नोलॉजी यूजफुल भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल विजुअल इम्पेयर्ड पीपल के लिए. AI ग्लासेस साइंस रीड करने और ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है. लेकिन इसका रॉन्ग यूज भी हो सकता है. किसी पर्सन को सीक्रेटली रिकॉर्ड करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की जा सकती है विदाउट देयर परमिशन. इससे प्राइवेसी और सेफ्टी के सीरियस कंसर्न क्रिएट हो सकते हैं. सवाल पता है यहाँ पे क्या है, न्यूजीलैंड का लॉ हमें प्रोटेक्ट करता है या नहीं? करंट लॉ कुछ सिचुएशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेसेस में सीक्रेटली रिकॉर्ड करना हर सिचुएशन में इलीगल नहीं है. प्राइवेसी रूल्स स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस के यूज में पर्सनल इंफॉर्मेशन को कवर करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स के एक्शंस के लिए रूल्स मोर लिमिटेड हो सकते हैं. फ्यूचर में स्मार्ट ग्लासेस और एडवांस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल फेशियल रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स भी कॉमन हो सकते हैं. इसीलिए प्राइवेसी के रूल्स को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है. ओवरऑल स्मार्ट ग्लासेस एक यूजफुल टेक्नोलॉजी है बट प्राइवेसी का रिस्क भी क्रिएट करके है. मेरे ओपिनियन में हमें टेक्नोलॉजी को स्टॉप नहीं करना चाहिए, लेकिन क्लियर रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए यहाँ पे और इंश्योर करना चाहिए ताकि किसी को बिना परमिशन सीक्रेटली रिकॉर्ड ना किया जा सके. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील. या
0: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट NZPMI.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ही बढ़िया आज की बातें, आपकी गपशप आपके साथ और ऑफ कोर्स आपका प्यार। बने रहिए बिकॉज सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली इन द कॉफी ब्रेक। उसके बाद रुजवे उनका साथ देंगे और रुजवे माइट बी जॉइनिंग द कॉफी ब्रेक एज वेल। बट मैं निकलता हूं, आई विल सी यू ऑन मंडे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस। हैप्पी वीकेंड एंड हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू यू ऑल। थ्रोबैक
1: ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-4624 फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: धर्म पुजारी।
1: हम पर रवि का साथ है आज, जबकि 4th of September है, तो ऐसे में कई जगहों पर बड़े ही धूमधाम के साथ में आज कृष्ण जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया जाएगा। आप भी उसी ओर इवनिंग में जाने वाले हो सेलिब्रेट करने के लिए, तो आपको हमारी ओर से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी अभी से आपको विश करते हैं। और इसके साथ में जबकि 4th of September है, तो आज सुबह सुबह यहाँ पर हमारे ब्रेकफास्ट शो में एक ड्रॉ भी हुआ है, जहाँ पर आपको मालूम होगा कि एक प्रमोशन चल रहा था डेट्स रिवर्स ग्रिल ऑन एयर। इसके तहत जो ड्रॉ हुआ है यहाँ पर, जो

0: $500 कैश इनाम ये महेंद्र कुमार के हाथ लगा है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इनकी तो जो फादर्स डे सेलिब्रेशन है अब इनमें चार चांद लगने वाली हैं क्योंकि $500 का इनाम इनको मिल चुका है और इसके बारे में हमारी जो टीम है इनसे और भी कॉन्टेक्ट करेगी ताकि इनको इनका प्राइज दिया जा सके। इसके साथ में आज ड्राइव शो में आपके साथ में ये भी अलाइन करेंगे कि जो हमारे जो सोशल मीडिया पर डेड्स एआई अपग्रेड जो प्रमोशन चल रहा था जहां पर $300 के इनाम आप जीत सकते थे इसके बारे में भी आपके साथ में ड्राइव शो में जो ड्रॉ है इसका ऐलान करेंगे ताकि पता तो चले कि $300 के इनाम ये किसके हाथ लगा है। लेकिन 4 सितंबर है तो ऐसे में आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं सत्या देवी सिंगला जी जो ग्रेटन कोर्ट में रहती है और आपको आपके ढेर सारे चाहने वाले हैं जो आपको बेस्ट विशेज दे रहे हैं और इनमें सबसे पहला पहल भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट है जिन्होंने आपके जन्मदिन पर हमारे पास में ईमेल किया है और कहा है कि हमारी ओर से सत्या देवी जी को और ढेर सारों शुभकामनाएं आप दीजिएगा ओनिया। तो चलो आपको सत्या देवी सिंगला जी हमारी तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप भी अगर जो अपना जन्मदिन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं 4 सितंबर तो इसका जो मैसेज है 5599 पर आप हमारे पास में भेज सकते हैं।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
2: कभी भी कहीं भी
3: किसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप किसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप किसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप किसे कहते हैं हिप

0: उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
3: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
2: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
4: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
5: Sorry about the wait. That was just a white bread bun, a patty, one slice of cheese, two pickles, some sauce, a soft drink, and some fried frozen chips. Is that all?
6: Yes, that's all, thanks. Actually, how much is it? You know what? Cancel my order. I'm just going to make my own large combo with stuff from Pack and Save.
5: Whatever. Drive through then.
6: Oh, don't be like that. Make your own takeaways for less at Pack and Save. Some assembly required.
5: Your voice is weird, man.
7: New Zealand's number one home show is back. With inspiration from the front gate to the back fence, visit the Auckland Home Show 10 to 13 September, Auckland Showgrounds. Explore hundreds of exhibitors and the all-new Garden Showcase. Buy tickets now at aucklandhomeshow.co.nz.
8: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
9: Make Father's Day super at Super Cheap Auto. Get 25% off store-wide. Save on Century, Meguiar's, Rhino Rack and more. Starts online tonight at 5 p.m. NZDT in Saturday. T's and C's apply. Make it super. Super Cheap Auto.
10: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
11: Mrs. Singh,
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
13: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.in.
0: Non-stop Bollywood.
14: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम playing Bollywood's biggest hits. Coffee break with Sandy.
15: हाँ, ये सच है, कॉफी ब्रेक तो है लेकिन सैंडी के साथ में नहीं। मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ, सात तक रहूंगा और आपके साथ में मजेदार बातें भी होती रहेंगी। क्या आपको ये जो विंटर गया है, जबकि अब स्प्रिंग में हम पहुँच गए हैं, तो हाउ डिड यू फील दिस विंटर? क्या आपको ज़्यादा ठंड लगी या फिर कम लगी? क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है, एथ साइंसेज न्यूजीलैंड ने रिपोर्ट तैयार किया है कि ये जो विंटर था इस साल का, दिस वॉज द थर्ड वार्मेस्ट विंटर। और जबकि इन्होंने जो टेम्परेचर ये डेली रिकॉर्ड करते थे, तो जून, जुलाई और अगस्त में जो टेम्परेचर का रेंज था, ये था 9.7 डिग्री से लेकर 1.1 डिग्री तक। और मेरे खातिर तो ये बिल्कुल ठंडा है, इट्स कोल्ड। लेकिन आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूँ एक पते की बात, ये जो रिकॉर्ड कीपिंग ये कर रहे हैं एथ साइंसेस न्यूजीलैंड, इन्होंने ये रिकॉर्ड स्टार्ट किया था रखना, यानी कि दे वे कीपिंग अ ट्रैक राइट फ्रॉम 1909। और जी हाँ, इतने पुराने रिकॉर्ड्स इनके पास में हैं जहाँ पर ये टेम्परेचर को नोट करते थे, और उन्हीं को देखकर अब ये पता लगा है कि दिस ईयर द विंटर वॉज थर्ड वार्मेस्ट। आपको कैसा लगा, ज़्यादा ठंड लगा या कम? आप इसके बारे में 5599 पर मैसेज कर सकते हैं हमारे पास में, या फिर आपको हमेशा ठंड लगता है एंड यू फील क्वाइट कोल्ड ऑलवेज, तो 800-004-866 पर आप बातें भी कर सकते हैं।
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
16: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
17: मैं लाऊं अपना ए गेम।
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: cycle.
1: Get ready.
2: Passengers, stand by. The next hump boarding call could be your ticket to paradise. Listen out and get ready for your chance to win 2 return air tickets to Vanuatu and $1,000 spending money.
3: Thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
4: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
5: हम रवि के साथ है एंड इज द वीकेंड. और जबकि वीकेंड की बात हो रही है तो केशवल ने कॉल किया हमारे पास में, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और ही इज़ इन्जॉइंग द प्रोग्राम. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. आप वापस घर की ओर बढ़ रहे हैं. ऐसे में मेरे दिल में एक ख्याल आया कि आपसे पूछूं, कितनी दूर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है टू गेट टू वर्क. सपोजिंगली आज मैं निकला हूँ ईस्ट ऑकलैंड से निकलने के बाद में मैं पहुँचा हूँ सिटी आपके लिए ये शो करने के लिए. लेकिन आप में से या फिर आप कितना दूर ट्रेवल करते हो, कितनी दूर तक आपको घर से जाना पड़ता है काम करने के लिए, या फिर आप ट्रकी हो और आज रास्ते पर हो, सफ़र कर रहे हो, प्रोग्राम का मज़ा ले रहे हो, तो हमें बताइए लॉन्ग हॉल में या फिर आप डेली ऑन एवरेज कितने दूर तक आपको ट्रेवल करना पड़ता है. आई विल बी ईगर टू नो. 5599 पर आप मैसेज कर सकते हैं इसके बारे में, या फिर 0800 004 866 पर आप कॉल करके बातें भी कर सकते हैं कि घर से कितनी दूर तक आपको सफ़र करके काम पर जाना पड़ता है. आई विल बी ईगर टू नो एज आई सेड कि लोग हमारे बीच में काफ़ी दूर से ट्रेवल करते हैं. चलो मोहितेश का मैसेज आ गया है, ये फ्लैटबुश से एयरपोर्ट तक जाते हैं. हाँ, ये तो काफ़ी करीब है, लेकिन फिर भी आप ट्रेवल करते हैं और इसके लिए आपकी जो मैसेज है ये हमारे पास में पहुँचा है. लेकिन आज का जो मौसम है इसको ध्यान में रखते हुए आप भी रास्ते पर है, सफ़र कर रहे हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा, होले होले सफ़र कीजिएगा एंड हाँ, कीप सेफ आउट देयर. और ऐसे में जबकि कॉफ़ी ब्रेक है आपके साथ में, ढेर सारे और गाने लाइंड अप है आपके लिए बिल्कुल. लेकिन आई वांट टू नो कि आप भी कितने दूर तक ट्रेवल करते हैं. जैसे कि मोहितेश ने बताया है, वो फ्लैटबुश से एयरपोर्ट तक जाते हैं, उनका ट्रेवल है. और आप कितने दूर तक जाते हो ज़रूर बताइए 5599 पर.

हम पर यह है कॉफी ब्रेक अवि के साथ में, और जो सवाल किया था हमने आपसे कि कितनी दूर तक आपको ट्रेवल करना पड़ता है काम पर पहुंचने के लिए, और ढेर सारे जवाब आए हैं। जबकि 92512 ने लिखा है 2 आवर्स तक ये ट्रेवल करते हैं। इसके साथ में अंतरप्रीत ने जवाब दिया है कि ये ट्रेवल करते हैं तकनीनी से लेकर सेंट जॉन तक। और इसके साथ में पपकुरा से सेंट हेलियस डेली काम के लिए ट्रेवल करती है रेनू, थैंक यू सो मच। और आप पपकुरा से सेंट हेलियस तक जाती हो, हाँ ये भी काफ़ी एक बिजी ट्रेवल होगा, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क स्केड्यूल ट्रैफिक में काफ़ी फंसना पड़ता होगा। लेकिन इसके साथ में जो अभी तक मैसेज आया है, इमेजिन दिस, लास्ट नवंबर से जय शोले वाले नहीं पामस्टन वाले जय, ये एवरी वीक पामस्टन नॉर्थ से ट्रेवल करते हैं ओटाहू के लिए, काम करते हैं फॉर द होल ऑफ द वीक, फिर वापस वीकेंड में ये लौट कर जाते हैं पामस्टन नॉर्थ। तो ये लास्ट ईयर नवंबर से ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, इट्स कमिंग अप टू अ ईयर, होपफुली जय ये आपके लिए जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। और आपको भी शायद ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता होगा काम के लिए, तो देखिए और सोचिए कि कम लोग नहीं है, कई लोग हैं जो ट्रेवल करते हैं और ट्रैफिक में कहीं ना कहीं फंसते हैं। तो आप भी अगर जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो चिंता छोड़ो, हमारे साथ में हो लो, हम पर सुनते रहिए और आपका ध्यान रखेंगे, आप भी सड़क पर अपना ख्याल रखिएगा। पपटो से ड्यूरी ट्रेवल करते हैं और 3623 आप, तो ऐसे में आप भी रास्ते पर है, सफ़र कर रहे हैं, कीप इन्जॉइंग, अभी का साथ है और यह है कॉफ़ी ब्रेक।

0: boarding call. You could be boarding a dream trip to Vanuatu with two return air tickets from Solomon Airlines and $1,000 spending money.
1: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
2: हम पर यह है कॉफी ब्रेक अभी के साथ में, जबकि कुछ 18 मिनट बाकी है और शाम के 4 बजने में. और आपको बता दूं, जबकि काफ़ी प्रमोशंस अभी ख़त्म हो चुके हैं जो आपके लिए कर रहे थे, लेकिन हम बोर्डिंग कॉल इज़ नाउ ओपन. ये आपके लिए अभी भी मौका है जहां पर आप एक शानदार प्राइस जीत सकते हैं. आपका जो ड्रीम आइलैंड एस्केप है, ये सिर्फ एक बोर्डिंग कॉल अवे है. और ऐसे में आपके हाथ लग सकता है टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद द काइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी. ये आपके हाथ लग सकता है. आपको सिर्फ एंटर करना है और वही करते रहना जो आप इतने दिनों से करते आ रहे हो. आपको सिर्फ हम सुनते रहना है एवरी वीकडे, और इसके साथ में सुबह के 8 की विद इन द आवर और 8:11 AM विद इन द आवर, साथ में 1 PM के इर्द गिर्द, और साथ में शाम को 5 बजे आपके हाथ में यह मौका लगेगा जहां पर आपको रेडियो पर सुनाई देगा ये बोर्डिंग कॉल. उसके बाद में आपके पास में 1 आवर तक मौका है टू हेड टू रोवा, और वहां पर जाकर आप जैसे ही सर्च करेंगे बोर्डिंग कॉल और बोर्ड नाउ लिखकर एंटर करोगे तो आप ड्रो में शामिल हो जाओगे. इसके लिए अगर जो आपको एक लिंक चाहिए टू ईजली नेविगेट टू द पेज, तो BC लिखकर 5599 पर भेजो. बस इतना ही आपको करना है और आपका नाम ड्रो में शामिल हो जाएगा जहां पर आप जीत सकेंगे गेट अवे ट्रिप टू वनुआतु. तो हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस, फ्लाइंग 4 times ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतु. विजिट solomons.com. T's एंड C's डू अप्लाई.
0: Lock your property's true sale value with NZPMI. Your

0: 800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: हम पर यह है कॉफी ब्रेक और मैं हूं अभी आपके साथ में और इधर नहीं उधर एक्चुअली बा में फिजी आइलैंड्स में जो बैटल ऑफ द जायंट्स कॉम्पिटिशन है ये पूरे पैमाने पर जारी है जहां पर जो पहला खेल आज हुआ है सुबह की जीत नावुआ के खिलाफ 3-1 से हुई जहां पर सुबह के गगामे फेनी ने एक हैट्रिक स्कोर किया और इसी के साथ साथ सुबह टीम को हेल्प किया टू अटेन अ 3-1 विन ओवर नावुआ एफसी। इसके साथ में जो एक और एक खेल अभी चल रहा है लंबासा और साथ में नसीनू के बीच में और फिर उसके बाद में 5 बजे रेवा टेक्स ऑन लोटो का एफसी और जो आज का आखिरी खेल है द क्रैकिंग मैच बिटवीन नेंडी एफसी एंड बा एफसी। तो अगर जो आप भी फिजी से हो फुटबॉल को सपोर्ट करते हो अपने होम डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट करते हो अपना जो टीम है आप हमारे पास में उसका नाम 5599 पर भेज सकते हो ताकि हम भी देखें कि कितने सपोर्टर्स आर्डेंट सपोर्टर्स हमारे बीच में है। 5599 पर अगर जो आप भी बैटल ऑफ द जायंट्स में इंटरेस्ट रखते हो कोई एक टीम को अपने होम डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट करते हो उसका नाम 5599 पर भेजें।

अच्छा, बातें हो रही थी बैटल ऑफ द जायंट्स को लेकर, और जैनेश जेनू ने लिखा है बा तो बा है, तो चलो आपने तो छेड़ ही दिया। अब काफ़ी लोग और डिस्ट्रिक्ट के भी हैं जो आप मैसेज करेंगे अपने अपने होम टीम के लिए।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम। Accurate traffic.
6: Fuel savings at gas today.
7: Mainly clear overnight for Auckland, a low of 11. State Highway 1's closed between Warkworth and Wellsford due to a crash detour via State Highway 16 in both directions. Just two lanes open on the Harbour Bridge in each direction due to severe wind gusts. On the northwestern to Massey, 33 minutes. On the southern to Monaco, 55. And Drury in hour 16, it's heavy northbound from Highbrook Drive to Green Lane and south from Spaghetti Junction to Sylvia Park.
6: Enjoy fuel savings and collect points when you scan your everyday rewards card at gas.
8: Make Father's Day super at Supercheap Auto. Get 25% off store-wide. Save on Century, Meguiar's, Rhino Rack and more. Starts online tonight at 5pm NZDT in Saturday. T's and C's apply. Make it super. Supercheap Auto.
9: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor pouch packs, $9.99 each, or Oreo cookies select size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
10: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
11: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर। मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार।
12: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है।
11: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज।
13: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते।
11: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
14: When you see them on the road, you're suddenly not in as much of a rush to get home. Suddenly, texting her back can wait. You suddenly remember to put your seatbelt on. And you suddenly remember what your indicator's for. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
15: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Kuka Smart QLED TVs from $249. Eurotech soundbars just $129. Cordless stick vacuums only $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
1: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
16: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 4. A major stretch of State Highway 1 in northern Auckland is blocked following a crash. It's happened just south of Wellsford with critical injuries reported. St John sent 7 units to the scene, 3 of which remain, including 2 helicopters. Both north and southbound traffic is being diverted via State Highway 16. NZTA is asking motorists to delay their journey or allow extra time. Police have been responding to what they call a serious incident in Nelson. At around midday, officers were called to Quarantine Road near the city's airport and then Parker's Road about a kilometre away. They're yet to provide an update, but road closures remain. Whitebaiters are being asked to double-check weather forecasts before heading out as the season kicks off. Water Safety New Zealand Chief Executive Glenn Scanlon.
17: We've had quite a bit of disturbed weather recently, particularly around that west coast of New Zealand, so don't be shy about waiting for a better day.
16: The Financial Markets Authority has posted new warnings about suspected scams using fake celebrity endorsements. It's identified the website luckypackages.com as being associated with a deepfake video or fake news article. To sport, Kiwi Formula One driver Liam Lawson is back behind the wheel of the Red Bull car this evening. It's the opening practice session for the Italian Grand Prix at the famous Monza circuit. Motorsport with Mag and Turbo's 80,000k tyre warranty. And Black Cab Tim Seifert belted 50 off 36 balls in the Caribbean Premier League cricket, but his St Lucia Kings were rolled for 98 and lost to the Patriots by 137 runs.
1: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
2: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
18: Few showers आप expect कर सकते हैं जो बाद में चलकर heavy भी होंगे. Evening तक clear हो जाएंगे. Sunset at 6:04 PM. साथ में minimum temperatures overnight at 11 degrees, double digits.
19: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
1: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
20: Yo,
1: you're listening to Avineet.
18: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में, जबकि हमारे स्टूडियोज में 4:03 हो चुके हैं. ऐसे में आपको बता दूं, जबकि समाचारों में आपने सुना है कि एक कार एक्सीडेंट हुई है डोम वैली के आसपास, इसीलिए आप भी अपना खुद का बहुत सारा ख्याल रखिएगा जब भी आप रास्ते पर हो. तो ड्राइव अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस, यही कहना चाहेंगे आपसे. और जबकि आप भी निकल पड़े हैं, वीकेंड आ ही गया है, ऐसे में द मोस्ट एंजॉयबल पार्ट ऑफ द वीक और आपके साथ देने के लिए अभी मैं हूँ आपके साथ में टिल 7. और जबकि कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी, तो हमारे पास में मैसेज किया है 0020. हाय अभी, यू रॉकिंग द शो, जेट सेट नैंडी. और आपने लिखा है सपोर्ट में जबकि बैटल ऑफ द जाइंट्स पर बातें हो रही थी, जो हो रहा है, चल रहा है फिजी में, बा के गोविंद पाक, बा मेरे ख्याल से, हाँ, बा के गोविंद पाक में ये जो मैच है ये हो रहा है. आई डोंट नो वेदर अभी भी इसको गोविंद पाक बोलते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर जो मैचेस है ये हो रही है और जो लेटेस्ट अपडेट्स है आप तक पहुँचाते रहेंगे. ऐसे ही साथ देते रहिए. इस हवा पर आपको ये भी बता दूँ, एक ड्रॉ होने वाला है, जबकि डेड्स AI अपग्रेड, इसका जो ड्रॉ है ड्राइव शो में होने को है. तो इसके बारे में जो विजेता की डिटेल्स है हमारे हाथ में बस थोड़ी देर में लग जाएंगी, जबकि जो विनर अनाउंसमेंट है इसी शो पर होगा. तो दिल थाम कर बैठिए, ये सभी कुछ आपके साथ में रहेगा ड्राइव शो पर.

ड्राइव शो में आप सुन रहे थे जुबिन नोटियाल को और मैं हूं अभी आपके साथ में। आज सुबह सुबह जबकि मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था तो सीविया गेल्स ने काफ़ी आफत मचा दी, जबकि वेलिंगटन एयरपोर्ट में जो फ्लाइट्स लैंड कर रहे थे क्राइस्टचर्च से, यहां पर काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। और एक पैसेंजर ने ऐसा रिएक्शन दिया है कि आई वॉज ग्लेड टू हैव स्किप्ड ब्रेकफास्ट बिफोर द फ्लाइट, क्योंकि इतना इनको मुश्किल का सामना करना पड़ा टर्बुलेंस के कारण। और यूँ कहते हैं कि बाल बाल बचे, ऐसा उनका रिएक्शन था। और हमारी बात हो रही थी अभी जबकि ओकलैंड से डोमेस्टिक फ़्लाइट लिया है हमारे करीबी दोस्त ने और ये ओकलैंड से गए हैं वेलिंगटन, और उन्होंने ऐसा ही कुछ बताया कि इट वॉज़ क्वाइट स्केरी, जबकि यहाँ पर जो विंड है काफ़ी सीवियर गेल्स तक है चल रही है और ऐसे में हवाओं के कारण फ़्लाइट्स को डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी सुबह भी लैंड करने में। तो आपके साथ में कभी ऐसा कुछ हुआ जहाँ पर आपको लगा कि हाँ भाई बाल बाल बचे, और ऐसा कोई मोमेंट है आपके साथ में जो बिल्कुल स्केरी है एंड इट फ्राइट

टर्न यू टू बिट्स, इसके बारे में 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं या फिर 0800004866 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि अक्सर सैंडी और रुजबे साथ मिलकर ये शो करते हैं, जुगलबंदी होती है। आज मैं अकेला हूँ लेकिन फिर भी अकेला नहीं हूँ क्योंकि आपका साथ है। तो 0800004866 पर आप भी हमारे पास में कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ में बातें कर सकते हैं। ये सभी कुछ रहेगा टिल 7। तो अगर जो कोई स्केरी मोमेंट हुआ आपके साथ में फ्लाइट में या फिर ऐसा कुछ हुआ तो इसके बारे में आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Kukar Smart QLED TVs from $249. Eurotech soundbars just $129. Cordless stick vacuums only $99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
4: Big milestones call for even bigger deals with Father's Day at Rebel. Save up to 30% on men's clothing and footwear. Plus, score at least 15% off store-wide. Treat Dad to some fresh gear this Father's Day and Sunday at Rebel Sport. See online for T's and C's.
5: Fuel prices got you feeling? Score 6 cents per litre off every fill with Caltex Pumped. Plus more on Super Pump Days. Fill up, scan your Caltex app or Kodu card and save instantly. Discount applies up to 50 litres. Caltex Pump T's and C's apply. See caltex.co.nz.
0: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
7: मुझे भी
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
8: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
9: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
10: मैं हूं अभी आपके साथ में और ड्राइव शो है ये, सात तक चलता रहेगा हमारा और आपका साथ रहेगा. ऐसे में आपको यह भी बता दूं कि इस वीकेंड फादर्स डे है, तो ऐसे में अगर जो आपने अभी तक कोई गिफ्ट नहीं लिया है तो नाउ इट्स टाइम, क्योंकि संडे को तो आपको अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट करना है अपने डेट को, द हार्ड वर्किंग डेट को. और ऐसे में जबकि फादर्स डे के बारे में बात हो रही है, आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट शो में ड्रॉ हुआ जहां पर डेट्स रिवर्स ग्रिल ओनिया को जीता है महेंद्र कुमार ने, और महेंद्र कुमार के हाथ में $500 का जो कैश इनाम है ये लग चुका है. ऐसे में जो हमारी टीम है उनको कॉन्टेक्ट करेगी आने वाले दिनों में ताकि इनके प्राइज इन तक पहुँच सके. और इसके साथ में आपको ये भी बता दूँ, बस थोड़ी ही देर में ड्रॉ होगा या फिर ऐलान करेंगे आपके साथ में डेज AI अपग्रेड के बारे में, जो $300 का जो इनाम है जहाँ पर आपको अपने डेट को एक AI को यूज़ करके, ऐप को यूज़ करके अपने डेट को एक सुपर हीरो का इमेज देना था, हमारे फेसबुक पर पोस्ट करना होता था. और ऐसे में जो ड्रॉ हुआ है, जो इसका अनाउंसमेंट है आपके साथ में बस थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि ये जो ड्रॉ है ये काफ़ी अच्छी तरीके से देख कर करना पड़ता है कि जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हमने रखे हुए थे अपने कंडीशन के मुताबिक उस पोस्ट पर, ऑल ऑफ देम हैव बीन मेट. इसीलिए बस थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करेंगे कि हु इज़ द लकी वन जिन्होंने डेज AI अपग्रेड कॉम्पिटिशन को हमारे फेसबुक के पेज पर जीता है. दैट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट.
9: Hollywood's most wanted.
11: Gundi khad jao. Ya seedha andar aao.
12: Main laun apna A game.
9: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: वीकेंड में तो बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। मैं हूं अभी आपके साथ में, ड्राइव शो है ये, और जबकि बातें हो रही है फादर्स डे के बारे में, प्रमोशन के बारे में, हमने आपसे कहा था कि बस आपको बता ही देंगे कि कौन जीता है इस प्रमोशन को, जबकि आज सुबह सुबह ड्रॉ हुआ जहां पर डेड्स रिवर्स ग्रिल ओनिया को जीता है महेन कुमार ने, और इनके हाथ लगा है $500 का कैश इनाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ साथ जो पूरी की पूरी टीम है हमारी, काम कर रही थी कि हमको एक लेजिट विनर दे जिन्होंने सभी बॉक्सेस को टिक किया है, यानी कि जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे इस प्रमोशंस को मीट किया है। तो अब एक विनर का नाम सामने आ गया है, लेकिन नाम लेने से पहले मैं आपको इनका जो प्यारा सा मैसेज था अपने डेट के लिए, जबकि इन्होंने अपने डेट को एक AI इमेज के द्वारा एक सुपर हीरो का केप दिया था, और इन्होंने लिखा था, माय फॉरएवर हीरो, हैप्पी फादर्स डे इन एडवांस्ड, माय फर्स्ट सुपर हीरो, यू आर माय स्ट्रेंथ, माय सेफ प्लेस एंड माय पार्टनर इन ऑल द फन, लाइफ इज ब्राइटर विद योर स्माइल एंड वार्मर विद योर लव, लव यू डैड, माय फॉरएवर हीरो। और इनके डैड है कोई और नहीं, सुनील राज। तो सुनील राज के हाथ में ये इनाम लगा है एज अ लकी डेड। लेकिन जिन्होंने इस प्रमोशन में भाग लिया था, इनका नाम बताने से पहले ऑलराइट, इस प्रमोशन को जीता है सानवी प्रणवी ने, और सानवी ने बड़े ही बेखूबी के साथ में अपने डेट को एक AI इमेज देकर शक्तिमान का केप दिया था, और पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छे अच्छे माउंटेंस भी है और साथ में लेक भी है। एंड इसके साथ में जो मैसेज है बड़ा ही प्यारा है, और इसके अलावा मोर इम्पोर्टेंटली आपने जितने भी रिक्वायरमेंट थे इनको मीट किया है। तो सानवी प्रणवी, आपके हाथ में ये जो इनाम है, लगता है $300 का कैश इनाम, अब जो हमारी टीम है आपको कॉन्टेक्ट करेंगी। तो ऐसे में यू कैन ट्रीट योर डेड आउट टू अ लवली डिनर, या फिर जो भी आप करना चाहते हैं, एक खूबसूरत सा तोहफा भी देना चाहते हैं, आप ये भी कर सकती हैं, बिकॉज यू हैव गॉट $300 विद यू टू डू सो। और जो हमारी टीम है आपको आने वाले दिनों में कॉन्टेक्ट करेगी कि कैसे आपको ये इनाम मिल सकता है। टेक्स्ट मैसेज की ओर देखते हैं, तो अभी भाई, ग्रेट शो, थैंक यू सो मच, और आपको कृष्ण जन्माष्टमी में कुछ ऐसे गीत भी सुने तो ये भी आपको सुनवाएंगे शो में, और ये सभी कुछ हमारे साथ में चलता रहेगा। बैटल ऑफ द जायंट्स में जो प्रमोशन है इसके बारे में भी आपको बारी बारी से बताते रहेंगे। तो अगर जो आपने मिस आउट किया है, सानवी प्रणवी ने जीता है डेड्स AI अपग्रेड प्रमोशन को, हमारे साथ हम पर।
1: The Drive Show with Sandy and Rusbain, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर
1: Accurate traffic.
2: Harvey Furnishings Home Show Specials.
3: Mainly clear overnight for Auckland, a low of 11. State Highway 1 closed between Warkworth and Wellsford due to a crash. Detour via State Highway 16 in both directions. Just two lanes are open on the Harbour Bridge in each direction due to severe wind gusts. It's heavy on the southern from town to Manukau, 57 minutes to Drury, 1 hour 20. Southwestern slow in both directions between Onehunga and the southern.
2: Exclusive Auckland Home Show offers great savings and stylish inspiration this month at Harvey Furnishings.
4: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
5: It's Woolworths Mighty Meat Week. Get mighty cuts and mighty savings. Our New Zealand fresh beef mince, 1 kg, $17.99 each. And our New Zealand fresh chicken drumsticks, $4.79 a kg. T's, C's and exclusions apply.
6: Reliance Ventilation System.
7: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, ceiling आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
6: Moisture और ventilation का problem लगता है.
7: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
6: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
8: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
9: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
10: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
11: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
12: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz.
13: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
1: The Drive Show with Sandy and Ruzbain, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
14: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
15: Let's go.
14: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
16: It's normal to feel low sometimes, just like the weather changes. Pay attention to your feelings, reach in and check how you're doing. Reach out and talk to a trusted professional. Support is available at Asian Family Services. Call Asian Helpline on 0800-862-342 for free and confidential mental health support. Ye Sushna Asian Family Services ki or se hai.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: हम पर यह है ड्राइव शो और ड्राइव शो लेकर मैं हाजिर हूं अभी आपके साथ में। क्या आपको मालूम है कि इस वीक वेंसडे को मिडलमो हॉस्पिटल में रात को कुछ 100 लोग इंतज़ार कर रहे थे टू बी सीन बाय अ डॉक्टर। वेंसडे नाइट को काफ़ी बिजी नाइट था इनके लिए और काफ़ी लोग ऐसे सिक थे और दे वे वेटिंग इन अ क्यू। कुछ क्वार्टर पास 11 तक कुछ 103 पेशेंट्स थे मिडलमो में जो 7 डॉक्टर्स जो रोस्टर पर थे इनका इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही भी इनमें से कोई एक फ्री हो तो ये जाकर इनको देख सकते हैं। तो काफ़ी जो पेशेंट्स हैं और अंडर ट्रीटमेंट भी थे और साथ में दे वे यू कहते हैं ना कि एक पेनफुल वेट था और कब इनको देखा जाए इसका ये इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जबकि वीकेंड है इसको एक ट्विस्ट देते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका मोस्ट एंटिसिपेटेड वेट क्या था, किस एक खुशखबरी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। कुछ एक गुड न्यूज़ था, आप जानते हैं कि आपको मिलने ही वाला है लेकिन कुछ दिनों बाद मिलेगा और इसका आप काउंटडाउन कर रहे थे। इसके बारे में शेयर करने का समय हुआ हमारे पास में 0800-004-866 पर। अभी आप कॉल करो, मे बी इट्स व्हेन यू वर बाइंग योर न्यू कार और डिलीवरी बाकी थी या फिर कुछ मेहमान आने वाले थे दूर विदेश से और उसका भी आपको इंतज़ार था, आपको तारीख दिन मालूम था लेकिन यू वर काउंटिंग डाउन या फिर काउंटिंग डाउन टू योर मैरिज। ये सभी कुछ हो सकता है एज एन एग्जाम्पल, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं आपका मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यूज़ क्या था या ऐसी कौन सी खुशखबरी थी जिसको आप बिल्कुल लुक फॉरवर्ड कर रहे थे एंड यू न्यू इट वाज गोइंग टू हैपन लेकिन आप इसको काउंटडाउन कर रहे थे। या फिर वीज़ा को लेकर काफ़ी बार लोग जब भी लॉजमेंट करते हैं एंड दे कीनली अवेट कि कब इनको जो इनबॉक्स है ना ईमेल के इनबॉक्स में इनको एक प्यारा सा ईमेल आए, एक अच्छा ईमेल आए इनके पास में फ्रॉम इमिग्रेशन और इनको पता लगे कि हाँ भाई आपका वीज़ा हो चुका है। तो ये जो टॉपिक है आपके साथ में छेड़ना चाहते हैं, आप कॉल कर रहे हैं हमारे पास में 0800-004-866 पर ताकि आपसे भी बातें हो सके। आपसे भी सुनना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसे आप बिल्कुल लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। कुछ 15 मिनट बाकी है 5 बजने में और 0800-004-866 पर आप हमें कॉल करिए, बिल्कुल टोल फ्री नंबर है आपके लिए, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं जब आप कॉल करेंगे ताकि आपसे भी बातें हो सके हमारे ड्राइव शो में। थिंक अबाउट इट, एक गाना आपको सुनवाते हैं और बिल्कुल तैयार होने के बाद में आपसे बातें करने को बिल्कुल लुक फॉरवर्ड करेंगे।

हाँ, मीठी मीठी चाशनी और मीठी मीठी बातें भी आपके साथ में करना चाहते हैं। 0800-004-866 इज द नंबर। एक बार फिर से 0800-004-866। जबकि हमने आपसे पूछा है आपका मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यूज क्या था। हेलो, आपका स्वागत है हम पर। हेलो, आई कैन हियर यू बेली। किससे बातें हो रही है? श्रुति, अच्छा, ब्लूटूथ पर हो आप? अच्छा, फॉर सम रीजन आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ते आ रही है। हाँ, सुनाई दे रहा है, बस जस्ट अबाउट। लेकिन आपका स्वागत करते हैं, और जबकि टॉपिक हमने छेड़ा था आपके साथ में कि आपका मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यूज़ क्या था, तो क्या शेयर करना चाहोगी श्रुति? ओह, नाइस नाइस। और आप हमेशा ऐसे आहिस्ता बात करती हो कि आज कुछ स्पेशल है? अच्छा, चलो, लगता है कि अभी ही आपकी छुट्टी हुई है और आप वापस घर की ओर जा रहे हो। ओके, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल वीकेंड। थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया अपना गुड न्यूज़ हमारे साथ में कि जैसे ही आपका डिग्री आपको मिला, एंड देट वॉज द मोस्ट एंटिसिपेटेड, जबकि हार्ड वर्क करने के बाद काफ़ी बाद आपको फिर इंतज़ार करके आपकी डिग्री आपको मिली। इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इसी तरह से आप आगे बढ़ती रहे श्रुति। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ लवली वीकेंड। ओ नाइस, थैंक यू सो मच। इसको मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह ले लूँगा, ठीक है? ओके, डू टेक केयर, बाय। तो ये थी श्रुति हमारे साथ में, जिसने बताया अपना जो एक्सपीरियंस है, शेयर किया हमारे साथ में। और हो सकेगा तो इस टॉपिक को एक बार फिर 5 बजे के बाद में छेड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बता दूं कि बैटल ऑफ द जायंट्स, ये जो टूर्नामेंट है, पूरे पैमाने पर जारी है बामे। और यहाँ पर जो खेल है, इस पर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, हम आपके साथ में बांटते रहेंगे। जबकि आज का जो आखिरी मैच इस इवनिंग का है, बा वेसेस नैनी। तो जबकि हमने आपसे पूछा था कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, तो हमारे पास में जैनेश ने भेजा था बा तो बा है, उसके बाद में 0020 आपने भी मैसेज किया है, जेट सेट नैनी, और इसके बाद में कोई एक मैसेज नहीं आया। तो आप भी अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, लुकिंग फॉर टू द गेम्स, तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर भेजे हमारे पास में अपने नाम के साथ में, ताकि पता तो चले। मेरे ख्याल से अभी लंबासा खेल रही है, और लंबासा के जितने भी फैंस हैं, अभी तक एक भी मैसेज नहीं आया है। यानी कि बा इज़ लीडिंग विद नैनी, एक एक टेक्स्ट मैसेज आया है, लेकिन और किसी टीम से अभी तक कोई मैसेज हमारे पास में नहीं पहुँचा।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: शाम तक कुछ बारिश भी होती रहेगी आपके इलाके में, जो इवनिंग में क्लियर हो जाएंगे, साथ में सनसेट एट 6:04 PM। और इसके अलावा मिनिमम टेम्परेचर्स ओवरनाइट एट अ कूल 11 डिग्रीज।
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: Yo,
0: you're listening to Avineet.
1: That's right, मैं हूँ अवि, keeping you company, जबकि drive show है और सात तक हमारा और आपका साथ रहेगा। जब भी 5:03 हो चुके हैं और ऐसे में आपका खास स्वागत करते हैं इस आवा पर। शायद आप भी अभी भी अपने काम पर से निकले होंगे या फिर रास्ते में होंगे, सफ़र कर रहे होंगे। वेलकम टू द शो, जिसे आप सुन रहे हैं 104.2 FM, साथ में रोवा पर। अभी का ढेर सारा प्यार मैं आपको बता दूं, जबकि जो बैटल ऑफ द जाइंट्स ये चल रहा है फिजी में, बा के शहर में, यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट्स है, लंबासा की जीत हो रही है नसीनू के खिलाफ 1 गोल से। ये जो अपडेट है मेरे हाथ में लगा है। और अगर जो मैं टेक्स्ट प्लेटफॉर्म की ओर देखूं तो यहाँ पर ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं सपोर्ट के, जबकि सलेश ने लिखा है, आई एम अ बा फैन, होप बा विल विन टुनाइट, बट नेंडी इज़ अ गुड टीम टू। और इसके साथ में रक्षे ने लिखा है, बा तो बा है, कौन रोकी, ये एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है बा टीम के लिए। और आप भी सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम को तो ज़रूर हमारे पास में 5599 पर मैसेज करें। इसके अलावा, जबकि आज सुबह सुबह जो फादर्स डे प्रमोशन है, इसके अंतर्गत डेट्स रिवेज ग्रिल ऑन एयर, अगर जो आपने मिस कर दिया था तो ये जो $500 इनाम है ये महेन कुमार के हाथ में लगा है। और इसके साथ में जो अभी शाम को ड्राइव शो में जो ड्रॉ हुआ है, जहां पर डेज AI अपग्रेड का प्रमोशन हमारे सोशल मीडिया पर चल रहा था, हम फेसबुक पेज पर, यहां पर जो $300 कैश इनाम है इसको जीता है सानवी प्रणवी ने, जिन्होंने अपने डेड सुनील राज का एक AI इमेज जनरेट करके बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा था। और इसी के कारण सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करते हुए सानवी ने जीत लिया है अपनी डेड सुनील राज के लिए $300 इनाम। ये सभी कुछ आपके साथ में शेयर करते रहें ताकि जो प्रमोशन है इसके बारे में आपको पता लगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर टू विनर्स, महेन कुमार साथ में सानवी प्रणवी। इसके अलावा अभी थोड़ी देर में आपके साथ में खेलेंगे कनेक्ट द डॉट्स, और इसके बारे में भी बस थोड़ी देर में विल प्ले अ गेम, जहाँ पर आपकी ज़रूरत रहेगी मुझे। आपको नंबर याद है ना, 0800004866, इस पर ही आपको कॉल करना पड़ेगा।

0: हम पर ड्राइव शो लेकर मैं हूं अभी आपके साथ में, और आज आपके साथ में कनेक्ट द डॉट्स भी खेलना है, जहां पर कुछ थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। आपको स्टार्ट पॉइंट भी देते हैं। स्टार्ट पॉइंट है बॉलीवुड के फिल्म मेकर द लेट जय ओम प्रकाश, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, और आपको इनको कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पहुँचाना है न्यूजीलैंड तक। यही आपका काम आज रहेगा। आपको कॉल करना होगा थोड़ी देर में 800-004-866। तब तक आपको कुछ मैसेजेस सुनवाते हैं, आप अपना थोड़ा सा रिसर्च कर ले। जय ओम प्रकाश इज योर स्टार्ट पॉइंट, इनको पहुंचाना है न्यूजीलैंड तक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, यानी कि बीच में आपको कहीं ना कहीं कई किसी और बॉलीवुड फिल्म मेकर या फिर एक्टर का नाम लेना होगा, और तब कहीं जाकर ये न्यूजीलैंड तक जो एंड रिजल्ट है ये पहुंचेगा। तो थोड़ी देर में आपके साथ में ये खेल भी रहेगा।
1: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी।
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं।
4: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकार

0: सुविधाओं से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
1: Traffic.
2: Looking for your next Toyota?
3: Mainly clear overnight for Auckland. A low of 11, State Highway 1 closed between Warkworth and Wellswood with a crash. Detour via State Highway 16 in both directions. Just two lanes open on the Harbour Bridge in each direction due to severe wind gusts. On the southern, it's heavy between town and East Tamaki Road in both directions. And the southwestern is really slow in both directions between Onehunga and the southern.
2: Top prices paid for quality Toyotas. Get a free appraisal at Pukekohe Toyota today.
4: How fresh is your produce? At Faro, our team are at the markets at 3 a.m, handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Faro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. Bright, juicy berries, luscious tomatoes, creamy avocados. All at the market's best prices. It's fresher from Faro.
5: New Zealand's number one home show is back. With inspiration from the front gate to the back fence, visit the Auckland Home Show 10 to 13 September, Auckland Showgrounds. Explore hundreds of exhibitors and the all-new Garden Showcase. Buy tickets now at aucklandhomeshow.co.nz.
6: No matter what you're working on, Mitre 10 Mega Westgate or Henderson aapke liye sab kuch aasan banata hai. Zabardast range, expert advice, everything you need under one roof. Plus earn air points every time you shop. T's and C's apply. Mitre 10 Mega Westgate and Henderson, helping you get it done right.
7: Craving ho rahi hai us thick aur creamy dahi ki jaise ghar pe milti thi, to milwate hain aapko Kashish Natural Yogurt se, jiska har spoon hai ekdam delightful, 100% vegetarian, gelatin and gluten free. Perfect hai smoothies banane ke liye, tangy dips banane ke liye, paneer ya chicken marinate karne ke liye, ya bas seedha tab se khane ke liye, kyunki ye hai naturally delicious, always desi. Available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish Natural Yogurt.
8: For 75 years, Fiji Airways has connected Fiji to the world and brought the world closer to home. So right now, they're celebrating with a special 75th anniversary sale. Fly to Fiji one way from $305, LA and San Fran from $675, Vancouver from $875, and Hong Kong, Singapore or Japan one way from $675. Only for a limited time. Book now at fijiairways.com.
9: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
10: Power Drive at 5.
11: Brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
12: अभी के साथ ये है पावर ड्राइव एट 5, जबकि 17 मिनट्स आफ्टर 5, ऐसे में समय हुआ आपके साथ में कनेक्ट द डॉट्स खेले, जहां पर हमने आपको एक नाम दिया है। बॉलीवुड के एक फिल्म मेकर थे जय ओम प्रकाश, और आपको कड़ी से कड़ी जोड़ना है और इसका जो एंड रिजल्ट है ये न्यूजीलैंड ही होना चाहिए। तो आप अगर जो बिल्कुल तैयार है 0800004866 पर आप कॉल करके कोशिश कर सकते हैं। आपका हेल्प करने के लिए मैं आपको क्लूज भी देता रहूँगा और आप कॉल कर सकते हैं। हमारे पास में कनेक्ट द डॉट्स जो खेल है इसे आप खेल सकते हैं। गिव मी अ कॉल ऑन 0800004866 और बातें करते हैं। चलो कोई लाइन पर है। हेलो, आपका स्वागत है हम पर।
13: हेलो, हाय अभी।
12: हाय, हाउ आर यू? किनसे बातें हो रही है?
13: होती
12: एक बार फिर से अपना नाम बोलना।
13: होती।
12: Oh, that's very good. और आहुति काफी यूनिक नेम है। वेलकम टू द शो। और क्या क्या कैसा लग रहा है कि आपको कुछ अंदाजा लगा कि कहाँ पर ये कनेक्ट द डॉट्स जाकर एंड होगी, या फिर कोई क्लू है आपके पास में कि कैसे इसको खेला जाए?
13: आपने बोला तो था कि न्यूजीलैंड में एंड होना चाहिए, पर अगर आप कोई क्लू दे सके तो।
12: अच्छा, जो जय ओम प्रकाश ये जो फिल्म मेकर है, इन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी फिल्में बनाई हैं और साथ में इनकी बेटी पिंकी, इनकी शादी हुई थी रोशन फैमिली में, तो कुछ पता चला आपको?
13: राकेश रोशन, ऋतिक रोशन।
12: अच्छा, तो आपको लगता है, राइट, तो आपको पूरी की पूरी फैमिली ट्री मालूम पड़ गई है कि जय ओम प्रकाश की बेटी पिंकी रोशन की शादी हुई थी राकेश रोशन के साथ में, राइट, और उनके बेटे थे है अच्छा ऋतिक। और ये फिर फाइनली कैसे न्यूजीलैंड से कनेक्ट होगा?
13: ऋतिक रोशन का एक सॉन्ग इधर न्यूजीलैंड में शूट हुआ था।
12: अच्छा,
13: क्वींसटाउन, आई थिंक क्वींसटाउन में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
12: ओके ओके, और कौन
13: मूवी का नाम था? कहो ना प्यार है।
12: ओह वेरी गुड, आपने तो पूरा का पूरा सॉल्व ही कर दिया एक ही कॉल में।
13: थैंक यू
12: सो मच, आपने पार्ट लिया और यू आर करेक्ट, जी हाँ यही था कनेक्ट द डॉट्स। जबकि जय ओम प्रकाश अपने समय के बहुत ही बड़े फिल्म मेकर थे, इनकी बेटी की शादी हुई थी राकेश रोशन के साथ में, और जिन्होंने अपना जो फेस्ट अपने बेटे के लिए फेस्ट मूवी शूट किया था कहो ना प्यार है, ये दिस वॉज शॉट इन द ब्यूटिफुल लोकेशन ऑफ न्यूजीलैंड। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट,
13: थैंक यू सो मच।
12: थैंक यू आपने कॉल किया, और इंजॉय योर इवनिंग और इंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीकेंड।
13: थैंक यू सो मच, हैप्पी जन्माष्टमी टू यू टू अभी।
12: थैंक यू, आपको भी, टेक केयर, बाय। तो ये थी हमारे लाइन पर आवती और इन्होंने पूरा का पूरा जो कनेक्ट द डॉट्स है इसको एक ही झटके में कनेक्ट कर दिया हमारे लिए। और मूविंग ऑन आपके लिए, जबकि कृष्ण जन्माष्टमी भी आज है, इसे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो प्रोग्राम में आपके साथ में एक प्यारा सा कृष्ण भजन या कोई गीत आपके लिए ज़रूर प्ले करेंगे। ये सभी कुछ करने की हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी आपके साथ में।
1: मैं लाऊं अपना ए गेम।
11: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: यह ड्राइव शो अभी के साथ में, और जबकि जो लेटेस्ट अपडेट है बैटल ऑफ द जायंट्स के तहत, यहां पर लंबासा की जीत नसीनू के खिलाफ 1-0 से हुई है जो फोर स्टेडियम बा में। और कुछ और खेल है जो बाकी है आज के लिए, जैसे कमिंग अप नेक्स्ट है रेवा टेक्स ऑन लोटोका, उसके बाद में जो आज का आखिरी खेल है नेंडी और बा के बीच में रहेगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, 6 बजे के बाद में आपके साथ में रहेगा ट्रेंड मेकर्स, और यहां पर जो ट्रेंडिंग टॉपिक है आपके साथ में आज के लिए, जबकि इस वीकेंड फादर्स डे है तो मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं कंपाइल कर रहा हूँ सॉन्ग्स जहाँ पर आपने बॉलीवुड में फिल्म में देखा होगा किसी एक फादर या सन को साथ में, या फिर फादर एंड अ डॉटर जोड़ी को साथ में। तो अगर जो आपको इस फिल्म से जो पेयरिंग है वो याद है तो वो हमारे पास में 5599 पर आप टेक्स्ट करें, ताकि जो 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में हम आपको ऐसे ही गाने सुनाएं जहां पर जो जोड़ियां थी आयदा फादर एंड डॉटर की थी रियल लाइफ में, जो पर्दे पर भी साथ नज़र आए थे, या फिर फादर एंड सन की जोड़ी थी। तो अगर जो आपको ऐसी पेयरिंग याद है 5599 पर अपने नाम के साथ में मैसेज करो, और कोई सजेशंस है तो ये भी आप हमारे पास में टेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज ट्रेंड मेकर्स में जबकि इस वीकेंड फादर्स डे है तो यही गाने आपके लिए खास लेकर आएंगे। और इसके साथ में आपको ये भी बता दें, जो डेज AI अपग्रेड है इसके तहत आज जो हमारे विनर ठहरे हैं सानवी प्रणवी, जिन्होंने अपने डेड सुनील राज का जो AI इमेज है इसे अपलोड किया था हमारे फेसबुक पेज में, और आज सुबह सुबह जबकि डेड्स रिवर्स ग्रिल ऑन AI इसका ड्रॉ हुआ तो यहाँ पर महेंद्र कुमार विजेता ठहरे, और इनको लगा था, इनके हाथ लगा था $500 कैश इनाम। इसके साथ में सानवी के हाथ लगा है $300 कैश इनाम। तो ये सभी कुछ आपके साथ में है। और हाँ लोकेश, थैंक यू सो मच भाई, आपका मैसेज आ गया है। इसी तरह से आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, और कोई भी ऐसी पेयरिंग आपको याद है जिनके फिल्म से मैं वो गाना लेकर तैयार कर सकता हूँ, थैंक यू सो मच लोकेश आपके सजेशन के लिए। तो 5599 पर याद रहे, आप ऐसे पेयर्स भेजिए जहाँ पर रियल लाइफ फादर एंड सन या फिर फादर एंड डॉटर ने साथ में फिल्म में काम किया है, ताकि उन्हीं फिल्म से मैं कोई एक गाना आपके लिए ट्रेंड मेकर्स में बजा सकूं।
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
2: Keep calm because Punjabi swag is on. On.
3: ਨਾ ਦਿਲ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਨਾ

0: Dia.
1: Streaming on Rover.
2: Accurate traffic.
3: Fly Solomon Airlines.
4: Mainly clear overnight for Auckland. A low of 11. State Highway 1 closed between Warkworth and Wellsford due to a crash. Detour via State Highway 16 in both directions. Just two lanes open on the Harbour Bridge in each direction due to severe wind gusts. On the southern, it's heavy northbound from East Tamaki Road to Newmarket and south from town to Mount Wellington. In the southwestern, very heavy both directions between Onehunga and the southern.
3: Auckland to Vanuatu from $925 return. Selected dates, conditions apply. FlySolomons.com.
5: Please use your imagination for the following ad.
6: If I won Powerball, I'd build my dream. Then I'd even things out with a massive donation to...
5: Imagine winning $28 million this Saturday. Play in store or online.
7: Make Father's Day super at Supercheap Auto. Get 25% off store-wide. Save on Century, Meguiar's, Rhino Rack and more. Starts online tonight at 5pm NZDT in Saturday. T's and C's apply. Make it super. Supercheap Auto.
8: Hey Neha, congratulations on your first home. Tune to kaha tha ki do do banks ne loan dene se aur ek famous broker ne to case lene se hi mana kar diya tha. ये घर कैसे?
9: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया। मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
8: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
10: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
11: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
12: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
11: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
12: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
11: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
13: The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari koi branch nahi hai.
15: Are you ready to go home?
16: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manuko and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manuko and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
17: हाँ पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और हमने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आपके पास में कोई सजेशन हो जहाँ पर 6 बजे के बाद में ट्रेंड मेकर्स में आपके लिए प्ले करेंगे कुछ ऐसे फिल्मों से गाने जहाँ पर आपने रियल लाइफ फादर एंड डॉटर को साथ में फिल्म में देखा होगा या फिर फादर एंड सन को एक साथ फिल्म में देखा होगा तो उसी फिल्म से एक गाना को प्ले करेंगे ट्रेंड मेकर्स में जबकि फादर्स डे इस वीकेंड है तो इसको सेलिब्रेट करेंगे मार्क करेंगे इन ट्रेंड मेकर्स लेकिन अभी के लिए आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या अक्सर ऐसा होता है आपके साथ में कि आपके पास में एक टैलेंट है जिसके बारे में लोग अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन इसके अलावा एक और एक स्पेशल टैलेंट है जो बिल्कुल हिडन है और आप तड़प रहे हो कि कभी आपको मौका लगे ये डेमोंस्ट्रेट करने के लिए और लेकिन ये जो चांस है मौका है आपके हाथ ही नहीं लगता क्योंकि अक्सर आपको लोग ब्रेकअप कर देते हैं जिसके लिए आप जाने जाते हैं एज एन एग्जाम्पल कि कभी कभी क्या होता है कि शायद आपकी कोई डिश है जो काफ़ी फेमस हो चुकी है आपके फ्रेंड सर्कल में लेकिन इसके अलावा आप एक और एक डिश अच्छी तरह से बनाना जानते हो जो लोग जो आपके घर वाले जो काफ़ी पसंद करते हैं और आप जानते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं कमाल ही करेगा कमाल का डिश रहेगा लेकिन जबकि आपकी पहली डिश काफ़ी चर्चे में है लोग आपको इसी से पहचानते हैं तो जो सेकंड डिश है ये बनाने का आपको मौका नहीं मिलता कभी कभी होता है ना कि जब भी कहीं फंक्शन पर आप पहुँचते हो तो जब आपको देखते ही बोल देते हैं कि अच्छा ये आ गई है या ये आ गए हैं अब ये काम यही करेंगे लेकिन उसके अलावा आपके पास में और भी टैलेंट है और भी हुनर है जो अभी भी डिस्कवर करना बाकी है एज एन एग्जांपल मैं आपको बता दूं मेरे एक अच्छे दोस्त हैं जो फोटोग्राफी अच्छा करते हैं तो ये कभी भी फंक्शन में जाते हैं इनको कैमरा पकड़ा दिया जाता है कि आप फ़ोटोज़ उतारें लेकिन इसके अलावा ये काफ़ी अच्छा होस्टिंग भी करते हैं बातें भी अच्छी करते हैं लेकिन ये मौका जो टैलेंट है इनका ये अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया तो आपके पास में भी कोई टैलेंट है जिसके बारे में आपको लगता है कि हाँ काबिलियत है लेकिन अभी इसको मौका नहीं लगा है खुलकर सामने आने के लिए तो आप 0800-004-866 पर हमारे पास में कॉल कर सकते हैं इस पर भी बातें करेंगे आपके साथ में इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आपके कौन से जो हिडन टैलेंट है आपकी जो काबिलियत है अभी तक बाहर नहीं आ पाई है 0800-004-866 इफ़ यू डू वांट टू शेयर कॉल मी एंड वी विल टॉक इसके बारे में बातें भी करेंगे
18: Let's go.
13: Straight from the heart.
0: your property's true sale value with NZPMI, your local

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: हम पर रवि का साथ है और ऑफ है. सुनीता ने हमारे पास कॉल किया और कहा कि मैं रेडियो पर तो नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने कहा है. जबकि आपके साथ में ऐसा हुआ है, हम बातें कर रहे थे ना कि आपकी एक टैलेंट होती है जो काफ़ी रिनाउंड हो चुकी है और इसके कारण जो आपका दूसरा हिडन स्पेशल टैलेंट है ये सामने नहीं आ पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपसे कुछ आपकी जो पहली हुनर है इसकी डिमांड करते रहते हैं. तो सुनीता ने कहा है कि मेरी तंदूरी काफ़ी मशहूर है मेरे फ्रेंड्स के सर्कल में, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं खीर भी उतना ही अच्छा बनाती हूँ, अगर जो बेहतर नहीं. लेकिन अक्सर जब भी कुछ फंक्शन होता है तो लोग मुझे यही डिमांड करते हैं कि मैं तंदूरी लेकर आऊँ, और जबकि खीर भी मैं अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक मौका नहीं लग रहा है कि मैं इनको किसी दिन ये सेव करूँ. तो आपके पास में भी कोई हिडन टैलेंट है जो अभी भी खुलकर आने में बाकी है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो जिसके लिए आप मशहूर हो गए हो या आपकी दूसरी हिडन टैलेंट को दबा रही है, तो इसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू टेक्स्ट मी 5599 या फिर 0800004866 पर आप हमारे पास में कॉल भी कर सकते हैं. तो चलो अब आपको सुनवाते हैं थ्रोबैक.

0: Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend makers.
3: Yo,
2: you're listening to Avineet.
4: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में. This is the final hour of the show, जबकि 7 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. और अभी समय की ओर देखते हैं तो it's 4 minutes after 6 और अब समय हुआ आपके साथ में Trend Makers का जो सेगमेंट है इसकी शुरुआत करें. और जैसा कि हमने कहा था कि आज आपके साथ में जबकि संडे को फादर्स डे है तो ऐसे में ऐसी जोड़ियों की फिल्म से गाना को प्ले करेंगे जहां पर रियल लाइफ में भी फादर एंड सन या फिर फादर एंड डॉटर है और आपने इनको साथ में मूवी में काम करते हुए भी देखा है. मे बी एज लीड एक्टर्स या फिर एक जो है पर्दे के आगे था और दूसरी जो थी पर्दे के पीछे थी और वाइस वेसा. तो ऐसे में अगर जो आपके पास में भी कोई सजेशन है तो 5599 पर हमारे पास में ज़रूर भेजें. जी हाँ, बातें हो रही हैं एक ऐसी जोड़ी की जो रियल लाइफ में फादर एंड सन है या फिर फादर एंड डॉटर है और फिल्म में साथ ही काम किया है. तो जो सबसे पहला मेरे ख्याल में आया जो गाना आपके लिए प्ले करने जा रहा हूँ ये है बोल बच्चन का टाइटल ट्रैक. क्योंकि इनमें इस गाने में आपने देखा था अमिताभ बच्चन अलोंग विद हिज सन अभिषेक और यहाँ पर अजय देवगन ने भी 2-3 लाइन गुनगुनाए इस गाने में या गुनगुनाने की कोशिश की है. तो जो फादर एंड सन डो की जो जोड़ी है ये सबसे पहले आपके लिए प्ले करेंगे. और आपको ये भी बता दें कि जो गाने को लिखा है ये है थे लिरिसिस्ट साजिद फरहाद जिन्होंने कई फिल्मों को भी डायरेक्ट किया है खासकर कॉमेडी फिल्म्स को. और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि खासकर इस गाने को लिखने के लिए उनको ये बताया गया था कि कोई ऐसा गाना लिखे जो बिल्कुल नॉस्टैल्जिक एनर्जी कैप्चर कर सके माय नेम इज़ एंथनी गोंजाल्विस की. तो ये जो गाना आपको याद होगा माय नेम इज़ एंथनी गोंजाल्विस ये गाना गाने के लिए अमिताभ बच्चन ने खुद वोकल सपोर्ट किया था, खुद ही गाया था. तो ऐसे ही ये इंस्पिरेशन थी इनकी जबकि बोल बच्चन का टाइटल ट्रैक लिखा जा रहा था. तो इस सेगमेंट में ऐसे ही गाने आपके लिए प्ले करेंगे जहां पर फादर एंड सन डो या फिर फादर एंड डॉटर डो को आपने साथ में देखा था. ऑल ऑफ दिस हैपनिंग ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स जिसे आप सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर.
5: I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. Bhairo becomes Byron and Byron becomes Bhairo because their minds are very nerr. Because their minds are very nerr. Because their minds are very nerr.
6: Excuse me, please.
7: Mere pitaji kaha karte hain? That the whole country of the system is a position of the hemoglobin in the atmospheric pre... Atmospheric pre... Atmospheric pre...
8: Hey! Hey! Hey! Hey!
9: You see, sir, debating on the diabolic diagnosis of decisive deliverance, a papad is a rhythmic rhyme replica of a jhapad. Where one relishes your hunger and the other relishes your anger. Similarly, sir. Bachchan is also a rhythmic rhyme replica of Bol Bachchan, where one represents a magnanimous name, while the other represents a horrendous game.

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूं कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़े गड़े ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।

0: यू सी सर, द होल कंट्री ऑफ द सिस्टम ये है कि हम फिल्म में है नहीं, सिर्फ नाम है हमारा बच्चन।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: ऑलराइट, ट्रेंड मेकर्स में मैं हूं अभी आपके साथ में, और आपने सुना अमिताभ बच्चन की आवाज़ में, और उन्होंने बताया कि फिल्म में वो थे ही नहीं लेकिन गाने इन पर पिक्चराइज हुए थे। और चलो एक और एक सवाल करते हैं आपसे, बॉलीवुड की दुनिया से थोड़ा सा आपको देखते हैं कि इस गाने के अलावा अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन एक और एक गाने में साथ में नज़र आए थे, आपको सही अंदाज़ा लगाकर वही बताना है कि विच आर द सॉन्ग था जहाँ पर अमिताभ बच्चन साथ में अभिषेक बच्चन साथ में नज़र आए थे। अगर जो आपको गाना मालूम है 5599 पर मैसेज करें। और इसके साथ में आपको बता दूं, जबकि फादर्स डे है और संडे को, और यहाँ पर जो हमारे ड्रॉ हुए हैं आज, यहाँ पर जो डेट्स रिवेज ग्रिल है ओनिया जो कॉम्पिटिशन है सुबह ब्रेकफास्ट शो में जो ड्रॉ हुआ है, इसको जीता है महेंद्र कुमार ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। इसके साथ में जो आज शाम को ड्राइव शो में हमने ड्रॉ किया है डेज AI अपग्रेड को, इस कंपटीशन को लेकर, तो यहाँ पर $300 जो कैश इनाम है ये हाथ लगा है सानवी प्रणवी के, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जबकि इन्होंने अपने डेड सुनील राज का एक AI से बनाया हुआ इमेज अपलोड किया था। अगला जो गाना है इस सेगमेंट में बजने वाला है, ये एक और एक फिल्म है जहाँ पर जो डेओल्स थे ये साथ में आए थे, यानी कि आपने साथ में देखा था धर्मेंद्र को, सनी डेओल को और साथ में बॉबी को। और इस फिल्म को बनाने के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया था जहां पर डेओल्स ने कोई अपफ्रंट पेमेंट नहीं लिया था, जबकि उन्होंने कहा था कि इस फिल्म से जितने भी मुनाफे होंगे तो फिर वो जाकर देखेंगे कि कैसे वो अपने शेयर्स या अपने फीस को शेयर कर सकते हैं। और ये जो गाना हम प्ले करने जा रहे हैं आपके लिए, ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी 1975 की प्रतिज्ञा, और उसी फिल्म में एक गाने से लेकर ये जो गाना अगला आप सुनने जा रहे हैं इस फिल्म का टाइटल रखा गया था। और ये सभी कुछ आपने देखा था बड़े पर्दे पर, और इसके अलावा इस फिल्म से पहले तीनों को आपने साथ में देखा था पहली बार फिल्म अपने में इन 2007, जिसको डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने। तो एक बार फिर आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ऐसी

जोड़ी जहां पर आपने देखा था फादर द लाइट धर्मेंद्रा को साथ में अपने बेटों के साथ में ये जो फिल्म है यहां पर किया था सनी एंड बॉबी के साथ में। और जो सवाल हमारा था कि अमिताभ बच्चन और साथ में अभिषेक को आपने सुना या फिर देखा बोल बच्चन में, लेकिन एक और एक गाना है जहां पर इन्होंने साथ में परफॉर्म किया था, अगर जो आपको वो गाना मालूम है 5599 पर मैसेज करो। नैना को तो पता है, नैना ने जवाब भेज दिया है।

हम पर आप सुन रहे हैं ड्राइव शो अभी के साथ में और 104.2 एफएम साथ में रोवा पर आपका खास स्वागत करते हैं। जबकि सवाल किया था कि अभिषेक बच्चन साथ में अमिताभ को आपने किस और गाने में साथ देखा था, तो जवाब है कजरारे, जिसका जवाब हमारे पास में भेजा था नैना साथ में जमायरा ने। थैंक यू सो मच। और ये जो सेगमेंट है आपके लिए प्ले कर रहे हैं, द रियल लाइफ फादर एंड सन कॉम्बिनेशन, या यू कहे फादर एंड डॉटर कॉम्बिनेशन। तो अगला जो गाना है आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं, इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आप ये गाना सुनो और फिर अंदाज़ा लगाओ कि किस फादर एंड सन या फिर फादर एंड डॉटर की कॉम्बिनेशन इस गाने में है या फिर इस फिल्म में है। ये जो गाना है कुमार शानू ने गाया है, तो ये चैलेंज है आपके लिए। गाना सुनिए, इन्जॉय कीजिए और ये भी पता लगाइए कि किस फादर एंड सन या फिर फादर एंड डॉटर की जोड़ी इस गाने में थी।

0: हाँ, पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और जबकि ये कारवा आपके साथ में चल रहा है और चलता रहेगा सात तक। और जो सवाल हमने आपसे किया था कि आपको पहचानना था कि ये जो गाना है किस फादर एंड सन या फिर फादर एंड डॉटर की जोड़ी में से थी, तो हमारे पास में 78280 आपने मैसेज किया, थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग, और आपने सही जवाब दिया है। ये था जो जोड़ी, ये थी महेश भट्ट और साथ में उनके डॉटर पूजा भट्ट की, और जबकि ये फिल्म थी फिर तेरी कहानी याद आई, जहाँ पर महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था, और साथ में इनमें स्टारकास्ट में थे पूजा भट्ट और साथ में राहुल रॉय। ये जो फिल्म है, ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये लूजली बेस्ड थी इनके लाइफ में, जो इनके एपिसोड थे प्रवीण बाबी के साथ में, इन दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं इसको लेकर ये फिल्म बनाया गया था। एक और एक हसीन बात यह है कि अनु मलिक ने वापस कमबैक किया था, जबकि उनकी जो म्यूज़िक थी या फिर उनको काम नहीं मिल रहा था, लेकिन इस फिल्म के साथ में ही मेड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, और ये जो एल्बम है पूरा का पूरा पसंद किया गया था इसके साथ में, जबकि ये फिल्म काफ़ी अच्छी अच्छे गानों के साथ में रेडी हुई थी, लेकिन इसको एक थिएटर में नहीं बल्कि जी टीवी पर रिलीज़ किया गया था। तो आज के लिए, अभी के लिए आपके साथ में ये गाना हम शेयर कर रहे थे, देयर इज मेनी मोर सॉन्ग्स टू कम अप, और ये आपके साथ में शेयर करते रहेंगे।
1: Your attention please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
3: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
1: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now. It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Kukekwe, where dreams begin.
4: When India comes to town, Aotearoa feels different. Join the Cricket Nation pre-sale at nzc.nz and secure your tickets first, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
5: Professional financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
6: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
5: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect. सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाएं।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
7: डिब्बा खुल गया
8: भरत भाई, टिफिन खुल गया छे, संजना का डिब्बा खुल गया।
9: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा, फिर यही तो होगा
8: डिब्बा खुल गया।
9: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। Buy any Kashish product and be in the draw to win up to $10,000 worth of cash prizes, gold coins and gift vouchers. Terms and conditions apply.
10: Drive show with Sandy and Rusbay, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: हाँ, पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और लगे हाथों आपको अपडेट्स दे दूँ बैटल ऑफ द जायंट्स टूर्नामेंट की, जो बा में हो रही है फिजी में, और यहाँ पर जो रेवा साथ में लोटोका के बीच में खेल हो रही है। जो लेटेस्ट अपडेट्स मेरे हाथ में है, रेवा इज़ लीडिंग लोटोका बाय अ गोल टू नील। अगर जो आपको भी पता है, आप फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे साथ में अपना जो एक्साइटमेंट है 5599 पर शेयर कर सकते हैं। लेकिन मूविंग ऑन, ये जो अगला गाना है ये पेयरिंग थी सुनील दत्त साथ में संजय दत्त की, और इसको रिकमेंड किया था हमारे पास में लोकेश ने, जबकि हमने रिक्वेस्ट किया था कि आपके जहन में भी कोई गाना है, ख्याल में कोई गाना है जहाँ पर फादर एंड सन को आपने साथ में देखा था, तो लोकेश ने हमारे पास में ये जो गाना है इसका सजेशन भेजा था, थैंक यू सो मच। इसके बाद में, इस गाने के बाद में एक और एक गाना लगेगा जहाँ पर आपने शायद अनिल कपूर और सोनम कपूर को साथ में देखा होगा। क्या आपको फिल्म का नाम पता है? 5599 पर भेजिए जहाँ पर आपने सोनम और साथ में अनिल कपूर को एक साथ देखा होगा किसी एक फिल्म में। आपको फिल्म का टाइटल याद है, सेंड इट थ्रू ऑन 5599।
3: ये जे हॉस्पिटल आ रहे लो मेरे बाप, अरे किधर किधर, अरे ब्रीच कैंडी, होल्ड मैन होल्ड, आई एम बिजी।

0: हाँ तो बस यही था फिल्म का नाम। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, दर्शन रावल गा रहे थे। और अ ब्यूटीफुल मूवी, अगर जो अभी तक आपने नहीं देखी है तो देखना बनता है, जहाँ पर एक अच्छा सा मैसेज है प्यारा सा कि कैसे किसी को एम्ब्रेस किया जा सकता है। तो फादर्स डे के प्रमोशन के अंतर्गत यानी कि इस इवेंट को हमने इस सेगमेंट को आपके लिए खास लेकर आया है। जबकि आपने सुना था डेड्स एआई अपग्रेड को ड्राइव शो में $300 का जो इनाम है, इसके हकदार हुए हैं सानवी प्रणवी, जिन्होंने अपने डेड सुनील राज का जो इमेज है ये अपलोड किया था। इसके साथ में आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट शो में महेन कुमार के हाथ में लगा था डेड्स रिवर्स ग्रिल ओनिया प्रमोशन के तहत जो प्राइज़ है $500। तो हमने सोचा कि जबकि संडे को फादर्स डे है, तो ऐसे में फादर एंड सन की जो जोड़ी है या फिर फादर एंड डोटा की जो जोड़ी है बॉलीवुड से, उनसे पिक्चराइज या फिर जहां पर उन्होंने किसी भी एक फिल्म में साथ काम किया है उसको लेकर कुछ गाने आपके लिए इस सेगमेंट में ट्रेंड मेकर्स में पेश करेंगे। और मेघा, आपके मैसेज के लिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही है आप, और इसी तरह से हमारा साथ देते रहिएगा। कुछ और गाने हैं जो आपके लिए लाइंड अप किए गए हैं।
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
2: Ladies and gentlemen,
3: unfiltered with Sandy and Rusbe, kyunki duniya mein already bahut sare perfect polished Instagram friendly stories hain aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
4: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं.
3: Unfiltered with Sandy and Rusbe on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
5: Hum, accurate traffic.
6: Auckland Home Show, 10 to 13 September.
7: Mainly clear overnight for Auckland. A low of 11, State Highway 1 still closed between Warkworth and Wellsford due to a crash. Detour via State Highway 16 in both directions. Lane reductions on the Harbour Bridge due to severe wind gusts. On the southern, from town to Manukau, 26 minutes to Drury, 37. It's heavy northbound from Highbrook Drive to Green Lane. Southwestern's heavy northbound from Cavendish Drive to Mangere Bridge.
6: Auckland Home Show and Garden Showcase, 10 to 13 September at Auckland Showgrounds.
8: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor pouch packs, $9.99 each, or Oreo cookies select size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
9: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
10: Gym, swim and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Turiki. Altogether Auckland.
11: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
12: Indelible Homes, your building expert.
13: What's better than getting the latest Galaxy phone? Getting a bonus 50-inch Samsung TV with it from Spark. Buy the new Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra or S26 Ultra interest-free over 24 or 36 months with an eligible pay monthly mobile plan, and you'll get a bonus 50-inch Samsung TV. New Galaxy phone, new Samsung TV from Spark. Minimum $99 deposit, TV delivered separately. T's and C's apply.
5: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
14: Forget packing your bags for now. Just keep your ears open for the next hump boarding call. You could be boarding a dream trip to Vanuatu with two return air tickets from Solomon Airlines and $1,000 spending money.
5: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland.
15: Solomon to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Let's go!
16: 3, 2, 1. Trend Makers.
0: That's right, ये है ट्रेंड मेकर्स, जबकि 17 मिनट बाकी है 7 बजने में. और ऐसे में आपको बता दूं कि आज के लिए जो फादर एंड सन या फिर फादर एंड डोटा की जो डो जोड़ी कॉम्बिनेशन जो भी आप कहें, जो रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ तक झलकती हुई आई है, आपने इंजॉय किया है ओवर द ईयर्स. ये जो आखिरी गाना है ये राकेश रोशन की डायरेक्शन में बनी कहो ना प्यार है, जिसे एक्सटेंसिवली शूट किया गया था न्यूजीलैंड में, और उसी फिल्म से ये जो आखिरी गाना है आज के लिए आपके लिए प्ले कर रहे हैं. लेकिन आपको ये भी बता दें कि अनफिल्टर्ड में सैंडी और रुजबे ने बातें की हैं कंटेंट क्रिएटर अभी के साथ में, जिन्होंने काफ़ी कुछ शेयर किया है, और इसके अलावा कैसे उनका प्यार फिजी और इंडियन कम्युनिटी को लेकर है, और इसके अलावा मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने बातें की हैं कि कैसे कंटेंट क्रिएशन आने वाले दिनों में फ्यूचर में एक पावरफुल बिजनेस मॉडल बन सकता है. इसके लिए आप ड्राइव लिखकर 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं और आपको पूरा का पूरा लिंक मिल जाएगा. और इसके साथ में ट्रेंड मेकर्स जो सेगमेंट है ये, इसको लेकर एक गानों को कंपाइल किया गया है सैंडी और रुजबे द्वारा, जिसका नाम है रोड ट्रिप थीम, यानी कि रोड ट्रिप है. और ऐसे गाने अगर जो आप सुनना चाहते हैं, अगर जो आप भी वीकेंड पर कहीं निकलेंगे घूमने के लिए, तो टेक्स्ट करें TM on 5599 या फिर रोवा पर आप ट्रेंड मेकर्स सर्च कर सकते हैं. नाउ जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर जो आपने हमारा साथ दिया है, आप अपना फीडबैक 5599 पर भेज सकते हैं हमारे पास में, जबकि ये मेरे ख्याल से दूसरी बार है मैंने आज ड्राइव शो किया है. अगर जो आपको पसंद आया है कुछ, ये भी आप भेज सकते हैं, या फिर कुछ नहीं पसंद आया आने वाले दिनों के लिए कुछ सुधार कर सकता हूँ, इसका भी सजेशन 5599 पर आप भेज सकते हैं. आई एम ओपन टू पॉजिटिव फीडबैक या फिर आपके कुछ क्रिटिकल थॉट्स हैं, इसके लिए भी मैं बिल्कुल रिसेप्टिव हूँ.

सिंडी और उजबे तो नहीं, मैं हूँ अभी आपके साथ में और बस थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ रहेगा। और जबकि हमने वादा किया था कि काफ़ी लोग अभी सच कर और सवर कर जा रहे होंगे कृष्ण जन्माष्टमी में, यू मस्ट बी ऑन द वे प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, जबकि आज कृष्ण जन्माष्टमी को कई जगह पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ऐसे में अगला जो ये गीत है श्री कृष्ण के लिए, जितने भी भक्त सुन रहे हैं, जुबिन नौटियाल की आवाज़ में आपके लिए।

इसी नोट पे मैं निकलता हूँ यहाँ से, और हमारी और आपकी मुलाकात अब कल सुबह होगी 6 पर। लेकर आऊँगा आपके लिए ब्रेकफास्ट, सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ओनली ऑन हम, और कल मिलेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम डू टेक केयर, आपसे फिर मुलाकात होगी। आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर जो आपको मज़ा आया तो इसके बारे में, आज के शो के बारे में मज़ा आया तो टेक्स्ट ज़रूर करना। लेकिन आपसे कल सुबह तड़के सुबह मुलाकात होगी। दिस इज़ मी अवि साइनिंग ऑफ, बाय।

0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

जो मैं नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Put your head to Gandhi.
2: Driving you home.
3: Drive Show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
5: ये गलत बोल दिया यार.
4: और पहनता भी नहीं है उसको.
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया अभी वो.
5: अभी ब्रांड हो गया ना.
4: रुस्बे के बाल लगे उस.
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
7: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
8: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
7: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
8: पर डेवलपमेंट के पैसे
7: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
9: Bunnings has great value to help make spring cleaning easy with all set 20-pack of microfiber cleaning cloths only $10.98 and the Pink Stuff 850-gram Miracle Cleaning Paste just $9.49. Head in store or online for even more great value this spring. Bunnings
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ. बोली, बस मेरा फोकस है.
11: हाँ, अच्छा
10: बताओ तुम्हारा फोकस साडा कुछ नहीं.
11: मिसेस सिंह
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मीन्स मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
5: Okay, a large pizza base with tomato paste, a few salami slices, grated cheese, a 1.5 litre bottle of fizzy drink and a garlic bread on the side. Is that all?
6: Yes, that's all, thanks. But whoa, how much? On second thought, no thanks. I'm just going to make my own pepperoni pizza with stuff from Pack and Save.
5: Okay, sorry.
6: Apology accepted. Make your own takeaways for less at Pack and Save. Some assembly required.
5: Oh, man.
7: Non-stop Bollywood.
8: Hum.
7: Playing Bollywood's biggest hits.
8: Let's go!
7: The weekend starts here.
9: Friday Night Rave.
7: Hum.

0: मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं?
1: तू क्यों अच्छा लगेगा?
0: तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी?
1: मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कौरा बौरा हो रहा था ना।

0: Super Marek!
1: Чарго на кам. Я чарго на зяда. Чарго на кам. Я чарго.

0: Ayo. Check it out. My
1: check, check.
0: What?
1: Don't follow that. I never.

सियादो हांजी शॉपिंग करा दो हांजी दिन भर घुमा दो हांजी रात में करा दो पार्टी पिक्चर दिखा दो हांजी पिक्चर पिला दो हांजी जब बोला उसे घर चलो कूलर जी कैन यू प्लीज ड्रॉप मी

0: 4, Aria!
1: मैं बचपन से बच पर तू राही थोड़ा थोड़ा स्टैक जबर खूब काही राही काही नाही ना को अरे दाजी बामी थोड़ी चिंतित पर बाकी सब इलाही इल हाय ये मैं राज दुआ मैं मिल तू आज दुआ मैं मिलू आज दुआ मैं तुझको राज ए ए चुना ना दूर से देख चूहा जेरी तू मैं टॉम मैं तेरा दोस्त तू देख देख विचार चलू तार शब्द कांदान वर से तू ना पांदान वर ठीक पैसा खानदान वर चेक लाओ लाओ थोड़ा सा प्यार मेरे कंटेंट पे क्यों जगह पर कॉल मेरी कौन कौन इस कंटेंट में कॉन्सर्ट पे सबस्क्राइब पे खतली मी नौ आरी पदर सर का फ्लो सारा रैप बारी लाइफ आरी मराठी पोरगी नाकात नथनी प्रेमाचा रैप जसा भाकर अनचकनी माथे पे चंद्रकोर जबान खारी खारी चाय के साथ वैसे ही मैं और मेरी नौ आरी शब्दों से कूल हॉट ट्रेंड मेरी सारी खारी चाय के साथ

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HUM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: HUM boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलुकाओ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किवीज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलुकाओ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: You filled the pinata before I sealed it, right?
5: No, you did.
4: Oh, I thought you did.
6: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
7: It's dream season at Beds R Us. Save up to 50% on selected sleepyhead beds like the Swiss Tech Precision. Half price, queen size, now $4,299. Check out these dream deals and more at Beds R Us Manukau and Phuket Quay, where dreams begin.

0: चौकीदार से शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: राइट डीजे वाले भाई साहब, लगा दो कोई डुबचिक डुबचिक है।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Ma, it's your
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
3: मुझे भी।
4: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
5: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
6: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
5: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
6: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
5: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
7: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
8: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Budget Gandhi.
8: Night Flight.

0: please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, मैं

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: So, you've been thinking about adding a modular home to your property.
5: Yes, and Zillow sounds great, but I'd really like to see one in person.
4: Now you can. Come and walk through two fully finished Zillow homes at the Auckland Home Show 10 to 13 September. Explore the layouts, see the premium inclusions for yourself, and talk to the team about what could work on your property.
5: Now that I like the sound of.
4: Discover Zillow by Ashcroft Homes at Tiny Living Lane or visit zillow.co.nz.
6: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह। कभी धूप, कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग। रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342. That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support.
7: There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Just me.

0: Night Flight on Hum.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces, first come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
7: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली.
8: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर. मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार.
9: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है.
8: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज.
10: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते.
8: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.
0: Night Flight

0: Punjabi swag is on.
1: Hey.

0: दिया।
1: स्ट्रीमिंग ऑन रोवर।
2: कभी कभी लो फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल मौसम की तरह। कभी धूप कभी बादल। अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग। रीच आउट और किसी ट्रस्टेड प्रोफेशनल से बात कीजिए। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज। कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342। That's 0800-862-342 for free and confidential mental health support. Playing Bollywood's biggest

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
4: Discover the magic at Go Bananas Child Care, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Child Care's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
7: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein, plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes, or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09 277 6644. T's and C's apply.

0: Saturday Breakfast on Hum. You're listening to Avineet.
1: Kia ora, bula, salam, namaste, sasriyakal, namaskaram, kem cho, main hu abhi aapke saath mein, a very good morning kehte hain, aur aaj jabki hai 5th of September, aise mein aapka khas swagat karte hain to the show, which is Saturday Breakfast Show, lekar aa gaya hun aapke favorite dial hum par, 104.2 FM saath mein rova par, aap bhi hamari tarah jaag gaye hain, और निकल पड़े हैं, रास्ते में हैं, सफ़र में हैं और अपने नौकरी या काम पर जाने को बिल्कुल तैयार है, तो आपका खास स्वागत करते हैं. इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग और आपका एंटरटेनमेंट कराते रहेंगे. ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ में बांटते रहेंगे, कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज भी है, कोट्स भी है, ये भी बारी बारी से आपके साथ में शेयर करते रहेंगे. बस आप साथ देते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आज का जो दिन है ना, पूरा का पूरा कोरा कागज़ है, इसे आप जिस रंग में चाहे भर सकते हैं. तो क्यों ना हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आज इस दिन को आप जिए हमारे साथ में.

गुड मॉर्निंग, मैं हूं अभी आपके साथ में। इट्स 6:09 और ऐसे में आपको बता दूं आज का मौसम आपके लिए कैसा रहेगा ताकि आप भी बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहे। तो मेट सर्विसेज ने फोरकास्ट किया है टुडे द 5th of September मेनली फाइन बट अ फ्यू चांसेस ऑफ शावर्स हियर एंड देयर। इसके साथ में आज की जो पहली किरण है आपको देखने को मिलेगी आज सुबह और 6:36 AM पर। जी हाँ, बस आफ्टर 26 मिनट्स आप इसे भी देख सकेंगे। और साथ में आज का जो मौसम है ऐसा बताया जा रहा है खासकर ओकलैंड सीबीडी के लिए जनरली फाइन, और अगर जो नेशनली देखें तो काफ़ी जगहों पर काफ़ी टाउन्स एंड सेंटर्स में कुछ मिक्स्ड वेदर सा दिन रहेगा। आपको दिन भर में बादल भी मिल सकते हैं देखने को, लेकिन इसके साथ साथ में बीच बीच में कहीं सूरज की किरणें भी आपको नज़र आएगी। साउथ आइलैंड में भी ऐसा ही मौसम फोरकास्ट किया गया है। तो ऐसे में बिल्कुल तैयार रहे, जबकि स्प्रिंग का समय है, सीज़न है। हाँ, समा मैंने कहा, यानी कि हिंदी वाला समा, स्प्रिंग का समा या सीज़न है। और ऐसे में आप भी जो कुछ आज प्लान करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशंस बिल्कुल प्लान कर दीजिए, करिएगा। इसके साथ में आप बाहर निकल रहे हैं घूमने के लिए टाउन्स एंड सिटीज़ में, तो इस तरह का मौसम आज आपको मिल सकता है। मैं हूँ अभी आपके साथ में और गुड मॉर्निंग विश कर रहा हूँ आपको। अगर जो एक भी जवाब आता है बदले में गुड मॉर्निंग, तो पता तो चलेगा कि आप भी हमारे साथ में जागे हुए हैं। 5599 पर आपका प्यारा सा मैसेज आप भेज सकते हैं।

आप सुन रहे थे अलका याग्निक साथ में कुमार शानू को जी भर के जीले। हाँ, देट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑन अ ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग अभी का साथ है हम पर, कुछ प्यारे से मैसेजेस आने लगे हैं और कुछ लोग हैं जो जागे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। अनित विमोत मनीरेवा से आपने मैसेज किया है, विशिंग एवरी वन अ फैंटेस्टिक सैटरडे, और इसके साथ में आपने लिखा एंड हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द अमेजिंग डेड्स ग्रैंड डेड्स एंड फादर फिगर्स आउट देयर इन एडवांस। Hope you all have a safe, happy and blessed day with your loved ones. Enjoy the weekend, make some beautiful memories and keep smiling. प्यारा मैसेज है अनित आपका। आपने ये भी लिखा है कि कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाना ज़रूरी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड यही सब आपके साथ में भी शेयर करना चाहता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेमोरीज अच्छी अच्छी बनाते रहें। इसके साथ में एक और एक मैसेज आया है 9669, आपने अपना नाम तो नहीं लिखा है लेकिन आपने गुड मॉर्निंग विश किया, थैंक यू सो मच। इसके साथ अहमद भाई गुड मॉर्निंग, आपने भी लिखा है थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। आप भी हमें सुन रहे हैं और अभी तक मैसेज नहीं भेजा है तो 5599 पर अपने उंगली को थोड़ा सा तकलीफ दीजिए, एक मैसेज भेजिए ताकि आप हमारे साथ में रहे और ये हमको पता भी चले हमारे मैसेज प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। ये सभी कुछ बातें आपके साथ में हो रही हैं, बस थोड़ी देर में एक इंस्पायरिंग कोट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। कीप हमिंग।

0: हम पर मैं हूं अभी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. अगर जो अभी भी आपने ट्यून इन किया है, फ्लैट बुश ओकलैंड से क्वीन सुन रही है, आपने भी अपना गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा है, थैंक यू सो मच. इसके साथ मैं आपको बता दूं, जिन सपनों को आपने देखा है उनको सच करने के लिए, उनको काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उनके लिए खुद कुछ काम करें. इन इंस्पायरिंग थॉट्स के साथ में दिस इज़ अ ब्यूटिफुल सैटरडे मॉर्निंग 5th of September एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन.
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम playing Bollywood's biggest hits.
3: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
5: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
6: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
7: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
8: What day is Father's Day? Sunday! And with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
9: New Zealand's number one home show is back. With inspiration from the front gate to the back fence, visit the Auckland Home Show 10 to 13 September, Auckland Showgrounds. Explore hundreds of exhibitors and the all-new Garden Showcase. Buy tickets now at aucklandhomeshow.co.nz.
10: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The

0: हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
1: That's right, ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम और मैं हूँ अभी आपके साथ में. वैसे जबकि मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ तो अभी तक नहीं पब्लिश हुई जिसके बारे में आपको बता सकूं, लेकिन आज सुबह का जो पहला समाचार रहेगा 8 पर रहेगा. इसके साथ में जो एक न्यूज़ है जो मैंने सोचा कि शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा या फिर इसको जानकर शायद आपको भी खुशी होगी कि एक कोरोना ने एडवाइस किया है कि जो लोग अनफिट टू ड्राइव होते हैं फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, इन्होंने ऐसी मांग की है सरकार के साथ में कि एक ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाए जहाँ पर जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स है इनको एडवाइस करना चाहिए ट्रांसपोर्ट एजेंसी को इफ़ समवन इज़ अनफिट टू ड्राइव फॉर अ लॉन्ग टर्म. ये मांग तब आई जबकि नवंबर 2025 में एक जेसन चैपमैन नाम की व्यक्ति की मौत हुई थी और ये जो 51 ईयर ओल्ड है ये इनको पाया गया था अनरिस्पॉन्सिव इन अ कैब ऑफ हिज ट्रक जबकि इनकी ट्रक ये रास्ते से बाहर हो गई थी. और यहाँ पर कोरोना ने कहा है पोस्टमार्टम के तहत पता लगा कि चैपमैन की मौत हार्ट डिजीज से हुई थी. तो इस पर और भी जब छानबीन हुई तो यहाँ पता लगा कि चैपमैन लौट कर गए थे ट्रक ड्राइविंग में इन द ईयर 2025 जबकि 2023 से लेकर 2025 के बीच तक इन्होंने ड्राइव नहीं किया था क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी. और 2025 में जब इन्होंने रिज्यूम किया ट्रक ड्राइविंग तो इनके एम्प्लॉयर ने सिर्फ यही पूछा कि इफ़ ही वॉज मेडिकली क्लियर टू ड्राइव और चैपमैन ने कहा कि हाँ बिल्कुल ही वॉज मेडिकली क्लियर्ड, लेकिन एम्प्लॉयर ने फर्दर चेक्स नहीं किया किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट या मेडिकल प्रोफेशनल से कन्फर्म करने के लिए. एक ही रिपोर्ट थी, एक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर रजिस्टर ऑनलाइन टोरो सिस्टम है और यहाँ पर सिर्फ ड्राइवर लाइसेंस स्टेटस कन्फर्म किया जाता है. तो इन सभी इंसिडेंट के बाद में कोरोना ने मांग की है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पर इफ़ समबडी इज़ अनफिट टू ड्राइव फॉर अ लॉन्ग टर्म एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तो इनका जो रिपोर्ट है ये NZTA के पास में होना चाहिए.
2: किसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, किसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, किसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, किसे कहते हैं हिप हॉप.

0: Saturday breakfast on Hum.
1: That's right, ये है Saturday breakfast show on Hum. और internationally अगर जो देखे, जहां पर नेपाल में फ्लैश फ्लडिंग हुई थी तो 9 days कुछ हो चुके हैं और ऐसे में अब भी रेस्क्यू एफर्ट्स जारी हैं, जबकि ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 1,311 लोगों की कन्फर्म्ड मौत हो चुकी है, जबकि 5,000 से ऊपर लोग अभी भी मिसिंग हैं नेपाल में. तो यहाँ पर कुछ जो रेस्क्यू एफर्ट्स है इसके दौरान कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं, जहाँ पर 2 लोगों को बचाया गया है और टनल्स में ये दब गए थे और यहाँ से उनको बाहर निकाल कर रेस्क्यू किया गया. तो ऐसे में आप भी सुबह सुबह अगर जो आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो या दुआ करते हो, तो इन लोगों को भी ज़रूर याद करिएगा. इट्स इम्पोर्टेंट कि नेपाल में जो स्थिति है इसमें जल्द से जल्द इनको राहत मिल सके.

0: कुछ 18 मिनट बाकी है सुबह के 7 बजने में, और जबकि 5th ऑफ सितंबर है, आप भी कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर कोई खुशी का माहौल है आपके घर में, इसके बारे में आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, बर्थडे हो या फिर वेडिंग एनिवर्सरी हो, तो 5599 पर आप ज़रूर मैसेज करें, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड देम आउट फॉर यू ऑन एयर। और अगर जो आप किसी को कोई गाना भी डेडिकेट करना चाहते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी हो तो अपने हबी या वाइफ के लिए कोई गाना भी सुनना चाहते हैं, तो इसका भी इंतज़ाम मैं कर सकता हूं आपके लिए, बस आपको मैसेज करना होगा 5599 पर।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hum.
3: We gotta go. Are you ready?
4: Come and take a trip with me.
5: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
2: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
6: Let's go.
2: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
7: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex aur ye hai meri guest Sarah.
8: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
7: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
8: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
7: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
9: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
10: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
11: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
12: अब हमारा क्या होगा?
13: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
14: तो क्या करें?
15: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
16: What day is Father's Day? Sunday! And with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
17: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
18: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
19: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
20: हाँ। अच्छा
19: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं?
20: मिसेस सिंह,
21: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
22: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू। कॉल 0928130050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
1: आप भी अपने सुबह की पहली चाय का मजा ले रहे हैं हमारी तरह, तो वेलकम टू द शो। ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो और आपको बता दूं कि अक्सर आप हमें अपना प्यार मैसेज के द्वारा और साथ में हमारे रोवा ऐप पर या फिर 104.2 एफएम पर सुनकर हमें देते रहते हैं और इसका हमको एहसास होते रहता है। एक और एक जरिया है जहाँ पर हम आपके लिए कुछ ना कुछ अपलोड या डालते रहते हैं, ये है हमारा हम का फेसबुक पेज और इसे भी आप जाकर ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने एक पोस्ट डाला है जहाँ पर मैंने बातें की हैं सपनों के बारे में और कैसे उनको सच करने के लिए क्या काम करना पड़ता है। तो डू चेक इट आउट एंड लीव मी अ कमेंट। One more time.

0: फिजी के बा शहर में जो बीओजी टूर्नामेंट चल रहा है इस पर जो खेल हुए हैं कल, इस पर जो लेटेस्ट अपडेट्स रिजल्ट्स है, सुबह ने नवा को 3-1 से हराया था और उसके बाद में जो और मैचेस हुए लंबासा और नसीनू के बीच में, उसमें जोसफ जो ने लंबासा के लिए गोल बनाकर नसीनू के खिलाफ 1-0 से उनको जीत दिलाया। उसके बाद में रेवा है नो ट्रबल बीटिंग लटोका 2-0, और जो फाइनल मैच था ऑफ डे 1 यहाँ पर बा की जीत नेंडी के खिलाफ 1-0 से हुई है। जो और मैचेस हैं आज होने को है इसके बारे में अपडेट्स बस थोड़ी देर में आपको देने वाला हूं।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

0: Saturday breakfast on Hum.
1: Yo, main hoon chhota sa chhora.
2: You're listening to Avineet.
3: That's right. अभी का साथ है हम पर लेकर आए हूँ सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो. जबकि आपके एरिया में, आपके इलाके में जो सूरज की किरणें हैं आपको महसूस होने लगी होंगी या फिर आप देखने लगे होंगे, आप भी जागे हुए हैं. वेलकम टू द शो. अभी से लेकर 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. अनीता जी हमारा साथ दे रही हैं. फेसबुक पर हमारे जो अपलोड किए गए पोस्ट है इसको आपने पसंद किया है, साथ में गुड मॉर्निंग का मैसेज भी दिया है. थैंक यू सो मच इसके लिए. और आज जबकि है 5th of September तो कुछ लोग अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. जबकि एक प्यारा सा मैसेज आया है और इसको आपके लिए पढ़ देते हैं क्योंकि भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने मेंबर्स को याद किया है. सुधा खुराना जी है ब्लॉक हाउस बे से, अपना बर्थडे जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं आज. इनके साथ में है रमेश राणा जी न्यूलैंड से, ये भी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. डबल सेलिब्रेशन है भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर्स के लिए. तो आपको सुधा जी और रमेश, आपको हमारी ओर से अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आज का ये दिन आपके लिए बिल्कुल स्पेशल रहे, इन्जॉय करिएगा. एंड दिन भर आपको प्यारे प्यारे मैसेज मिलते रहें, ब्लेसिंग्स मिलते रहे, ढेर सारे शुभकामनाएं मिलते रहें. और इनके साथ में चमकते चमकते जो तोहफे होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, ये भी आपको मिलती रहे. तो इसी तरह से आप भी साथ देते रहिएगा. आपका भी जन्मदिन है तो इसके बारे में आप 5599 पर हमारे पास में मैसेज कर सकते हैं. या फिर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है जिसके बारे में आप भूल चुके थे, हमने आपको याद दिला दिया, तो इसका मैसेज भी आप हमारे पास में ज़रूर भेजें ताकि आपको भी हम ओनेया बधाइयाँ दे सकें.

0: का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: This is me, Avi, keeping you company on Saturday Breakfast Show on Hum, playing Bollywood's biggest hits, जहां पर Bollywood की जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं और अभी के लिए आपसे पूछना चाहता हूं, अगर जो मैं आपसे कहूं कि Bollywood में एक मेल प्लेबैक सिंगर है और जब भी आप इनके गानों को सुनते हैं तो आपको सुनते ही ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने गानों को बहुत ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए रिकॉर्ड किया होगा तो ये सुनने के बाद में अगर जो आपको पता चलता है कि सिंगा के बारे में हम बात कर रहे हैं इनका जन्मदिन भी इसी महीने 30th सितंबर को है और ही हेल्स फ्रॉम अ म्यूजिकल फिल्म म्यूजिकल फैमिली और इनके जो सिस्टर है ये भी गाया करती थी तो अगर जो मैं कहूँ कि एक ऐसे सिंगा है जो आप जब भी इनके गानों को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने गाने को रिकॉर्ड किया है तो 5599 पर आप ज़रूर अंदाज़ा लगाकर हमारे पास में भेजें हु डू यू थिंक इट विल बी

हम पर मैं हूँ आपका साथी अवि, और एक और एक प्यारा सा मैसेज आया है रोनल की तरफ से। आपने गुड मॉर्निंग विश किया है, साथ में हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी आपने विश किया है। जितने भी सेंट्रल ग्रुप और VTNZ के आपके भाई हैं, आप सभी को और इसके साथ में जितने भी हम के लिसनर्स हैं, आपने इन्हें विश किया है। थैंक यू सो मच रोनल। जबकि कल 12 पर रात को कृष्ण जन्माष्टमी काफ़ी जगहों पर बड़े धूमधाम से मनाया गया है, और इसके साथ साथ में कल फादर्स डे भी है। इस पर भी कुछ बातें आगे कल चल कर करेंगे आपके साथ में। और जबकि स्पोर्ट्स की दुनिया में देखेंगे, वीकेंड में स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर रहती है, और BOG भी चल रहा है। इसके साथ में इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की जो खेल है, ये इप्सविच टाउन के साथ में हो रही है, जहां पर अभी लिवरपूल की लीड विद इन 15 मिनट्स 2-0 से हो रही है। और BOG पर बस बातें थोड़ी देर में जो आज के फिक्स्चर्स है आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप हमिंग।

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

0: conclusions for yourself and talk to the team about what could work on your property.
1: Now that I like the sound of.
0: Discover Zillow by Ashcroft Homes at Tiny Living Lane or visit zillow.co.nz.
2: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
3: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
2: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
3: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
2: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
4: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
5: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर। मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार।
6: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है।
5: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज।
7: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते।
5: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग DBC.
8: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
9: Non-stop Bollywood.
10: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
9: हम playing Bollywood's biggest hits. Saturday breakfast on Hum.
11: जी हाँ, मजा ले रहे हैं सैटरडे ब्रेकफास्ट शो का हम पर, जबकि 7:22 हो चुके हैं। ऐसे में जो बैटल ऑफ द जाइंट्स फिक्चर्स है जो बा के शहर में हो रहा है, फिजी आइलैंड्स में, अगर जो आप फिजी से हो तो आपको पता है इस टूर्नामेंट की अहमियत। तो आज के जो फिक्चर्स है, नसीनू साथ में नावा के बीच में 11:30 पर खेल रहेगा। उसके बाद में 1:30 PM लोटोका टेक्स ऑन नेंडी FC, जबकि दोनों टीमों की कल हार हुई है। उसके बाद में लंबासा और सुबह के बीच में मैच रहेगा, और साथ में आज का जो लास्ट मैच है 5:30 बा टेक्स ऑन रेवा। तो अगर जो आप भी अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रा भेजे तो हमारे पास में 5599 पर कि किस टीम की कितनी सपोर्ट है, ये भी हमें पता लगे। क्योंकि कल बा के कुछ ज़्यादा मैसेजेस आए थे, और साथ में नेडी की तरफ से एक ही मैसेज आया था, लेकिन ऑल अदर टीम्स जिनके फैंस हैं ये मैसेज आपने कल नहीं किया। तो लेट्स सी हाउ इट गोज टुडे। लेकिन इसके साथ में जबकि बातें हो रही थी बॉलीवुड के जो मेल प्लेबैक सिंगर हैं जिनके गाने आप सुनते हैं, आपको लगता है कि ये हंसकर ही गा रहे होंगे, द सिंगिंग प्लेबैक सिंगर ऑफ बॉलीवुड, आपके जहन में कौन है? अगर जो आपको कोई नाम याद आता है 5599 पर ये भी मैसेज करें, क्योंकि मैं इनका गाना प्ले करना चाहता हूँ आपके लिए सुबह सुबह। लेकिन मुझे ये देखना है वेट करके कि आपको कितना पता है कि आपको जो मैं नाम सोच रहा हूँ आपके जहन में भी वही नाम है, आपके ख्याल में भी वही नाम है या नहीं। तो मैसेज करो अगर जो मैं कहूँ एक ऐसे सिंगर जो बात भी करते हैं तो हंसते हुए बात करते हैं और गाना भी गाते हैं, लगता है ये हंसते हुए ही रिकॉर्ड करते हैं।

इज द वीकेंड और मैं हूं अभी आपके साथ में लेकर आया हूं सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो आपके साथ देता रहूंगा 12 तक। और अभी से कुछ एक घंटे पहले वन आवर बैक परपरा उमू में जी हां ये नॉर्थ आइलैंड में ही है, पूरी रुआ के नॉर्थ में है, वेलिंगटन के नॉर्थ में है और यहां पर कुछ 4.9 पर रिकॉर्ड किया गया है एक अर्थक्वेक एट अ डेप्थ ऑफ अबाउट या यू कहें 30 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ परपराउमू विद अ डेप्थ ऑफ अबाउट 29 किलोमीटर्स। तो काफ़ी लोगों ने इसे महसूस किया है और सोशल मीडिया पर रिपोर्ट कर रहे हैं, इसको पोस्ट कर रहे हैं। अगर जो आप भी अपर हट के रीजन में हो या फिर लोअर हट में आप प्रोग्राम को सुन रहे हो और या फिर वेलिंगटन में हो या पूरी रुआ में हो और आपने भी इसे महसूस किया, डू शेयर योर एक्सपीरियंस कि जो 4.9 का जो मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड किया गया है इस अर्थक्वेक का, ये क्या ज़ोर से आपको महसूस हुआ या क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट किया है, तो अगर जो आपने भी इसको फील किया है इसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए 5599 पर। डू सेंड मी अ मैसेज कि पूरी रुआ या फिर अपर हट या फिर लोअर हट या फिर यू कहें वेलिंगटन में भी क्या आपने इसको फील किया।

0: हम पर 20 मिनट बाकी है 8 बजने में, और 8 पर आज का पहला समाचार भी रहेगा आपके लिए, और इसके साथ में बस थोड़ी देर में शेयर करेंगे कि आपके आसपास आज क्या कुछ हो रहा है। और एक ऐसा इवेंट मुझे मिला है विच लुक्स एंड साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसका भी डिटेल आपके साथ में बस थोड़ी देर में शेयर करने वाला हूँ।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hum.
3: 80s के रेट्रो गाने।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: What day is Father's Day? Sunday, and with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: You filled the pinata before I sealed it, right?
3: No, you did.
2: Oh, I thought you did.
4: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
5: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
6: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
5: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
6: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
5: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
7: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली।
8: भोकाल के लिए तैयार हो जाइए बड़े पर्दे पर मिर्जापुर द मूवी स्टारिंग पंकज त्रिपाठी अली फजल दिवेंदु एंड जितेंद्र कुमार
9: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया बनाना है
8: मिर्जापुर द मूवी नाउ शोइंग इन सिनेमाज
10: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते
8: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग TBC
11: Media Voice Complaints. How can I help?
12: Yeah. Hello?
11: Hi.
12: Hi. Yeah, can you guys take a radio jingle out of my brain?
11: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
12: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
11: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
12: Great. Sing it to me.
13: Advertise with
14: Media Works.
13: New Zealand listens to us.
15: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
16: Playing Bollywood's biggest hits.
17: Toast, coffee or hum ka energy. Saturday breakfast on hum.
18: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है हम पर और आप भी अपने चाय की चुस्की का मज़ा ले रहे हैं तो वेलकम टू द शो जबकि 16 मिनट बाकी है 8 बजने में और आज का जो इवेंट है जिसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं ये बताने से पहले जो कि TRA2 पेनिनसुला कम्युनिटी हब में रहेगा आज 10 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक क्या आपको मालूम है कि लट्टू क्या है और इसको कैसे इसके साथ में क्या किया जाता है ये आपको बताना है 5599 पर उसके बाद में मैं बताऊंगा कि ये इंटरेस्टिंग इवेंट क्या है लट्टू क्या है क्या आपने कभी इसके साथ में कुछ किया है खेला है या फिर इसको इस्तेमाल किया है किसी तरह से इसका जवाब 5599 पर भेजिए मैं जानना चाहता हूँ आप लोग जितने लिसनर्स हैं इसमें से किसको लट्टू पता है या फिर आज भी याद है

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: गर्मा गर्म सैटरडे ब्रेकफास्ट शो लेकर आया हूं मैं हूं अभी आपका साथ दे रहा हूं अभी से लेकर 12 तक और अगला गाना बजाने से पहले आपको बता दूं कि अदनान सामी ने 1997 में ये जो एल्बम है इसे रिलीज किया था और इसके साथ में एक लाइन इस गाने में थी कि कैसे कैसे को दिया है मुझको भी थोड़ा सा लिफ्ट करा दे और जबकि लिफ्ट करने की बातें हो रही है तो पावर बॉल के बारे में या फिर टेस्ट लोटो के बारे में बिल्कुल मत भूलिएगा विच इज़ हैपनिंग टुनाइट

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: मैं हूँ छोटा सा छोरा
0: You're listening to Avineet.
3: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में सैटरडे मॉर्निंग 8:02 हो रहे हैं अभी ही आपने ट्यून इन किया है वेलकम टू द शो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आज का दिन आपके लिए बिल्कुल प्लेजेंट रहे यही हम दुआ करेंगे आपके साथ में आप मुझे सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर और जबकि पिछले आवा हमने आपसे पूछा था क्या आपने लट्टू के बारे में कभी सुना है या फिर कभी लट्टू को इस्तेमाल किया है इसका जवाब आपको 5599 पर देना है क्योंकि बस थोड़ी देर में इसी आवा पर आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि आज टियारटू पेनिनसुला में एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जहां पर आप जाकर इसको देख सकते हैं एंड इट माइट रिफ्रेश योर चाइल्डहुड मेमोरीज तो लट्टू क्या है 5599 पर जरूर मैसेज करो बस थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करने वाले हैं इस न्यूज को और इस आवा की शुरुआत करते हैं विशाल मिश्रा के साथ में

दिस इज सैटरडे ब्रेकफास्ट शो अवि के साथ में, और जबकि बातें हम आपसे कर रहे थे लट्टू को लेकर यानी स्पिनिंग टॉप को लेकर, आपने ज़रूर इसे खेला होगा जहां पर बड़े ही मेहनत के साथ में एक ट्वाइन होता था, रस्सी होती थी, इसको लपेटते थे और फिर इसको फेंकते थे एक सेकल के अंदर, और जिसका स्पिनिंग टॉप या लट्टू ज़्यादा देर तक स्पिन करता था वही जीत जाता था कॉम्पिटिशन को। तो अब इस लट्टू को यानी कि स्पिनिंग टॉप को एक हाई फाई लुक दिया गया है और एक नया नाम भी दिया गया है, इसको कहते हैं बेब्लेड। और यहाँ पर टियारे टू पेनिनसुला में आज कम्युनिटी हब में बेब्लेड टूर्नामेंट होने जा रहा है, जहाँ पर आप जाकर मुफ्त में इसे देख सकते हैं। और अगर जो आपको पार्टिसिपेट भी करना है तो एंट्री फी है $20 तक, लेकिन देखने के लिए बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर बेब्लेड टूर्नामेंट है ये होने जा रहा है, और यहाँ पर ग्लास बेसिन्स में जो टॉप्स होते हैं, स्पिनिंग टॉप्स या बेब्लेड्स होते हैं, इनको लॉन्च किया जाएगा। एक लोंचा भी आता है जो अब ट्वाइन यानी कि रस्सी को रिप्लेस कर चुका है, तो उस लोंचा के साथ में अपने अपने ये स्पिनिंग टॉप्स को लॉन्च करते हैं एक ग्लास बीका में या फिर एक ग्लास बेसिन में, जहां पर दो टॉप्स आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद में द वन दैट कीप स्पिनिंग फॉर लोंगा, और जो गिरता नहीं है वही विनर ठहराता है। तो ढेर सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर आज होने को है, आपको सिर्फ जाना होगा टियारा टू पेनिनसुला कम्युनिटी हब एट 595 टियारा टू रोड टियारा टू पेनिनसुला में, आज सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है, और बिल्कुल फ्री एंट्री है। अगर जो आप इसे देखना चाहते हैं, आई एम प्रीटी श्योर किड्स भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे इसको देखने के लिए, तो बच्चों को भी साथ में आप ले जा सकते हैं, और शायद ये देखकर बेब्लेडिंग को भी ये एक नया स्पोर्ट की तरह अपनाना चाहें अपार्ट फ्रॉम द डिवाइसेस, तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। या फिर उनको दिखाने के बाद में यू कैन शेयर योर स्टोरीज कि कैसे आप ट्वाइन के साथ में या फिर एक स्ट्रिंग के साथ में स्पिनिंग टॉप्स को खेलते थे। तो ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग एट टियारा टू पेनिनसुला कम्युनिटी हब 595 टियारा टू रोड टियारा टू पेनिनसुला में, 10 बजे सुबह से लेकर 5 इन द आफ्टरनून। यहाँ पर ढेर सारे और अट्रैक्शंस भी हैं, गेमिंग स्टेशंस भी रहेंगे, फूड स्टॉल्स भी रहेंगे, एंड इट्स फन फॉर ऑल एजेस।

0: स्कूल्स है ना, तो स्कूल्स में और स्टिल प्राइवेट घर पे भी होता है, जैसे लड़कन के छोटा लड़कन के, तो जब लंच आवा ब्रेक तो उसमें गेम रहा एक रकम के बनावा गया, तो फिर गेम रहा रिंग बनावा जाता रहा, एक रिंग लगभग 6-7 feet अक्रॉस, तो उसके भीतर जितना जने भी पार्टिसिपेट करे है, 3-4, 2-3-4, 5-6 जितना, तो सब अपन लट्टू जैसे 1-2-3 गो बोल के टॉस करा दे स्पिन करो, फिर उसके वही जो जो रोप से ट्वेन से करा है स्पिन, वही ट्वेन से उठाए पड़े, हाथ से नहीं पकड़ के उठा सकूं।
1: ओ, उसको उसी ट्वेन से उठाना पड़ता है ना?
0: हाँ, वही ट्वेन से उठाए पड़े, हाथ से नहीं, जो फर्स्ट उठाए ले वो जानो इन है, सेकंड इन है, थर्ड इन है, फोर्थ, जो लास्ट उठाई से वो आउट है, तो उसके उसके टॉप रिंग के बीच में थराई मिडल में,
1: ओके या
0: बाकी जिन्हें रिंग से बाहर हो के उसके टॉप में मारो,
1: राइट,
0: अगर टॉप कभी कभी जैसे दो पीस स्प्लिट हो जाता बीच में लग के, तो आदमी लड़कन टेक्स लगा देते रहे, जो टेक्स रहता रहे स्कूल में,
1: हाँ, जो स्कूल ऑफिस टैक्स होता, टैक्स होता था, हाँ
0: हाँ ऑफिस टैक्स, राइट, हाँ वो टैक्स से काफी सेव कर रहा है, लेकिन कोई कोई स्प्लिट भी हो जाता, और जब उसके मार के तो रिंग से बहरे निकाल दिया, जब मरते रहो जब तक 10, 12, 15, 20 जितना टाइम भी रिंग से बहरे आए गए तब वो जानो आउट रह गए, तब उसके फिर कंटेस्ट करे।
1: तो ऐसा देखिए, आपसे बातें करके काफ़ी चीज़ें अब रिफ्रेश हो गई, मुझे याद था कि मैंने खेला है, लेकिन इसके जो रूल्स थे मैं भूल गया था।
0: नहीं हाँ, ये और एक स्कोया भी बनाते रहे, स्कोया बना के बीच में रखते ट्रेन एकदम क्रॉस करके, उला भी वही रिंग का रकम रहा, वो भी बाकी सेकंड प्राइस स्कोया देता,
1: राइट। ओह नाइस, थैंक यू सो मच जय, आपने इतना कुछ हमारे साथ में शेयर किया, आई एम प्रिटी श्योर कि लोग सुनकर और काफ़ी यादें उनकी भी ताज़ा हो गई होगी लट्टू को लेकर, स्पिनिंग टॉप को लेकर।
0: हाँ अच्छा, अभी हम जाता कहते तो बगल जाता है, यहाँ आई है मेंगरी, कौन एड्रेस पे है?
1: अच्छा ये जो एड्रेस था मैं आपको बता दूँ, ये होने जा रहा है सुबह 10 बजे से टियारा टू पेनिनसुला कम्युनिटी हब पर, जो है
0: कम्युनिटी हब, राइट,
1: हाँ हाँ
0: राइट, लाइब्रेरी बगल में,
1: बिल्कुल हाँ, 595 टियारा टू रोड में,
0: राइट राइट, हम मूव करें तो जाए देख लेगा।
1: थैंक यू सो मच जय, समय निकाल कर आपने इतना कुछ बताया एक गेम के बारे में जो कहीं ना कहीं पीछे यादों में छूट गई थी, इसको आपने रिफ्रेश कर दिया।
0: थैंक यू, नो वरीज,
1: थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो ये थे जय हमारे लाइन में, जिन्होंने लाइन पर हमारे साथ में शेयर किया लट्टू के बारे में, स्पिनिंग टॉप्स के बारे में, जिसे फिजी में इस तरह से खेला जाता था। अब मुझे लट्टू को लेकर, स्पिनिंग टॉप्स को लेकर इंडिया का रूल तो नहीं पता है, अगर जो आपको मालूम है या इसी तरह से आप भी खेलते थे तो प्लीज़ डू फील फ्री टू शेयर ऑन 0800-004-866। ये सारी बातें शुरू हुई जबकि आज एक बे ब्लेडिंग कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट है जो लेटेस्ट हाई फाई इसको किया गया है स्पिनिंग टॉप्स को, अब तो इसको लॉन्च करने के लिए ट्वाइन के जगह लॉन्चर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके बारे में जानकारी देते हुए जय ने सुना और जय ने शेयर किया कि वो अपने दिनों में कैसे इसको खेला करते थे। Saturday breakfast on Hum.

0: हम पर यह है सैटरडे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट शो. मैं हूँ अभी आपके साथ में. जो बैटल ऑफ द जाइंट्स टूर्नामेंट है, अगर जो आपने इसका रिजल्ट्स मिस कर दिया है, जो कि बाशहर फिजी में हो रहा है, और ऐसे में जो खेल हुए हैं कल सुबह, एफसी ने नवा को 3-1 से हराया. इसके साथ में लंबासा की जीत नसीनु के खिलाफ 1-0 से हुई, और रेवा एफसी और साथ में लटोका के बीच में जो खेल हुआ उसमें रेवा की जीत लटोका के खिलाफ 2-0 से हुई. और कल रात का जो आखिरी मैच था, ये बा और नेंडी के खिलाफ में था. बा की जीत यहाँ पर नेंडी के खिलाफ 1-0 से हुई. आज जो मैचेस होने को है, सुबह यानी कि दिन में 11:30 पर नाबुआ और नसीनू एक दूसरे का सामना करेगी. 1:30 PM लटोका टेक्स ऑन नेंडी, और इसके साथ में 3:30 इन द आफ्टरनून लंबासा और सुबह के बीच में एक ज़बरदस्त मैच रहेगा. और आज का जो फाइनल मैच है बा और रेवा के बीच में.
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
2: कभी भी कहीं भी. The Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
4: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
5: That is very that is a very acceleration.
4: That's a very acceleration. Yeah.
5: Amazing acceleration.
4: This is my fancy English. That's a very.
5: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: Weekdays, 6 to 10 a.m.
7: Make Father's Day super at Super Cheap Order. Get 25% off store-wide. Save on Pinrite, NGK, Pioneer and more. Hurry in store, online now, sale ends tonight. T's and C's apply. Make it super, super cheap order.
8: 3, 2, 1, rush! Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. cbp.co.nz/rewardsrush.
9: Big milestones call for even bigger deals with Father's Day at Rebel. Save up to 30% on men's clothing and footwear. Plus, score at least 15% off store-wide. Treat Dad to some fresh gear this Father's Day and Sunday at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
10: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
11: Want to be rewarded 5 times faster? Boost your offers in the Everyday Rewards app, spend with our partners and scan your card to enjoy more points. Download the Everyday Rewards app today and boost away. TCs and exclusions apply.
12: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो लेकर मैं हूँ अभी आपके साथ में ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आप भी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हो, घर पर हो और टोस्ट वगैरह तैयार कर रहे हो या साथ में फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी का मज़ा आप ले रहे हो, आपका भी खास स्वागत करते हैं. या फिर आप घर से बाहर निकले हो, वीकेंड में कहीं बाहर ब्रेकफास्ट करने का मन है, विच इज़ प्रिटी गुड, ऐसा भी करना चाहिए, तो ऐसे में आपको भी शामिल करते हैं. अगर जो आप ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जा रहे हो तो ऐसे में आप हमें सुन रहे हैं रोवा पर या फिर 104.2 FM पर. ये जो सिलसिला है हमारा ब्रेकफास्ट शो का, ये 12 तक आपके साथ में चलता रहेगा. इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो खेल लिवरपूल और इप्सविच के बीच में हो रहा है, 72 मिनट्स के मैच हो चुका है, अभी भी लिवरपूल की जीत 2-0 से हो रही है. और बैटल ऑफ द जायंट्स पर भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी दे दी है. इसके साथ में रग्बी लीग और यूनियन में भी कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस है, इसके बारे में थोड़ी देर में आपके साथ में चर्चा करेंगे.

हाँ, पर मैं हूँ अभी आपके साथ में। और अगला गाना बजाने से पहले, जितने भी हमारे राइड शेयर ड्राइवर्स हैं, आप काफ़ी मेहनत करते हो और निकल पड़ते हो रास्ते पर और दिन भर रहते हो छोटी सी जर्नी में, कम्यूट में। हमको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, और जबकि ट्रेवल करते करते हम दूसरे रोड यूजर्स को देखकर परेशान हो जाते हैं, ट्रैफिक लाइट्स को देखकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताकर रास्ते पर और अपने जो सर्विस है आप करते रहते हो। और आपको बता दूं, जबकि 3rd of September यानी कि 2 दिन पहले उबा की तरफ से एक मैसेज आया था या फिर एक न्यूज़ प्रेस रिलीज़ हुआ था, जहां पर इन्होंने कुछ ऐसा ऐलान किया था कि कुछ 10% इनके जो स्टाफ स्ट्रक्चर है, यहां पर 10% लोगों की नौकरी जाएगी और 34,000 एम्प्लॉयज़ इनकी है इन ओवर 70 countries। लेकिन अभी क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर के सपोर्ट स्टाफ के लिए है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की बातें हो रही है, और यहाँ पर जितने भी राइड शेयर ड्राइवर्स हैं, आप सभी को याद करते हैं, आप भी अपने दिन को एंजॉय करिए, क्योंकि काफ़ी समय काफ़ी एड़े टेढ़े लोग भी मिल जाते हैं ना, आड़े टेढ़े लोग भी मिल जाते हैं, और इनको भी आपको झेलना पड़ता है। तो हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, हम पर हमारा साथ देते रहिए, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज़ आउट देयर फॉर यू।

0: पर आप एंजॉय कर रहे हैं सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो है ये, और नेक्स्ट आवर पर आपके लिए मस्ती मीठा भी रहेगा, जहां पर इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट लेकर आते हैं, कुछ हंसी मजाक भी आपके साथ में होती है। ऑल ऑफ दिस कमिंग अप एट 9।
1: टोस्ट कॉफी और हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू, सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम। Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: When you see them on the road, you're suddenly not in as much of a rush to get home. Suddenly, texting her back can wait. You suddenly remember to put your seatbelt on. And you suddenly remember what your indicator's for. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behaviour. Drive like cops are around. Because they are.
3: Kia ora. If you're enrolled to vote and we have your email or mobile number, you'll get a reminder email or text from our team soon.
4: Just check your details are correct by 25 October and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
5: It's Woolworths Mighty Meat Week. Get mighty cuts and mighty savings. Our New Zealand fresh beef mince, 1 kg, $17.99 each. And our New Zealand fresh chicken drumsticks, $4.79 a kg. TCs and exclusions apply.
6: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
7: The beat of Bollywood.
8: World's best. Hamari koi branch nahi hai. Hum.
7: Saturday breakfast on Hum.
9: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में आपको बता दूं हम बोर्डिंग कॉल के बारे में जो अभी के लिए खुला है. आपका ड्रीम आइलैंड एस्केप इज जस्ट वन बोर्डिंग कॉल अवे, जहां पर टू रिटर्न एयर टिकट्स आपके हाथ लग सकते हैं टू वनुआतु विद द काइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी. और एंटर करने के लिए आपको सिर्फ वीकडे सुबह 8 के आसपास विद इन द आवर ऑफ 11 साथ में अराउंड 1 PM और आफ्टरनून 5 पर आपको सिर्फ अपने कान खुले रखने हैं टू हियर द स्पेशल बोर्डिंग कॉल. और उसके बाद में जैसे ही आप सुने इसके विद इन द 60 मिनट्स आप जाइए रोवा पर. यहाँ पर जो बोर्डिंग कॉल है उसको सर्च करके बोर्ड नाउ लिखकर सबमिट करें. बस इतना ही आपको करना है. अगर जो आपको डिफ़िकल्टीज़ है इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए तो आप BC लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करें. यहाँ से आपको कंपटीशन पेज लिंक मिल जाएगा. एंड दैट्स इट, यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन एन अनफॉरगेटेबल वनुआतु गेट अवे. ये सभी कुछ आपके साथ में है थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस, फ्लाइंग 4 टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतु. विजिट flysolomons.com. एंड जी हाँ, याद रहे T's and C's डू अप्लाई.

दिस इज मी अवि कीपिंग यू कंपनी विद सैटरडे ब्रेकफास्ट शो. 6 मिनट बाकी है 9 बजने में. अगर जो आपने जाकर हमारे हम फेसबुक पेज पर हमारा जो वीडियो हमने अपलोड किया है इसको नहीं चेकआउट किया तो आपके पास में समय है, जाकर देखिए कि जो सपने हम देखते हैं अक्सर इनको सच करने के लिए हमें क्या करना चाहिए.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: वेलकम टू कबाब्स किचन, आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
2: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
1: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
2: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
1: Ye hai Amma's Kebabs promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
2: 100% authentic and pure as mother's love.
3: 2 p.m. call out, we're on your way. Heading back to the office, we're on your way there too. Commute to site? Yep, you guessed it. We're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
4: Freedom's flash sale is on now. Save at least 30% off store-wide. Shop sofas, furniture, outdoor mattresses and homewares and get at least 30% off store-wide. Hurry, sale ends Monday, only at Freedom.

0: Saturday breakfast on Hum. Musti meter on Hum.
1: Yo.
0: You're listening to Avineet.
2: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और सुबह के 9 बज रहे हैं. A very good morning to you. आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, चाय का मजा ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट का मजा ले रहे हैं. तो वेलकम टू द शो. जबकि 9 बज चुके हैं तो ऐसे में ये जो मोड है ये है मस्ती मीटर का. और यहाँ पर इस प्रोग्राम में हंसना बिल्कुल ज़रूरी है, एंटरटेनिंग रहेगा और कुछ हटके गाने आपके लिए बजेंगे इस आवर पर. कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट भी है जो आपके साथ में बस थोड़ी देर में खेलूंगा. लेकिन सबसे पहले सुबह से मैं एक गाना बजाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने 7 या 8 के करीब ट्राई किया तो रिस्पॉन्स नहीं आया. तो गाना बजाने से पहले थोड़ा सा ट्रिविया है आपके साथ में. एक बॉलीवुड के मेल प्लेबैक सिंगर है, ये हंसते ही रहते हैं. आप किसी भी इंटरव्यू में उसको देखें, ये स्माइल करते ही रहेंगे. और जब भी कोई ये गाना गाएंगे और आप उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसको रिकॉर्ड करते हुए भी ये हंसते मुस्कुराते इसको रिकॉर्ड किया गया होगा. तो आप मुझे अंदाज़ा लगाकर बताइए कि कौन सिंगर है जो हंसते रहते हैं और इनके गाने जब आप सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है हाँ बिल्कुल मुस्कुरा कर इसको रिकॉर्ड किया. तो दी स्माइलिंग बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, मेल प्लेबैक सिंगर है ये. अगर जो आपको अंदाज़ा लगता है या फिर आपके ख्याल में कौन हो सकता है तो 5599 पर मैसेज करो ताकि कुछ रिस्पॉन्स के बाद में इनका एक गाना भी बजा सके आपके लिए ऑन अ ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग.

पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और जवाब आ रहे हैं। धर्मेन, आपने सही पहचाना, नमस्कारम। और साथ में याशी, आपका भी जो जवाब है सही है, बिल्कुल सही अंदाज़ा आपने लगाया है। लेकिन 2622 आप ज़रा सा फिसल गए, जबकि हमने कहा है कि हाँ, यू आर नॉट एंटायरली रॉन्ग, क्योंकि आपने लिखा है उदित नारायण। ये भी हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और मुस्कुरा कर ही गाना गाते हैं। लेकिन जिस सिंगर की हम बात कर रहे हैं, इनका जन्मदिन भी 30th September को है और ही हेल्स फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली, और इसके साथ में इनकी बहन भी गाना गाया करती थी और शायद आज भी गाती है, और इन्होंने साथ में डेब्यू किया था एल्बम को लेकर। और काफ़ी समय जब भी इनको एक लाइट हार्टेड गाने के लिए जब म्यूज़िक डायरेक्टर्स ढूंढते हैं तो इनका ही नाम सामने आता है, क्योंकि ये अपने ही अंदाज़ में बस हंसते हुए गाकर निभा जाते हैं। तो अगर जो आपको अंदाज़ा लग रहा है कि किस मेल प्लेबैक सिंगर के बारे में बात हो रही है, 5599 पर आप ज़रूर भेजें, इससे पहले कि मैं उनका गाना ही चला दूँ।

कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा आम शक्ल ना हो।

हम पर रवि का साथ है और जो सवाल हमने पूछा था इसका जवाब काफ़ी लोगों ने भेजा है, अफरोज ने भी जवाब दिया है, इसके साथ में सीमा आपने भी मैसेज किया है और इसके अलावा डेमन आपने भी जवाब भेजा है। जी हाँ, शान की ही बात हो रही थी क्योंकि जब भी ये गाते हैं और ऐसा लगता है कि ये हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने गाने को निभा रहे हैं, तो इनकी ही आवाज़ में ये जो अगला गाना है आपके नाम।

हम पर ये सिलसिला है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो का, और अगर जो आप ओनिहांगा इलाके में जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर एक फैक्ट्री में आग लगी है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि फैंस ने बताया है कुछ मल्टीपल कॉल्स आए जबकि चर्च स्ट्रीट में एक फैक्ट्री में आग लगने की रिपोर्ट दी गई, और इस इंसिडेंट को अभी फैंस अटेंड कर रहा है और इसी कारण वहाँ पर काफ़ी रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो अगर जो इफ़ यू आर हेडिंग आउट टू दैट एरिया तो आपको डिलेज हो सकते हैं। इसके साथ में कम्युनिटी के लोग ने बताया है कि यहाँ पर ढेर सारा ब्लैक स्मोक भी देखा गया, हालांकि कोई ऑब्वियस केमिकल स्मेल नहीं उनको महसूस हुआ, लेकिन फ्लेम्स जो थे ये वे शूटिंग आउट ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि रूफ से और बिल्डिंग से बड़े आग के जो गोले हैं ये दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में आप भी अगर जो ओनिहांगा की तरफ बढ़ रहे थे तो यहाँ पर आपको डिलेज हो सकते हैं।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: जी हाँ, ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम। 9:20 हो रहे हैं और मैं हूँ आपका साथी अभी। एक फिल्म आई थी जोधा अकबर, जिसका एक गाना था कहने को

0: जो था अकबर में एक बड़ा रोमांटिक सॉन्ग था, याद कराओ कौन सा? जश्ने वारा।
1: अच्छा, इसको फिर से आपके लिए पेश करेंगे। लगता है ये अभी बजने के मूड में नहीं है, बस थोड़ी ही देर में आपके लिए इसे ज़रूर पेश करेंगे। जस्ट आफ्टर दिस सॉन्ग।

0: अच्छा, अब ये बिल्कुल बजने के लिए तैयार है। और जब बातें हो रही थी कि कहने को जश्न बहारा है, काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन ये सुनने के बाद में शायद आप अपना नज़रिया बदल दें। और जिसने इस गाने को रोस्ट किया है, अगर जो आपको उनकी आवाज़ पता चलती है या फिर कौन से कलाकार है, तो 5599 पर ज़रूर मैसेज करें।
1: कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जोधा अकबर, जोधा अकबर में एक बड़ा रोमांटिक सॉन्ग था, याद कराओ कौन सा।

0: जश्न बारा। लड़कियां बड़ा करती थी यार, ये रोमांटिक सॉन्ग है ये चलाना, भैया कहने को जश्न बहारा है ना, ये चलाना हमारी एंट्री पे, ये रोमांटिक सॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें ऋतिक रोशन है, और कोई रीजन नहीं है। पर लड़कियों को लगता है कि कितना रोमांटिक सॉन्ग है, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन गार्डन में घूम रहे हैं, पीछे मोर नाच रहे हैं, कबूतर उड़ रहे हैं, तो भैया ये लगाना मेरी एंट्री पे। किसने कहा ये रोमांटिक सॉन्ग है? गाना सुना है किसी ने ध्यान से? गाने के बोल हैं, कहने को जश्न बहारा है। यही है कहने को, कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। फूल से खुशबू जुदा जुदा है गुलशन में, बिछा है कोई रंज खिजा का, रंज दुख खिजा पतझड़ खिजा का गुलशन में, सारे सहमे नजारे हैं। और दिल में खोई खोई सी यादें हैं, हो ये रोमांटिक सॉन्ग है, तलाक का सॉन्ग है ये।
1: ये तो पूरा का पूरा गाना का मतलब ही बदल गया, जिस नज़र से हम इस गाने को देखते थे, ये तो पूरा का पूरा चेंज कर दिया है इसने, और रोस्ट किया है और अलग मतलब निकाला है। लेकिन रितिका, गुड मॉर्निंग टू यू। जी हाँ, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। लेकिन ये अमित टंडन नहीं थे, ये भी एक अच्छे कलाकार हैं अमित टंडन, और काफ़ी क्लीन जोक्स लेकर आते हैं, और ये वो नहीं है, ये काफ़ी काम इन्होंने टेलीविज़न में किया है, और एक बीच काफ़ी पहले आया करता था कि बकरा कौन, यानी कि किसी को बकरा बनाते थे एक स्किट के साथ में, ये वो कलाकार है। उसके साथ में समय रैना के साथ में भी शायद आपने लेटन शो में इनको देखा होगा, या फिर स्टैंड अप करते हुए देखा होगा। काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट है, और इनकी उम्र को लेकर काफ़ी बार इनकी मजाक बनाया जाता है, लेकिन ही ऑलवेज डिलीवर्स, एंड देखते हैं किसी को पता है या नहीं, या फिर बाद में एक बार फिर इनको, क्लिप तो काफ़ी लंबा है, पूरा का पूरा नहीं सुना पाएंगे, लेकिन फिर कुछ हल्के से आपको सुनाएंगे ताकि आपको एक बार फिर अंदाज़ा लग सके। ये सभी कुछ है मस्ती मीठा पर, और मैं हूँ आपका साथी अभी।
2: लाइफ में थोड़ी मस्ती जरूरी है, मस्ती मीटर के साथ।
3: Now I'm gonna tell y'all about money. You see, money is my best friend, 'cause money makes the world go round.

यह है सरडे ब्रेकफास्ट शो अभी के साथ में ऑन योर फेवरेट स्टेशन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं बस इसी तरह से सुनते रहें और रितिका आखिर में जवाब तक पहुंची गई दैट्स राइट इट्स महीप सिंह और महीप सिंह जो कि इनकी पैदाइश हुई थी पटियाला पंजाब में और कहीं ना कहीं एक डिफेंस बैकग्राउंड से ये है इनकी जो फैमिली है डिफेंस में सेव किया करती थी और वहाँ से फिर इन्होंने अपना एजुकेशन करने के बाद में और अब एक प्रोमिनेंट इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है राइटर है स्किट्स को भी लिखते हैं साथ में कहीं ना कहीं जो ह्यूमरस लाइन से ये भी तैयार करते हैं और अपने यूनिक कॉमेडी स्टाइल के लिए ये जाने पहचाने जाते हैं और काफ़ी एंगेजिंग परफॉर्मेंस इनकी रही है और अगर जो आपने इनके रील्स नहीं देखे ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि काफ़ी बार काफ़ी ऐसे अलग अंदाजे से ये सब्जेक्ट्स को देखते हैं टॉपिक्स को देखते हैं और उनको एक अलग स्पिन दिया करते थे या करते हैं तो ये जो आपको सुनवा रहे थे ये जो गाना है जश्न-ए-बहारा इसको एक अलग स्पिन ही दिया है महीप सिंह ने

0: आज जबकि 5th of September है, ऐसे में आपके लिए ब्रेकफास्ट शो जारी है और आज के दिन हमारे पास में एक प्यारा सा मैसेज आया है भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से, जहां पर उनके दो मेंबर्स है। आज डबल सेलिब्रेशन का रीज़न है क्योंकि दोनों अपने अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुधा खुराना जी ब्लॉक हाउस बे से आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं, इनके साथ में है रमेश राणा जी न्यूलिन से, ये भी अपना बर्थडे आज जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में आज के इस स्पेशल दिन पर आपको मैं पूरी हम की टीम की ओर से विश कर रहा हूँ अ हैप्पी बर्थडे ऑन दी एयर वेव्स ऑफ हम। मे दिस डे ब्रिंग लॉट्स ऑफ जॉय टू बोथ ऑफ यू। अपना दिन आप जो स्पेशल है बिल्कुल आपके लिए, इसे आप इंजॉय करें और दिन भर आपको ऐसे प्यारे प्यारे तोहफे मिलते रहें और साथ में आपको ब्लेसिंग्स मिलते रहें। और इसके अलावा जो आपके क्लोज और जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, आपको दिन भर बर्थडे मैसेज देते रहें, तो ये सभी कुछ अपनी तरफ से विश कर रहे हैं। आपका भी जन्मदिन है तो 5599 पर आप अपने मैसेज हमारे पास में भेज सकते हैं, जबकि 12 तक हमारा और आपका साथ है, तो ऐसे में बीच बीच में आपको भी याद करते रहेंगे, क्योंकि कहते हैं खुशी बांटने से हमेशा बढ़ती है।
1: लाइफ में थोड़ी मस्ती जरूरी है, मस्ती मीटर के साथ।
2: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
3: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
4: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है।
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
6: हेलो एवरीबॉडी।
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।

0: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
1: What day is Father's Day? Sunday! And with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: You filled the pinata before I sealed it, right?
3: No, you did.
2: Oh, I thought you did.
4: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
5: Bollywood ka asli blockbuster.
6: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
5: Playing Bollywood's biggest hits. Ye hai Masti Meter.
7: That's right, ये है मस्ती मीटा अभी के साथ में और 15 मिनट बाकी है 10 बजने में काफ़ी जगह पर घरों में आज सीक्रेट प्लानिंग भी चल रही होगी और ताकि आप अपने डेट को कल सरप्राइज़ दे सके फादर्स डे के तहत ऐसे में बेस्ट ऑफ लक आप भी कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं अपने डेट को स्पॉइल करने के लिए ही डिजर्व्स द बेस्ट और ऐसे में आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दूँ कि मिर्ज़ापुर जो मूवी है या फिर यूँ कहें जो सीरीज़ है जिसे बिग स्क्रीन के लिए अडेप्ट किया गया था काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ इनके आ रहे हैं चार तारे मिल रहे हैं क्रिटिक्स की ओर से और ये बताया गया है कि बिल्कुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट है और यू शुडंट मिस इट तो अगर जो आपने नहीं देखी है और प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक मैं भी इसे इस वीकेंड कैच करने की कोशिश करूंगा लेकिन अगर जो आपने देख ली है और आपको कैसी लगी इसके बारे में मैसेज करना चाहते हैं तो 5599 पर ज़रूर शेयर करें अपना एक्सपीरियंस जबकि ये जो लेटेस्ट अपडेट्स है बॉलीवुड की दुनिया से आपके लिए लेकर आ रहे थे

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: Saturday Breakfast me. Hum aaye hain Jugaad Junction par.
2: Yo, main hoon chhota sa chhora.
1: You're listening to Avineet.
3: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में कीपिंग यू कंपनी और 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. अभी जबकि 10:02 हो रहे हैं तो समय हुआ एक ऐसे मोड पर आए हैं जहाँ पर आपके लिए जुगाड़ जंक्शन में कुछ ना कुछ नया लाइफ हैक्स लेकर आते रहते हैं. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए बाहर स्टेप आउट हुआ और इट्स अ ब्यूटिफुल सनी डे हियर इन ओकलैंड CBD. और ऐसे मौसम को देख कर ऐसा लगता है कि अगर जो इफ़ इट्स सनी आउट देयर इन ऑल द सबर्ब्स ऑफ ओकलैंड और या फिर जिस टाउन में आप हमें सुन रहे हैं, शहर में आप हमें सुन रहे हैं, देन विद फादर्स डे लोग ऐसी तैयारी बाबाक्यू की कर सकते हैं. एंड आई थिंक यू विल ऑल बी गेटिंग रेडी फॉर दैट. तो मुझे बताइए कि किस सबब में आप हैं और वेदर यानी कि मौसम आपके शहर में, आपके टाउन में कैसा है. यहाँ CBD में तो अच्छी खासी धूप खिली है, लेकिन मैं वंडर कर रहा हूँ ईस्ट ओकलैंड साथ में वेस्ट ओकलैंड में मौसम कैसा है और इसके साथ में साउथ ओकलैंड में क्या आपको धूप दिख रही है या फिर बादल अभी भी घिरे हैं आपके इलाके में. 5599 पर मैसेज करो हमारे पास में. और जब आप मैसेज कर रहे हो तो कोई गाना भी सुनना चाहते हो ना, तो इसका भी रिक्वेस्ट आप हमारे पास में भेज सकते हो. कमिंग अप नेक्स्ट आपके साथ में शेयर करेंगे लाइफ हैक्स में कुछ जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है इसके बारे में भी बात करेंगे. ऑल ऑफ दिस विद अवी. लेकर आए हूँ ढेर सारा प्यारी सावा पर भी.

हम पर सैटरडे ब्रेकफास्ट शो में समय की ओर देखते हुए इट्स 10:10 यानी कि 10 after 10 और ये जुगाड़ जंक्शन है आपके साथ में। एक लाइफ हैक तो नहीं है लेकिन एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जो अभी काफ़ी वायरल हुई है और पहले भी ऐसे किया करते थे लेकिन एक बार फिर ये एक ट्रेंड चल चुका है। जबकि आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में क्रोइसेंट भी खाते होंगे लेकिन एक नया तरीका है, जबकि क्रोइसेंट के बीच वाले जो भाग है उसको बाहर निकाल के लोग अब उसमें आइसक्रीम इंसर्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद में उसको खा रहे हैं। अगर जो आपको चीनी यानी शुगर की प्रॉब्लम है तो इसको ज़रूर मत ट्राई करना, जी हाँ मत ट्राई करना। लेकिन अगर जो इफ़ यू वांट टू गिव इट अ गो तो ट्राई या कोशिश कर सकते हो वीकेंड में या फिर एज यू प्लीज़, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है सामने आ रहे हैं लोग अपने अपने तरीके से इसको इन्जॉय कर रहे हैं। और हमारे मैसेज प्लेटफॉर्म पर एक रिक्वेस्ट आया है, हाय अवी कैन यू प्लीज़ प्ले दिल ले गई कुड़ी गुजरात की, और आपने थैंक्स भी लिखा है यानी कि आपको पूरा विश्वास है कि ये गाना अब बजने वाला है। तो बिल्कुल आपके लिए जसबीर जस्सी की आवाज़ में इन्जॉय दिस वन आउट देयर।

ये सर्च आ जाएगा और आपको रेडली पता लग जाएगा, बिल्कुल ईजली पता लग जाएगा कि बाकी सुपरमार्केट्स में यही प्रोडक्ट कितने में बिक रही है. तो इट्स वेरी इजी एज इट गेट्स. ग्रोसा NZ एक ऐप है जहां पर आप इसे डाउनलोड करने पर ये सारे फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो. और अगर जो आपको इंडिविजुअली भी सर्च करना है वो भी एक ऑप्शन है. और साथ में एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इसको स्कैन कर सकते हो बारकोड को बाय यूजिंग योर कैमरा. और बारकोड को जैसे स्कैन किया है बाकी के सुपरमार्केट्स में ये प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे वेबसाइट इसी साइट पर इसी ऐप पर. और वहां पर आपको प्राइजेस बिल्कुल विद द स्नैप ऑफ योर फिंगर्स आपको पता लग जाएगा. तो याद रहे ग्रोसा NZ एक ऐप है जिसे आपको डाउनलोड करना है टू मेक इट ईजियर फॉर यू वाइल यू आर शॉपिंग.

0: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में 20 मिनट बाकी है 11 बजने में और नेक्स्ट आवर पर यानी कि 11:30 के आसपास बा में फोआर स्टेडियम पर जो बैटल ऑफ द जाइंट्स है इसके खेल शुरू होने के हैं आज के लिए, जहां पर नवुआ और नसीनू सबसे पहले दो टीम है जो आज फील्ड लेंगी। उसके बाद में फिर 1:30 के आसपास लोटोका साथ में निंडी का मुकाबला रहेगा और 3:30 इन द आफ्टरनून लंबा सा टेक्स ऑन सुबह और जो आज का आखिरी खेल है बा और रेवा के बीच में है। कल जबकि मैंने ड्राइव शो लिया था तो मैंने पूछा था कि सपोर्ट किसका ज़्यादा है या कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हो, उसका नाम ज़रूर भेजें। तो बा के काफ़ी टेक्स्ट आए थे, साथ में निंडी का एक टेक्स्ट आया था, लेकिन अभी तक मुझे नवुआ का कोई फ़ैन या फिर नसीनू का कोई फ़ैन, साथ में लंबासा टीम को जो कोई सपोर्ट कर रहा है या फिर सुबह को आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ रेवा के भी कोई फ़ैन ने मैसेज नहीं किया है। तो मैं सोच रहा हूं कि अगर जो क्या आपको डाउट है अपने टीम पर या फिर यहां पर ओकलैंड में नवुआ के कम लोग हैं या फिर नसीनू के कम लोग हैं या फिर लंबासा से कम लोग हैं, तो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी। अगर जो आप सपोर्ट दिखाना चाहते हैं 5599 पर सेंड इन योर मैसेजेस। जबकि बैटल ऑफ द जाइंट्स एक ऐसा टूर्नामेंट है जो काफ़ी बड़े पैमाने पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, काफ़ी लोग दूर दूर से जाते हैं इसको देखने के लिए, अपने होम डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट करने के लिए। तो 5599 पर अपने मैसेज ज़रूर भेजो हमारे पास में ताकि आपको भी उन्हें हम याद कर सके और पता तो चले कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ओकलैंड में किस टीम की सबसे ज्यादा सपोर्ट है।
1: स्टार्ट योर सैटरडे फ्रेश विद द परफेक्ट मिक्स
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हब।
3: वी गॉट टू गो, आर यू रेडी,
4: कम एंड टेक अ ट्रिप विद मी।
5: योर अटेंशन प्लीज, वी आर नाउ इनवाइटिंग ऑल पैसेंजर्स बुक्ड ऑन फ्लाइट हब 104.2 टू द ट्रॉपिकल पैराडाइज ऑफ वनुआटू विद सॉलोमन एयरलाइंस टू बिगिन बोर्डिंग इमीडिएटली। Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter code now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
6: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
7: Let's go.
6: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
8: Please use your imagination for the following ad.
9: If I won Powerball, I'd build my dream. Then I'd even things out with a massive donation to...
8: Imagine winning $28 million this Saturday. Play in store or online.
5: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
10: Pick up a treat and a Smeg bonus sticker at New World North Island when you get Lindt Lindor pouch packs, $9.99 each, or Oreo cookies select size, 4 for $6. Now that's New World value. Sizes limits exclusions apply.
11: What day is Father's Day? Sunday, and with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card this weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
12: A Kogan TV is just like a TV. Both TVs do very similar TV things, but with slightly different little logos, remote shapes, and legs. One's a Kogan 55-inch LED 4K Smart Google TV. The other TV costs an arm and a leg. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
13: Oh, that tap's boring. Oh, that tap's happy because you paid with a Westpac card. There's over 200 grand of happy taps to be won. Just tap your Westpac debit or credit MasterCard. Search Westpac Happy Taps. Fees, exclusions and terms apply.
1: Non-stop Bollywood.
14: Hum.
1: Playing Bollywood's biggest hits. Saturday breakfast में हम आए हैं जुगाड़ जंक्शन पर।
0: जुगाड़ जंक्शन में बातें हो रही हैं, जो बीओजी का टूर्नामेंट है बा शहर में चल रहा है, और ऐसे में स्टीवन एंड डोटा टानिया आप सपोर्ट कर रहे हैं बा मेन इन ब्लैक। आपने लिखा है बा विल विन दिस टूर्नामेंट, तो चलो एक बार फिर से बा वालों की मैसेज आ गई है बा टीम के सपोर्ट के लिए। और अक्सर ऐसा कहा करते थे पहले कि बा जो टीम है इसको कहते थे कि डीजल इंजन की तरह है, जब ये चल पड़ती है तो फिर रुकने का नाम नहीं है। तो आप भी यही सोचते हैं, 5599 पर आप हमें मैसेज करें। छेड़ रहा हूं आपको, जितने भी सुबह के हैं, लंबासा के लोग हैं, साथ में रेवा के हैं, लटोका के, चुपचाप बैठे हैं आप भी सुन रहे हैं, तो 5599 पर मैसेज करो। लेकिन जुगाड़ जंक्शन में आपको ये भी बता दूं लगे हाथ कि टायर प्रेशर मेंटेन करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि NZTA ने कहा है कि करेक्ट टायर प्रेशर मेंटेन करने से आपकी जो ब्रेकिंग होती है बैलेंस्ड रहती है, आपके जो रोटोपेड्स है ये बराबर के कटेंगे, मैक्सिमम ग्रिप होती है, और टायर के लिए इट्सेल्फ नेचुरली लॉन्ग लाइफ रहती है। और इसके साथ में आपको ये भी बता दूं कि ओवर टाइम नेचुरली जो टायर्स है अपना एयर प्रेशर लूज़ कर देती है, तो इट्स वो चेकिंग आप महीने में कम से कम एक बार ज़रूर अपने टायर प्रेशर्स चेक कर ले जब आप जाए फ्यूल अप कराए, ताकि आप करेक्ट टायर प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं और अपने फ्यूल को भी ज़्यादा दिनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग करेक्ट टायर प्रेशर। तो ये सभी कुछ आपके साथ में जुगाड़ जंक्शन में, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आवर पर आपके साथ में रहेगा देसी बिज शाउट आउट। ऑल ऑफ दिस हैपनिंग ऑन हम, मैं हूँ आपका साथी अभी

हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी और हमारे पास में परनीत का टेक्स्ट आया है मनीरेवा से। आपने नाभुआ को सपोर्ट किया है, दी एनाकोंडा टाउन, ऐसा ही बोलते हैं ना उसको। तो ऐसे में कल अगर जो थॉमस डन रेड कार्ड नहीं होते तो परिणाम शायद कुछ और ही होती, लेकिन एक खिलाड़ी खोने के बाद में तब कहीं जाकर उनकी जो हार है कैपिटल सिटी से 3-1 से हुई। लेकिन आज के मैच में इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि नाभुआ कैसे परफॉर्म करती है, जबकि इनका जो खेल है ये रहेगा आज नसीनू के खिलाफ 11:30 पर, यानी कि जो आज का पहला मैच है नाभुआ और नसीनू के बीच में रहेगा, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग। और हाँ, आपको ये भी बता दूं कि अभी से ही आप देसी बिज शार्ट आउट के लिए अपने बिजनेस डिटेल्स हमारे पास में टेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि 11 के बाद में देसी बिज शार्ट आउट रहेगा फाइनल हवा में।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो ना।
1: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: listening to Avineet.
1: मैं हूं अभी आपके साथ में 11:01 हो गए हैं और ऐसे में अब समय हुआ आपके साथ में लेकर आए ऑन द एयरवेव्स ऑफ हम देसी बिज शाउट आउट, जहां पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास में कि आप अपने बिजनेस के बारे में जो डिटेल्स है हमारे पास में टेक्स्ट कर सकते हैं 5599 पर और यहां से आपके जो बिजनेस का प्रमोशन है हम करते रहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप एक वीक टेक्स्ट करते हो फिर दूसरे वीक नहीं करते हो, तो किसी ने मुझे कहा है कि आप अपने जो बिजनेस ओनर्स हैं या फिर जो घर से होम बेस्ड वेंचर्स करते हैं उनको कहे कि एवरी वीक करे, ताकि कभी कभी लोग सुनकर भूल जाते हैं और फिर उनको बाद में याद होता है, लेकिन बाय देन इट्स टू लेट। लेकिन अगर जो आप टेक्स्ट करते रहोगे तो कहीं ना कहीं एवरी सैटरडे उनको एक रिफ्रेशर मिलेगा और साथ ही साथ में कई और लोग हैं जो सुनेंगे आपके बिजनेस के बारे में और सुनकर आपके जो सर्विसेज है इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जो सबसे पहला मैसेज हमारे पास में आया है, रिलायबल और एफिशिएंट हाउस मूविंग के लिए, अगर जो आप हाउस मूव कर रहे हैं, एक नए प्रॉपर्टी में मूव इन हो रहे हैं, आपको ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन की और उसके साथ में आपको एक हार्ड वर्किंग लेबर की ज़रूरत है जो बिल्कुल रिलायबल है, जिसको आप अपने सामानों के साथ में, अपने घर के इक्विपमेंट्स के साथ में और फर्नीचर के साथ में ट्रस्ट करना चाहते हो, तो नाम याद रहे धर्मेन आचारी और इनका जो नंबर है 0211379831। नंबर वंस अगेन 0211379831। इस पर आप धर्मेन को कॉल करके अपना जो अपॉइंटमेंट है या फिर कोटेशन है ले सकते हो। आपके पास में भी बिजनेस वेंचर है जिसके बारे में आप हमारे साथ में एडवर्टाइज कराना चाहते हैं, ये जो फ्री प्रमोशन है देसी बिजनेसेस के लिए, तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो आप एड्स बनवाओगे तो काफ़ी कॉस्ट है, ऐसे में बिल्कुल सस्ते में और देसी बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए ये गोल्डन आवा है। तो अपने जो डिटेल्स है 5599 पर आप टेक्स्ट करो ताकि आपको यहां से हम प्रमोट कर सकें।

देसी भी शॉर्ट आउट में आपके साथ में शेयर कर लूँ। ITS इंजीनियरिंग के स्टीवन हैं, ये स्पेशलाइज करते हैं फैब्रिकेशन एंड वेल्डिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। आपके जितने भी न्यू बिल्ड होम्स है इसके लिए अगर जो आपको स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है स्टील की, तो स्टीवन आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। और साथ में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर जो आप घर के लिए अपने प्रॉपर्टी के लिए इंस्टॉल करवाना चाहते हैं स्टील गेट्स फॉर सम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, तो स्टीवन को आप जरूर कॉल करें ऑन 022-199-8959। एक बार फिर से 022-199-8959 पर आप इसे कॉल कर सकते हैं, स्टीवन से बातें कर सकते हैं। और स्टीवन आप सिर्फ ओकलैंड में ही नहीं हैमिल्टन में भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपने सर्विसेज को सर्विस एरिया को इन्होंने बढ़ा लिया है, ओकलैंड से हैमिल्टन भी कर लिया है। और इनके साथ में स्टीवन ने यह भी लिखा है, प्लस सपोर्टिंग बास टीम, बासों की टीम को ये सपोर्ट कर रहे हैं। और इनके साथ में हैं तानिया और कोमल, तो बेस्ट ऑफ लक आपकी टीम के लिए। और अभी भी मुझे खेद हो रहा है कि फ्रेंडली नोट से एक भी टेक्स्ट नहीं आया है। अगर जो हो सके, आप सुन रहे हैं काफ़ी आप डेडिकेटेड फॉलोअर्स है फुटबॉल के फिजी में, तो 5599 पर ज़रूर टेक्स्ट करें हमारे पास में कि आप फ्रेंडली नॉर्थ टीम लंबासा को सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे भी सुनकर हमें अच्छा लगेगा। 5599 पर ज़रूर मैसेज करें। BOG को लेकर बातें हो रही हैं एंड हॉट एंड हैपनिंग अपडेट्स ये चलता रहेगा आज दिन भर आपके साथ में।

Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: हम पर देसी बिट शॉट आउट है ये, और आपको बता दूं जबकि आज शाम 5 बजे वॉरियर्स और साथ में सी ईगल्स के बीच में खेल रहेगा रग्बी लीग में, और इस पर आपको अगर जो बताए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच, क्योंकि अभी जो टेबल आप देखेंगे तो वॉरियर्स जो कि न्यूजीलैंड की टीम है इज लीडिंग और पहले स्थान पर है, और इसको मेंटेन करने के लिए और प्लेऑफ्स तक जाने के लिए दे हैव टू विन टुडेज गेम एज वेल। और इसके साथ साथ अगर जो वीकेंड में रग्बी की ओर देखें, यूनियन के बारे में बातें करें, तो स्प्रिंगबॉक्स और साथ में ऑल ब्लैक्स के बीच में कल सुबह 3 पर ये जो खेल है रहेगा, और इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एक बड़ी ग्रेट राइवलरी है दोनों टीमों के बीच में, और ये कल सुबह 3 पर रहेगा, जिसका रिजल्ट हम आपके साथ में कल शेयर ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी देसी बीज शाउट आउट है, और हमारे पास में एक और एक मैसेज आया है, अनिल ने मैसेज किया है, राज ऑटोमोटिव एंड टायर सेंटर लिमिटेड के ये हैं जो सिचुएटेड है 11 रायन प्लेस मेनेकाउ में, और यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं आपके लिए वारंट ऑफ फिटनेस, ये वारंट करते हैं गाड़ियों की, साथ में आपको व्हील अलाइनमेंट की ज़रूरत है। इसके साथ में अगर जो आपको जनरल मैकेनिकल रिपेयर्स या फिर डायग्नोसिस करवानी है तो यहाँ आप जाकर इनसे बातें कर सकते हैं। फुल सर्विस भी करते हैं गाड़ियों की, और साथ में न्यू एंड यूज्ड टायर्स के ये सप्लाइज भी है, तो लगता है वन स्टॉप शॉप जैसा है, और बिल्कुल एक ही रूफ के नीचे आपके पूरे की पूरी काम हो जाएगी। इसके साथ में एक फैमिली ओन्ड एंड मैनेज्ड बिजनेस है, और आपको सर्विसेज भी उसी तरह के देते हैं कि आप भी बिल्कुल फैमिली की तरह महसूस करने लगते हैं। आपके पास में भी कोई बिजनेस वेंचर है, 5599 पर आप मैसेज करो, यहाँ से आपको शाउट आउट देंगे। और इसके साथ में अगर जो आपके पास में कोई फ्लैट है जिसे आप जिसके लिए कोई पोटेंशियल टेनेंट्स ढूंढ रहे हैं, तो इसका भी जो डिटेल है 5599 पर हमारे पास में आप शेयर कर सकते हैं।
1: Saturday Breakfast on Hum 80s के रेट्रो गाने।

0: ओड आवर्स पर फ़ोन आता है कि आपने बोला था, या फिर मैसेजेस आते हैं कि आपने बोला था, लेकिन उस समय डिटेल नहीं होता है। तो हमने क्या किया है, एक स्प्रेडशीट रखना चालू किया है, यहाँ पर आपके नंबर स्टोर कर देते हैं ताकि कोई कभी मांगे तो हमारे पास में रिकॉर्ड्स में भी हम इसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन 5599 इज़ द नंबर जहाँ पर आप अभी के लिए, आज के लिए अपने बिजनेस के बारे में जो डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है, हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे EPL के बारे में, इंग्लिश प्रीमियर लीग के बारे में, कौन कौन से मैचेस ओवर द वीकेंड होने को है। इन द मीनवाइल आप ये गाना सुनिए और अपने जो बिजनेस वेंचर है इसके बारे में जरूर शेयर करें। 5599 पर
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले ओ बम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब,

Breakfast. अच्छा, देसी भी शॉर्ट आउट में एक और एक मैसेज आया है. आई एम लुकिंग फॉर अ बेकिंग बेकरी टू बेक फादर्स डे केक एंड इफ यू कैन गिव मी द नंबर. तो ऐसे में अगर जो अभी तो मेरे पास में मुझे ढूंढना पड़ेगा. मेरे ख्याल से द बेकिंग करके कुछ था जो अक्सर मैसेज करते थे, लेकिन अगर जो आप बेकिंग करते हो और इसके बारे में इस फादर्स डे पर खास आप अगर जो आपको स्पेशल डील्स है या फिर आप लोगों को बताना चाहते हो तो 5599 पर ज़रूर मैसेज करें. जबकि एक इंक्वायरी आई है कि फादर्स डे केक के लिए, तो अगर जो आप बेकरी चलाते हो एंड यू वांट टू सेंड एंड शेयर योर डिटेल्स तो 5599 पर आप कर सकते हैं.

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और 12 तक ये कारवा सिलसिला चलता रहेगा। और आपको बता दूं कि ब्रेकफास्ट केचअप में डॉक्टर परमजीत परमार से, जो कि इमिग्रेशन स्पोक्सपर्सन है फॉर द एक्ट पार्टी, इनसे बातें की है विजय और पूजा ने, जहां पर जो पार्टी की न्यू प्रपोज्ड इमिग्रेशन पॉलिसी है इसको लेकर काफ़ी बातें हुई हैं कि कैसे एक नया इनके पास में कॉन्सेप्ट है या फिर एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस ये शायद करना चाहेंगे, जहाँ पर पर्मनेंट रेसिडेंट्स को ये इम्पेक्ट करेगी कि कैसे जो रेसिडेंट्स है इसके 2 years ऑफ फिजिकल रेसिडेंस या फिर आपका रिक्वायरमेंट फिजिकल प्रेजेंस होने का है, ताकि आपको फिर आगे चल के आपके प्रोसेस में और भी आगे बढ़ सके। तो ये सभी कुछ अगर जो आप जानना चाहते हैं, अगर जो आप करंट PR होल्डर्स है तो आपको इम्पेक्ट करेगी, तो इफ़ एक्ट पार्टी का ये जो प्रपोजल है इन इफेक्ट आ गया, तो इसके बारे में जानने के लिए BF लिखकर 5599 पर ज़रूर भेजें। इसके साथ में सैंडी और रुजबे ने बातें की हैं अपने पॉडकास्ट में, जो कंटेंट क्रिएटर है अभी के साथ में। अभी ने बताया कि कैसे इनका जो जुड़ाव है, जो प्यार है फिजी इंडियन कम्युनिटी के साथ में हुआ है, जबकि इनकी वाइफ फिजी से बिलोंग करती है, हेल करती है, एंड कैसे इन्होंने अपने कॉन्टेंट क्रिएशन को लेकर काफ़ी आगे ये बढ़ गए हैं। और इन्होंने ये भी कहा है इस अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में कि इन फ्यूचर ये एक बहुत पावरफुल जो बिजनेस मॉडल है ये बन सकता है, जो कंटेंट क्रिएशन का काम है। तो ये भी जानने के लिए आप 5599 पर भेज सकते हैं। इसके साथ में ट्रेन मेकर्स में, जहां पर एक रोड ट्रिप का कलेक्शन किया गया है, इफ़ यू आर टेकिंग अ रोड ट्रिप और आप भी कुछ ऐसे गानों को सुनना पसंद करते हैं जो बिल्कुल सूटेबल हो आपके रोड ट्रिप के लिए, तो TM लिखकर आपको 5599 पर भेजना होगा।

0: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में। और अगर जो आपने प्लान किया था कल के फादर्स डे के लिए, तो साउथ आइलैंड में फोरकास्ट किया गया है हेवी रेन साथ में थंडर स्टॉर्म्स टूलेश सम पार्ट्स ऑफ द साउथ आइलैंड ऑन फादर्स डे वीकेंड। यानी कि कुछ ऐसे इलाके हैं साउथ आइलैंड में जहां पर कल मौसम थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन ओकलैंड सीबीडी की ओर देखें तो कल के लिए अभी तक के लिए बताया जा रहा है कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि अभी तक के लिए बताया जा रहा है मेनली फाइन, और साथ में स्केटर्ड शावर्स इवनिंग में हो सकते हैं, तो शायद जो दिन है आपको अच्छा मिल सकता है। और बस थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ रहेगा, कुछ और गाने आपको सुनवाते हैं।
1: देसी बिज शाउट आउट ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
3: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
4: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
3: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
5: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: What day is Father's Day? Sunday. And with big deals for Dad, plus huge store-wide savings for everyone else, Briscoe's is the place to go. And if you're stuck, grab a gift card. This weekend at Briscoe's. See online for T's and C's.
1: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाओ में ब्रेड न्यू हैवेल हाइब 6 हाइब्रिड ड्राइव होए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविस हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाओ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: New Zealand's number one home show is back. With inspiration from the front gate to the back fence, visit the Auckland Home Show 10 to 13 September, Auckland Showgrounds. Explore hundreds of exhibitors and the all-new Garden Showcase. Buy tickets now at aucklandhomeshow.co.nz.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही. आपने सुबह 6 से हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जा रहे हैं अब, आपसे कल मुलाकात होगी. कल 12 पर लेकर आएंगे जस्ट चिल, एंड इसका भी हमें इंतज़ार रहेगा. लेकिन इन द मीन टाइम, जबकि सरडे है आज, ऐसे में खुलकर मज़ा कीजिएगा, रेडियो पब भी सुनते रहिएगा, और आपसे कल मुलाकात होगी. इन द मीन टाइम डू टेक केयर, बाय.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम Breakfast show with VJ and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार सब चलता है आधी नींद में हूँ मैं.
0: The breakfast show with VJ and Pooja.